सुप्रभात। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संबंध 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून 2026। सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव

0: और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

हमारा गौरवशाली इतिहास हमें बताता है और जताता भी है कि इसे अक्षुण बनाए रखना है, समृद्ध करना है और इस हेतु सक्रिय और संकल्पित भी होना है। यही हमारा ध्येय हो और यही हमारा अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी।

भक्ति, ज्ञान, कर्म, प्रेम उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने की वो माध्यम है, वो राह है जिसके जरिए हम उससे जुड़ पाने का प्रयास करते हैं और स्वयं को उसके निकट पाते हैं।

जो निर्गुण है उसका गुणगान, जो निराकार है उसके विविध आकार में हमारी आस्था उसे रचती है, जो असीम है उसे सीमा में बांधकर हम उसकी स्तुति की जुगत तो कर पाते हैं, पर उस तक पहुंचने के लिए शायद इन बंधनों से भी मुक्ति की जरूरत है।

सुख की आस मन की सहज गति है। आस की चाह उस निर्झर की तरह है जहां जीवन स्वतः मुड़ जाता है। जिस मन की था हम खुद नहीं पाते, वही मन प्रभु प्रेम में लीन पल पल बस उसका ही अभिलाषी होता है।

जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा विकास को पाता है, ठीक ऐसे ही हर एक जीवन आधार चाहता है। ये आधार कभी मन का विश्वास तो कभी अपनों का साथ बन जाता है। यदि सृष्टि के आधार तक हम अपने को पहुंचा पाते हैं तो किसी और संबल की जरूरत ही कहाँ।

प्रार्थना, वंदना, स्मरण, स्तुति सब उस तक पहुंचने के वे सहज मार्ग हैं, जिनके जरिए हम स्वयं को उसके करीब या खुद को समर्थ और सबल पाते हैं।

0: आज की वंदना आपने सुनी डीवी पलुस्कर, असित भरण, जगमोहन सूरदास और कल्याण चौधरी के स्वर में था।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री राम चरित्र मानस गान।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है पर्यावरण, आलेख पुरुषोत्तम चक्रवर्ती।
1: परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में ये परिवर्तन सृष्टि के पालन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाए रखने के लिए होते हैं, ताकि धरती पर ताप सहने योग्य रहे, भरपूर मात्रा में साफ वायु, शुद्ध जल और उपजाऊ जमीन उपलब्ध हो सके और मानव गतिविधियों और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। इसके लिए प्रकृति में परिवर्तन विभिन्न भू रासायनिक चक्रों के द्वारा एक अंतहीन प्रक्रिया के रूप में लगातार चलते रहते हैं। मानव सभ्यता के शुरुआती समय में जनसंख्या बहुत कम थी। मानव अपेक्षाएं और चाहनाएं प्रमुखता जीवित रहने के संघर्ष की थीं। मानव प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए हुए रह रहा था। अपने जीवन संघर्ष के लगभग 20 लाख वर्षों के लंबे इतिहास के दौरान भी उसकी गतिविधियां पर्यावरण को बहुत ही मामूली रूप से प्रभावित करती रहीं। ये प्रभाव स्थानीय थे। ये तो पिछली आधी सदी में ही मानव ने इतनी क्षमता हासिल की कि वो पर्यावरण को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने लगा। पर्यावरण में परिवर्तन एक बहुआयामी घटना रही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तेज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के फलस्वरूप वनों का तेजी से विनाश, तकनीकी ज्ञान के विस्फोट और आर्थिक उन्नति के तरीकों ने मिलकर पर्यावरण को हानि पहुंचाने में अपनी सीधी अथवा परोक्ष भूमिका निभाई है। फिर रहवासी कॉलोनियों के आसपास उद्योगों की अनियंत्रित बढ़ोतरी ने स्थिति को काफी पेचीदा बना दिया। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं और जीवाश्म ईंधन के जलने से उठने वाली गैसों ने हमारे वायुमंडल को बुरी तरह प्रदूषित करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप स्मॉग, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो प्रभाव और ओजोन छिद्र जैसी त्रासदियां जन्म ले रही हैं। प्रदूषण ने अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र हरे भरे ग्रह पृथ्वी की हालत गंभीर बना दी है। वायुमंडल के साथ ही धरती की नदियों, तालाबों, पोखरों का जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। अतिशय दोहन से प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं। भूमिगत जल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इन विनाशकारी प्रभावों के लिए मानव स्वयं जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखने वाले पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके हम अपने सिर से रक्षा साया हटाते जा रहे हैं। फलस्वरूप सन 2100 में पृथ्वी का तापमान आज से लगभग 3.5 डिग्री अधिक हो जाएगा और इससे दुनिया के 1/5 हिस्से की समाप्ति का खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह लगातार

0: खिसकते जा रहे ग्लेशियरों की गति से गंगोत्री के 2035 तक पूरी तरह से सूखने की संभावना बन गई है। उजड़ते वनों ने अनेक बहुमूल्य जड़ी बूटियों, पेड़ और वन्य जीव प्रजातियों को भी विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। इस समय जरूरी है हमारा विकास धारणीय हो। ये वही संकल्पना है जो हमारे वेद पुराणों की ऋचाओं में सदियों पहले से कही गई। भारतीय मनीषियों ने प्रारंभ से ही माना कि समाज की भौतिक प्रगति प्रकृति के साथ मानवीय हारमोनी के रूप में गुंथी रहनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा भी था, इस धरती पर हर व्यक्ति की जरूरत के लिए काफी है, परंतु ये एक पूरी पृथ्वी महज एक व्यक्ति के लोभ के लिए भी अपर्याप्त होगी। हमें इस लोभ, लालच और लिप्सा पर रोक लगानी ही होगी, अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी ही होंगी। आइए हम अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त की इस प्रार्थना को अपने जीवन में उतारें। हे धरती मां, जो कुछ मैं तुमसे लूंगा वो उतना ही होगा जिसे तू पुनः पैदा कर सके। तेरे मर्मस्थल, तेरी जीवनी शक्ति पर मैं कभी भी आघात नहीं करूंगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा, विषय है प्राकृतिक खेती। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा।
2: किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती का अर्थ कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त प्रबंधन कर फसल उत्पादन में समागीनशीलता बनाए रखते, प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से शुद्ध रखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं संविधाओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और प्रमुख प्राकृतिक धरोहर की बात करें तो जल, जमीन और वायु है, और इन्हीं सारी चीज़ों को प्राकृतिक खेती के द्वारा सारी चीज़ों को जोड़ के प्राकृतिक खेती ही कही जाती है। प्राकृतिक खेती की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो हमारी है मृदा का संरक्षण करना और फसल का अच्छे से उत्पादन करना, और सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत हैं किसान भाइयों को, जो सारी दिक्कतें रासायनिक खादों की वजह से आती है, उन चीज़ों को दूर करना। क्योंकि मुख्यतः आज के दिनों में सबसे बड़ी चीज़ हमको ये देखनी पड़ रही है कि हमारे स्वास्थ्य पे दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा तबीयत हमारे ज़मीन की भी ख़राब हो रही है, फसल की भी ख़राब हो रही है, वायु भी प्रदूषित हो रहा है और हमारा स्वास्थ्य भी प्रदूषित हो रहा है। दूसरी बात हम करते हैं प्राकृतिक खेती की आवश्यकता का। सबसे बड़ा कारण ये है कि 2050 तक भारतीय आबादी का 60% लोग खाद्य की कमी का अनुभव करेंगे, जिस वजह से प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती की जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो कृषि उत्पादन में टिकाऊपन के लिए, मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए। प्राकृतिक खेती की लाभ की यदि हम बात करते हैं तो ये खेती की लागत को कम करने के लिए होता है, फसलों में पानी की आवश्यकता को भी ये कम करता है, मृदा की कायाकल्प करता है, उर्वरकों की बढ़ती ज़रूरतों को रोकने में मदद करता है और हमारे समाज के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराता है। प्राकृतिक खेती के कारकों की बात यदि हम करते हैं तो हमारा सबसे पहली चीज़ जो देखी गई है, जो सबसे बड़ा मुख्य कारक है, वो हमारा है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट जो ये बेकार कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारे फसल के अवशेष, पुलाव, सूखी घास, सब्जियाँ के छिलके आदि, जो केचुए हैं, ये सारे हमारी बर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि में आते हैं। और बर्मी कंपोस्ट मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार लाता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, जिसमें फसल उत्पादन की स्थिरता के साथ गुणवत्ता सुधार होता है। वर्मी कंपोस्ट से फसलों की बुआई तथा रोपाई से पूर्व मृदा में इसको मिला देना चाहिए, इससे काफ़ी अच्छी फसल उत्पादन हमको मिलती है। और खाद्यान्न फसलों में 5 से 6 टन हेक्टेयर की दर से इसको प्रयोग किया जाता है, जबकि हम फलों की बात करते हैं तो वृक्षों में 1 से 10 किलोग्राम की मात्रा ही पर्याप्त है। उसके बाद में जो हमारी जो दूसरी विधि की बात की जाती है वो बर्मीवास विधि है। ये सूक्ष्म तत्व जो हमारे मृदा में मौजूद होते हैं उसकी कमी की पूर्ति को पूर्ण करता है। ये एक प्रकार का तरल पदार्थ है, इसका प्रयोग खड़ी फसलों में किया जाता है और इसके उपयोग तरल खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए 7 गुना पानी में मिलाकर सुबह और शाम को ही छिड़काव करें, क्योंकि दोपहर में छिड़काव करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। और बर्मी कंपोस्ट और गौमूत्र में 10 गुना पानी मिलाकर छिड़काव करने से कीटनाशक खत्म होते हैं तथा तरल खाद दोनों का कार्य करता है। और तीसरा जो हमारा

0: मुख्य कारक है वो है हमारी हरी खाद। मृदा का लगातार दोहन हो रहा है, उसमें उपस्थिति में पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्व दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं और इसकी क्षतिपूर्ति और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना गले सड़े हरे पौधे को जब मृदा के नाइट्रोजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाए जाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक कृषि को हमेशा से ही बढ़ावा दिया गया। भारत सरकार ने 2020-21 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धतियों नामक उप योजना के माध्यम से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया है। तो किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
4: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है. थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे.

0: चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायां असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीयदिनाङ्कादारभ्यमाणस्य 57-दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथयात्रायाः प्राक् सुरक्षासंस्थाः पञ्जाबतः जम्मूकश्मीरपर्यन्तं तीर्थयात्रामार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक् ड्रिल् इति आचरन्ति, निरीक्षणप्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षितगमनागमनं सुनिश्चेतुम् अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

0: की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राज़ील भी राउंड ऑफ 16 में पहुँच गया है। ब्राज़ील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए आपको जानकारी दे दें आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:20 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चीन के शेनयांग शहर में आयोजित लुकिंग चाइना 2026 यूथ फिल्म प्रोजेक्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटे भोपाल के धनंजय बंसोड़े से एक मुलाकात, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड में संपन्न युवा संगम कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के दल के लिए चयनित उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान की विद्यार्थी अनुपमा मिश्र से बातचीत और साथ ही साथ सोशल मीडिया दिवस पर मानित भोपाल के कंप्यूटर साइंस एवं अभियांत्रिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डॉ. जयत्रिलोक चौधरी से बातचीत। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुनेंगे। 9:15 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रश्मि ससुड़े के गाए गीत और भजन। 9:30 पर होगा कार्यक्रम शब्द सागर, इसमें आप सुनेंगे महेश अग्रवाल का काव्य पाठ और साथ ही साथ व्यंग वार्ता, विषय होगा नींद और वार्ताकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सक्सेना। सुबह 9:48 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, जिले की चिट्ठी का समय है 10:00। 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत सागर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला होगा, इसमें आप सुनेंगे साक्षी पंडोले का ख्याल गायन, राग होगा नट भैरव।

दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। ये कार्यक्रम होगा 12:30 पर। इसमें आप सुनेंगे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी। महिला कार्यक्रम का समय है दोपहर 1 बजे। 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 1:45 पर होगा सुगम संगीत कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान रहेगा। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत आप सुन सकते हो और आपकी फरमाइश कार्यक्रम 2:30 पर होगा। संध्याकालीन सभा में 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की। 5:33 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00। शाम 6:30

पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। नौ बजकर 30 मिनट पर आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल मैच का आपको देखा हाल आप समापन तक सुन सकेंगे, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:45 पर होगा फिल्म संगीत। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल है और इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
3: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
1: इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण MOU भी हुआ। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में PM केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 MRI मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें तथा 308 AI सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल,

0: तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जलगंगा संवर्धन अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरी, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में लगभग 278 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र के लगभग 225 गांवों के 2.5 लाख से अधिक परिवारजनों को सुदृढ़, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सशक्त, समृद्ध एवं विकसित गुना के निर्माण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं।
1: जिस बमोरी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बमोरी में आज 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में स्थापित हो रहा है 280 करोड़। मैं देश का ऊर्जा मंत्री रहा हूँ, उस जमाने में 200 केवी का सबस्टेशन मुंबई, कलकत्ता, बंगलुरु यहाँ लगते थे। मोदी जी के जमाने में 220 केवी का सबस्टेशन मुंड्रा हनुमान में लग रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे, जिसमें खेती से जुड़े मॉडल और आधुनिक कृषि के तरीकों, मृदा प्रबंधन, फसल सुरक्षा, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहल प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल क्षति, गांवों और बुनियादी ढांचों की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए 12 जून से ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके तहत एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में नोटरी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया आवेदन मॉड्यूल लॉन्च किया। ये मॉड्यूल योग्य कानूनी पेशेवरों और अधिवक्ताओं को नोटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि विधिक मामलों का विभाग नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में CCTV कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कौंसुल जनरल नबील ताउआती ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में मुलाकात की। इस अवसर पर काउंसलेट जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुभ परिहार तथा कृषि सलाहकार प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी नवाचार एवं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के

आधार पर क्वालिफाई किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के मोतीसागर तालाब पर होमगार्ड जवानों का विशेष तैराकी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इंदौर जिले के छोटी बेटमा स्थित विशिष्ट आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में पीटीआई के रिक्त पदों के लिए 6 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आज डिंडौरी जिले के प्रवास पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनापुर और कुटेला क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया है। झाबुआ में युवा संगम का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में किया जाएगा। बैतूल में हॉकी प्रतिभा खोज चयन ट्रायल में जिले के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्वाचन सदन स्थित ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम में शामिल, कहा स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार भोपाल के सभी सुनने वालों को, संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह का हसीन मंजर तो दिल को खुश कर ही देता है। यदि कुछ नई और उपलब्धि भरी घटनाएं, खबरें हमें मिल जाएं, तो ये खुशियां और भी बढ़ जाती हैं। अब जैसे ही पता चला कि भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के विश्व विख्यात मैहर बैंड को भारत सरकार की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी नेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, दिल प्रसन्नता से भर गया। क्योंकि लगभग 108 साल पुराने मैहर बैंड ने एक बड़ी सांगीतिक यात्रा पूरी की है और विश्व स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है। मैहर दरबार के महान संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान द्वारा 1918 में इस बैंड की शुरुआत हुई और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत और सामूहिक वादन का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। बधाई और शुभकामनाएं उन सभी कलाकारों को जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन से इसे ऊंचाइयां प्रदान की और अनमोल विरासत को संरक्षित करने में अपना योगदान दिया। कुछ समय पहले हमें मैहर बैंड के कलाकारों से मुलाकात का अवसर मिला था, आइए उस बातचीत का एक अंश आपको सुनवाते हैं।
1: देखिए, मैहर बैंड से जुड़ के तो ये लगता है कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे जो ऐसे यूनिक चीज़ में जुड़ने का मौका मिला और इसके साथ प्रदर्शन करने का मौका मिला। इसलिए हम लोग कई जन्मों के पुण्य का हम लोग प्रभाव मानते हैं कि जिस कारण से प्रतिफल के कारण आज हम मैहर बैंड में जुड़े हुए हैं। मैहर बैंड से यूनिक कोई चीज़ नहीं, चूँकि मैहर बैंड में ही सबसे पहले फ्यूजन चालू हुआ। फ्यूजन जो आज वर्ल्ड में है, मैहर बैंड से ही स्टार्टिंग हुआ। और मैहर बैंड में नलतंग जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, बंदूक की नालों को काट के बनाया गया, तो ये इंस्ट्रूमेंट और कहीं प्ले नहीं होता। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने वेस्टर्न और इंडियन दोनों संगीतों को मिला के उन्होंने सबसे पहले मैहर बैंड में यूज किया। उस समय ऑल इंडिया में कोई ऐसा नहीं करता था, तो ये एक ब्रॉस बैंड टाइप का था जो विदेशों में होता था, उसी का टू कॉपी इंडियन में बना। लेकिन इसमें विदेशी चीज़ों को भारतीय शास्त्रीय रागों के अंतर्गत बजाया गया।
2: लगभग 100 साल पुराना ये बैंड है। मैहर महाराज जो थे, उन्होंने बाबा से कहा कि बच्चों को आप सिखाएं। बच्चों को लेकर के लगभग 24 साल बाबा ने रियाज करवाया। उसके बाद फर्स्ट उसका परफॉर्मेंस कलकत्ता में कराया। इस प्रकार उस समय यानी जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, उसके अकॉर्डिंग ये बैंड बहुत ही सफल हुआ।
3: पहले लोग

0: समझते हैं कि ये कैसा बैंड होगा, लेकिन क्लासिकल को इतनी खूबसूरती से बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने बंदिशों को बांधा है कि दर्शक एक बार सुनने के बाद में वहां से उसका मन दूसरी जगह पर जाता ही नहीं।
1: पहली चीज तो इस मैहर बैंड से जुड़कर मुझे इतनी खुशी और बड़ा मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि बाबा अलाउद्दीन खान साहब, रविशंकर जी, अकबर खान साहब, इतने बड़े बड़े लोग जिनका नाम लोग सुन के अपने कान पकड़ लेते हैं, आप समझ लीजिए, वो पूरी परंपरा महारा। और जब ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट इस मैहर बैंड में थे और जुड़े हुए हैं उनकी परंपरा से हैं, तो मैं बड़ा ही गर्व महसूस करता हूँ कि उन उस्तादों के बाद हम लोग को भी मौका मिल रहा है इसमें प्ले करने के लिए।
2: 2016 में मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत मैहर बैंड से जुड़ी ये बात बताना भी लाजमी है कि संस्कृति विभाग के द्वारा संगीत महाविद्यालय मैहर के समन्वय से एक गुरुकुल भी स्थापित किया जा रहा है, जहां मैहर बैंड की विशिष्ट संगीत शैली, बंदिशों और वादन परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारी ओर से मैहर बैंड को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस समय आपकी सुबह को महकाने वाला और आपको अपडेट रखने वाला कार्यक्रम नमस्कार भोपाल शुरू हो चुका है, और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अब से लेकर 8 बजे तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नमस्कार भोपाल में ज्ञान भी है, मनोरंजन भी है।

0: बेमिसाल फिल्म का एक गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ, राहुल देव बर्मन का सुरबद्ध किया हुआ, लता मंगेशकर का गाया अभी आप तक पहुंचा। और नमस्कार भोपाल में आगे चर्चा होगी सोशल मीडिया डे पर, और इसके अलावा झारखंड में आयोजित युवा संगम की बातें करेंगे, और NIT द्वारा चीन में आयोजित कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली युवा हस्ती से होगी एक छोटी सी मुलाकात। बस आप जुड़े रहिए नमस्कार भोपाल के साथ।
1: सभी सुनने वालों को स्वानंद किरकिरे का प्यार भरा नमस्कार, और इस वक्त आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
0: इस अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से परिपूर्ण विविधरंगी कार्यक्रम में, नाम है नमस्कार भोपाल। 7:28 हुए हैं, देखते हैं समाचार पत्रों की खास खबरें। पहली खबर है, अब नहीं होगी फेक इंटर्नशिप।

रिकॉर्ड रहेगा कुछ सीखा या नहीं। देश में अब फेक इंटर्नशिप नहीं हो सकेगी। पहली बार केंद्र सरकार ने देश में इंटर्नशिप को न्यूनतम बेंचमार्क तय कर मॉनिटरिंग के दायरे में लिया है। इसके तहत इंटर्नशिप का पूरा रिकॉर्ड रखने के साथ ही इसका परफॉर्मेंस ऑडिट तक कराना होगा। इससे पढ़ाई पूरी कर या पढ़ाई के अंतिम साल सेमेस्टर में इंटर्नशिप की सिर्फ रस्म अदायगी कर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकेगा। और केवल कक्षा 6 में लागू होगी 3 भाषा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत लागू की जा रही 3 भाषा नीति को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों में चल रही तमाम उलझनों पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने सोमवार को विराम लगा दिया। बोर्ड ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर साफ किया है कि 3 भाषा पढ़ाए जाने की नई व्यवस्था पूरी तरह से कक्षा 6 में लागू की जाएगी। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 3री भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। अगली खबर है आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च, अब बनेगा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च किया। कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया यह ऐप अब पर्सनल डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। इसमें आभा आईडी बनाने, स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और अस्पतालों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। और मौसम का मिजाज कह रहा है कि राजधानी सहित प्रदेश के 39 जिलों को अब भी मानसून का इंतजार। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश में एंट्री की थी। शुरू में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि मानसून 30 जून तक पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि 24 जून को मानसून ने मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के रास्ते प्रवेश किया था। अगले 2 दिन में मानसून प्रदेश के कुछ और जिलों में दस्तक दे सकता है। और जैसे जैसे फुटबॉल विश्व कप चल रहा है उसकी खुमारी बढ़ती जा रही है। एक समाचार पत्र लिखता है कनाडा पहली बार राउंड ऑफ 16 में। सह मेजबान कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। कैलिफोर्निया के सोफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कनाडा के लिए मैच का एकमात्र गोल इंजरी टाइम में स्टीफन यूस्टॉकव्यू ने किया। इस जीत के साथ ही कनाडा ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपनी पहली नॉकआउट जीत दर्ज की है। ये थी समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। यदि आप किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, जनहित में आपका कोई आयोजन है तो उसकी सूचना नमस्कार भोपाल तक जरूर प्रेषित करें, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी पहुंच है दूर दूर तक। और नमस्कार भोपाल का आनंद आप ले सकते हैं मीडियम वेव के साथ साथ DTH की ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन और वीव्स OTT ऐप पर। और चलिए कार्यक्रम में अब आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत।

0: मेरी जिंदगी है तू। और नमस्कार भोपाल को सुनते सुनते एक लंबा सफर बीत गया है और अब ये भी आपकी जिंदगी बन गया है और ये तराना आपके होंठों पर आ ही गया होगा, मेरी जिंदगी है तू। और नमस्कार भोपाल में छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे और उसके बाद आप तक पहुंचेगी पहली जानकारी।
1: आकाशवाणी भोपाल के सारे सुनने वालों को तलत अजीज का नमस्कार और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
0: सुबह के 7:36 हुए हैं। आज 30 जून है और आज मनाया जा रहा है सोशल मीडिया दिवस। वर्ष 2010 से शुरू हुए इस विश्व दिवस को मनाया जाना इसलिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में आज सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वालों की बड़ी संख्या है और वे किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनेक विषयों पर अपनी बात सब तक पहुंचा रहे हैं। इस दिन विशेष पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेरठ के प्रोफेसर डॉक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह और एसोसिएट प्रोफेसर जय त्रिलोक चौधरी।
2: सोशल मीडिया डे एक तरह का सेलिब्रेशन है, क्या इफेक्ट है लोगों की लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशंस या सोसाइटी पे, किस तरह का सोशल मीडिया के यूज से इफेक्ट हो रहा है, उसको उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम सोशल मीडिया डे मना रहे होते हैं।
3: मेन उद्देश्य जागरूकता फैलाना, जो भी कंटेंट हमें पता है वो कितनी जल्दी हम दुनिया में बता सकें जिससे कि सब अवेयर हो जाएं उस चीज़ को लेके, ये मेन उद्देश्य है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जिनके माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्टिवली उसे देख रहे होते हैं। और आजकल तो कम्युनिकेशन का माध्यम सबसे बड़ा व्हाट्सएप हो गया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट कर रखा है और उसके थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी उसके थ्रू काम कर रहे होते हैं।
0: सोशल मीडिया डे की हम जब बात कर रहे हैं धीरेन जी, तो अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है इस समय सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि जय जी ने भी बताया, उसके माध्यम से लोग अपना तरह तरह का संदेश उसके माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभिव्यक्ति का ये जो माध्यम है आज की स्थिति में हम देखें तो आप कहाँ पाते हैं?
2: ओके, सोशल मीडिया आज बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अगर जैसे बोले कि आज के परिप्रेक्ष्य में लगभग 5 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन उनकी पूरी वर्किंग है, जॉब ऑफर या जॉब कैसे प्रिपेयर करना है, जॉब के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, इस तरह की जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बहुत सारी कंपनियां सिर्फ सोशल मीडिया के बेस पर ही वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज के कारण लोग अपना बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे होते हैं और कभी कभी क्या होता है, हम अपनी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया को प्रोवाइड कर देते हैं जो एक्चुअल में हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया को पता हो। वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से सोशल मीडिया के थ्रू सोसाइटी में फैल रही होती है, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और ऐसा कई बार आपने देखा भी होगा।
0: और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं जैसा, अब सकारात्मक भी होते हैं नकारात्मक भी होते हैं, तो सोशल मीडिया का बेहतरीन उपयोग हो बल्कि सदुपयोग हो उसके लिए कौन कौन से स्तरों पर काम किया जाना चाहिए?
3: बेसिकली अभी हम देखते हैं कि जो भी हम कंटेंट बनाते हैं या जो कंटेंट हम बना के डालते हैं सोशल मीडिया पर, एक पहलू है कि भाई वो कंटेंट आपका सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बट यदि उसी कंटेंट का कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मैं अभी एक रिसर्च करवा रहा हूँ डीप फेक के ऊपर, तो डीप फेक में क्या है, आपकी इमेज है उस पर किसी दूसरी इमेज को भी ओवरलैप करके एक नई इमेज जनरेट कर दी जाती है और उस इमेज का कहीं प्रोपागेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इमेज एक्चुअल में रियल है। उसी प्रकार एक वीडियो है उसका भी कोई डीप फेक वीडियो बना लिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि डिसएडवांटेज है, कहीं ना कहीं डीप फेक के थ्रू प्रोपागेट हो जाता है।
2: अगर आप किसी एक नॉलेज ग्रुप से अटैच हो जाते हो तो उस नॉलेज ग्रुप की जो एक्टिविटीज रहती हैं आप उसके बारे में जान पाते हो, उसके पार्टिसिपेट कर पाते हो और अपने नॉलेज को इन्हांस कर पा रहे होते हो।
0: हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई क्रांतिकारी बदलाव भी आए हैं, एक मैसेज पूरी दुनिया को जोड़ने का भी काम करता है और बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी उसके सामने आते हैं।

0: तो इस तरीके से आप इसे कितना सशक्त माध्यम मानते हैं आज के दौर का?
1: आज के दुनिया में हम ये कहेंगे कि भाई सोशल मीडिया क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है। पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है, जो चीज़ें घट रही है, जो चीज़ें हो रही है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ही थ्रू आप लोगों तक पहुंच रही होती है, और सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैल रही होती है।
0: तो किस तरीके से सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हों, इस तरीके से सिक्योरिटी हमारा एक प्राथमिकता होनी चाहिए। धीरेन्द्र जी, इस बारे में आपका क्या कहना है?
2: सोशल मीडिया का सिक्योर यूज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्हाट्सएप पे आप किस तरह के मैसेजेस प्रोपोगेट कर रहे हो, वो मैसेज सही है या गलत है, किसी भी मैसेज को आप पहले चेक कर लें कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। किसी ने आपके पास व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया था, व्हाट्सएप इमेज सेंड की थी और आपने अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्कल में उसको आगे सर्कुलेट कर दिया, एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना है। और किस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। कभी तो सोशल मीडिया का यूज तो बहुत

0: चेक कर लें कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, किसी ने आपके पास व्हाट्सअप मैसेज सेंड किया था, व्हाट्सअप इमेज सेंड की थी और आपने अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्कल में उसको आगे सर्कुलेट कर दिया। एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना है, और किस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है कभी। तो सोशल मीडिया का यूज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, बट यूज करते समय उसकी सिक्योरिटीज का ध्यान रखना, आवेग में आके उसका गलत यूज ना करें।
1: मेरा तो सिर्फ ये कहना रहेगा कि सोशल मीडिया एक सबसे पावरफुल टूल है आज से, कि हम इंफॉर्मेशन इजीली सब तक प्रोपागेट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो मोबाइल में आपका सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, सारा बैंकिंग डेटा, आप जो फ़ोन पे या गूगल पे आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैसे ये अनऑथोराइज लिंक को आप एक्सेस करते हैं, जिससे कि आपका फ़ोन हैक हो जाता है और फिर आपके सुनने में आता है कि भाई आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए। सिक्योरली उसको यूज़ करें।
0: जब भी आप उसे यूज कर रहे हो तो ये चीज़ों का ध्यान रखें कि हम कहीं गलत इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक तक नहीं पहुंचा रहे हैं। लिमिटेड समय के लिए ये माध्यम यूज करना है, जिससे आपका समय बचे।
2: इस बातचीत के लिए धीरेन जी और जय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: सोशल मीडिया दिवस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थे मैनेट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डॉक्टर जय त्रिलोक चौधरी। सोशल मीडिया आपको लगभग हर विषय वस्तु पर सामग्री उपलब्ध कराता है। अब ये हम पर है कि हम कितना उपयोगी या सार्थक विषय चुनते हैं। तो ध्यान रखिए और सतर्कता पूर्वक जुड़िए सोशल मीडिया से। पूर्व होशोहवास के साथ यदि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो लाभान्वित भी होंगे और खुशियों भरे गीत भी गा सकेंगे।

0: 7 बजकर 44 मिनट और 20 सेकंड हुए हैं। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंच रहा है और इसे पहुंचा रही हैं अलग अलग क्षेत्र की कई प्रतिभाएं। इसी फहरिस्त में शुमार हो चुका है एक और नाम और वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से मास्टर्स की डिग्री कर रहे धनंजय बंसोड़े का। ये 1 से 17 जून तक चीन के शेनयांग शहर में आयोजित लुकिंग चाइना एट 2026 यूथ फिल्म प्रोजेक्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करके लौटे हैं। इस इवेंट में 40 देशों के युवा फिल्म मेकर्स ने प्रतिभागिता की थी और चीन के कल्चर आधारित शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के टास्क को पूरा किया था। आइए मिलते हैं धनंजय बंसोड़े से। सबसे पहले धनंजय जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि आप हाल ही में लुकिंग चाइना 26 यूथ फिल्म प्रोजेक्ट में प्रतिभागिता करके आए हैं और भारत का प्रतिनिधित्व तो आपने चाइना में किया है।
1: धन्यवाद सर। मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं वन ऑफ द टू पार्टिसिपेंट्स था जो इंडिया से सिलेक्ट हुआ और मैं इसमें NID को थैंक यू करना चाहूंगा और इनफैक्ट AICCC को भी जो चाइना की ये बॉडी है जो ऐसे प्रोजेक्ट्स 15 साल से करा रही है। इंटरनेशनल यूथ को एक्सपोजर जो मिलता है अलग अलग कंट्रीज के कल्चर का, तो मुझे लगता है कि ये काफी बेनिफिशियल है।
0: किस तरह का काम था आपका और किस तरह के प्रोजेक्ट को आपने इसमें बनाया?
1: क्योंकि ये चाइना ही कंडक्ट कराता है तो इसमें चाइना जो बॉडी है AICCC मेक श्योर करती है कि जो चाइनीज कल्चर जो छुपा हुआ है, तो इस प्रोजेक्ट के जरिए वो चाहते हैं कि जो यूथ है बाकी देशों का वो आए और छोटे छोटे कल्चर पे डॉक्यूमेंट्री बनाए 10 से 12 मिनट की। जो थीम्स हैं जिस पे डॉक्यूमेंट्री बननी है, 1-1.5 महीने पहले से ही बता दिए जाती हैं कि आपको क्या चूज करना है। तो 12-13 टॉपिक्स में से मैंने एक चूज किया था, वो था डिसेंडेंट्स ऑफ जेड। ये जो जेड कला है वो चाइनीज में 5 से 6 हज़ार साल पुरानी कला है जो रॉयल इम्पीरियल एरा से आती है, किंग डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी। तो उसमें एक खास तरह का पत्थर है जिसे जेड बोलते हैं, जिसमें चाइनीज का कल्चर और डीप रूटेड सोसाइटल वैल्यूज हैं। तो उसकी जो नक्काशी होती है, उसकी जो कार्विंग होती है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। जो जेड कार्विंग से लोग जुड़े हुए हैं, डिस्कवर करूँ, लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करूँ कि लोग क्या मानते हैं इस जेड के बारे में खास।
0: 40 देशों के तकरीबन 90 प्रतिभागियों की इसमें प्रतिभागिता थी। आपने जाहिर है कि दूसरे देशों का कल्चर भी एक्सचेंज किया होगा, उनके बारे में भी समझा होगा, वो कितने उत्साहित थे इस कार्यक्रम को लेकर?
1: 10 बच्चे एक एक प्रोविंस में थे। मैं लाइनिंग प्रोविंस में था और इंडिया से उसमें 2 बच्चे, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, हम 5 कंट्री से थे जो दो दो दो दो लोग थे। हमारे लिए एक मेंटर भी अपॉइंट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से, जो प्रोफेसर है वो इंग्लिश में हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो एक बहुत एक कोहेसिव एनवायरनमेंट था। साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हमारा बहुत साथ दिया हुआ था, मतलब एक बहुत गाइडेड टूर था। 3-4 दिन ऐसा लग रहा है कि अच्छा कोई यहाँ से कोई वहाँ से, बट बाकी सबके डर एक जैसे हैं, सबका काम एक जैसा, इच्छाएं एक जैसी हैं, सब पहली बार चाइना देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि एक ही दुनिया है।
0: और जाहिर है कि जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं और अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने लिए एक बहुत ही गौरव की बात होती है। और भारत को लेके आपने क्या महसूस किया कि कितनी रुचि भारत के कल्चर को जानने समझने की है लोगों में?
1: जिस प्रोविंस में मैं गया था लायोनिंग और उसके आगे भी जहाँ मेरा शूट था, तो वो और एक 250 किलोमीटर अंदर शुयान करके एक गांव है, कोई भी भारतीय पिछले 4-5 साल से नहीं गया था। तो मैं जब गया था तो वहां पे इंदु बुलाते हैं, इंडियंस को इंदु बोलते हैं, तो एक वो बहुत एक VVIP एक्सपीरियंस मिला मुझे, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आँखों को लेके, कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हाइट को लेके, और इंडिया से अच्छा क्योंकि किसी ने इंडियंस नहीं देखे वहाँ पे। हॉस्पिटैलिटी मैंने बहुत अच्छी रिसीव करी, हर जगह प्यार से लेके जाना, कोई को भी कुछ खाने को फ्री में दे दे रहा है।
0: परियोजना को पूरा करने के बाद अब अगला कदम आपका क्या होगा और आने वाले समय में भी आपके इस तरह के कुछ कार्यक्रम चलते रहेंगे?
1: इस फिल्म को मैं अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में भेजूं, जो भी एशियन डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स हैं या इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स हैं। मेरी जो प्रोड्यूसर है जिनके थ्रू मैं ये फिल्म बना पाया, तो वो भी चाइना में रह के चाइना के फिल्म फेस्टिवल्स में भेजेंगी।
0: धनंजय जी, आपने फैशन कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद अब आप डिजाइनिंग में ये अपना कोर्स कर रहे हैं।
1: जब मैं दिल्ली में था अपनी पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन की, मुझे तब कैमरे का थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर मिला क्योंकि मैं वहाँ पे फैशन गारमेंट्स के वीडियो बनाता था, और धीरे धीरे करके फ्रीलांस करके सीनियर्स का गारमेंट शूट हो गया। बट फिर धीरे धीरे मेरा एक्सपोजर थिएटर से हुआ, तो मैंने समझा कि एक सिनेमा जो वैल्यू है वो एक बहुत थोड़ा सा एक लेवल अप है, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। फिर मैं NID गया। अब मैं समझ पाता हूँ कि फिल्म क्यों ज़रूरी है समाज के लिए, क्या

0: आप घर में हों, सफर में हों, मॉर्निंग वॉक कर रहे हों, योग कर रहे हों, चाय पी रहे हों, हमेशा नमस्कार भोपाल को आसानी के साथ सुनना चाहते हैं तो आप मोबाइल भी एक जरिया है, न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर जाइए और सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं जुबिन नौटियाल और आकाशवाणी भोपाल के सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
0: जारी है नमस्कार भोपाल का सफर और आज मैं आपके साथ हूं संजय।

0: देखती है फिल्म, क्या करती है डॉक्यूमेंट्री, तो अब उस विचार को लेके मुझे अब आगे फिल्म मेकिंग में ही करना है।
1: आपके जैसे बहुत सारे युवाओं का मन होगा कि वो भी फैशन वर्ल्ड के लिए काम करें, डिजाइनिंग की फील्ड में कुछ करें, तो आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप है और कितनी मेहनत की जरूरत है इस फील्ड में आने के लिए?
0: अभी हाल ही में जैसे इंडी फिल्म मेकिंग का मुझे लगता है कि इंडस्ट्री थोड़ी सी और बूम होनी चाहिए, लेकिन बहुत मौके हैं, फिल्म फेस्टिवल्स हैं जहाँ ग्रांट्स हैं। अब हाँ, ऐसा नहीं लगता कि दरवाजे बंद हैं, आप कोशिश करें तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है हर जगह।
1: निश्चित रूप से हमारे बाकी युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का ये सबब बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए आपका।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: हमारे साथ थे धनंजय बनसोड़े, चीन में आयोजित लुकिंग चाइना एट 2026 यूथ फिल्म प्रोजेक्ट के प्रतिभागी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उपलब्धियों से धनंजय का नाता आगे भी बना रहे और देश को विश्व स्तर पर ख्याति भी दिलाते रहें, सबका मान बढ़ाते रहें। और नमस्कार भोपाल में हमारा प्रयास यही होता है कि आपको जुदा जुदा हस्तियों से रूबरू कराएं, ताकि आप भी उनसे प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठा सकें। फिलहाल नमस्कार भोपाल में गीत की बारी है, सुनिए।

0: 7:52 हुए हैं। भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से आज देश के अनेक युवा जुड़े हैं और विविध राज्यों की संस्कृति, रहन सहन और परंपराओं का ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के चयनित स्वयंसेवकों का एक दल झारखंड राज्य की संस्कृति, लोक कला, ऐतिहासिक विरासत आदि को जानने के उद्देश्य से झारखंड पहुंचा। युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत IIT इंदौर के माध्यम से तैयार दल में भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की NS छात्रा अनुपमा मिश्रा का भी चयन किया गया। हमने मुलाकात की अनुपमा के साथ। अनुपमा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हाल ही में युवा संगम कार्यक्रम के तहत अभी झारखंड की यात्रा करके लौटी हैं, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है युवा संगम। ये यात्रा कैसी रही और उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या रहा?
1: सर, यात्रा तो बहुत अच्छी रही और इसके पीछे मूल उद्देश्य था कि जितने भी युवा वर्ग हैं उन्हें किताबी दुनिया से बाहर ले जाकर एक औपचारिक तरीके से उन्हें सिखाया जाए कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज वगैरह में युवा अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं।
0: और इस बार भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो झारखंड की यात्रा थी वो IIT इंदौर के माध्यम से हुई थी। चयन कैसे हुआ आपका?
1: दो चरणों में हुआ था, जिसमें प्रथम चरण में हम लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया था, फिर हमारा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हुआ था। 70-80 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था। 20,000 एप्लीकेशन आए थे सिर्फ मध्य प्रदेश से। हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें पूछी गई, फिर उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन किया गया फाइनल राउंड। 50 सदस्यों का दल था और उसमें हमारे साथ 5 कोऑर्डिनेटर्स।
0: झारखंड प्रदेश का जो

0: वैभव है, जो वहाँ की संस्कृति है वो आपने जानने का प्रयास किया होगा और मध्य प्रदेश की संस्कृति को वहाँ रिप्रेजेंट किया होगा।
1: बाबा बैजनाथ धाम हो गया, ये घुमाया गया था। उसके बाद माइथॉन डैम हो गया, फिर जितनी भी ओपन कास्ट माइंस थी वो हमें दिखाई गई कि किस तरीके से कोल वगैरह की माइनिंग की जाती है, और फिर वहाँ पे जियोलॉजिकल पार्क वगैरह। तो बेसिकली ये देखने के लिए मिला कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया है, ग्रीनरी इन्वॉल्वमेंट है, वैसे ही झारखंड में जो हमारी संस्कृति ट्रेडिशन जो फॉलो करते हैं वो कुछ हद तक सेम था। और हमें बेसिकली देखने को मिला कि लोग बाग किस तरीके से वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहे हैं। जिस दिन हम लोगों की ओपनिंग सेरेमनी थी, मध्य प्रदेश से 2 वॉलेंटियर्स का सिलेक्शन किया गया था फोक डांस या फिर क्लासिकल डांस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें से एक मैं थी जिन्होंने मध्य प्रदेश का जो फोक डांस है कर्मा डांस, उसको रिप्रेजेंट किया था।
0: तो मध्य प्रदेश के कर्मा डांस को आपने वहां पर जब प्रस्तुत किया तो क्या प्रतिक्रिया रही लोगों की, क्या उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की इसके बारे में कुछ और जानने की?
1: सर जिज्ञासा ये रही, जो वहाँ का डांस है वो थोड़ा बहुत यहाँ के डांस से मिलता जुलता था, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। जो उसकी स्टेप्स थी वो बहुत ज्यादा सिंपल रहती है कर्मा डांस की, बहुत ज्यादा यूनिक रहती है, और जो उसका सॉन्ग रहता है बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया। और हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश गान है वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, तो लोगों को समझ में आया कि ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स है जो प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश को।
0: तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत युवा संगम जो कार्यक्रम था, झारखंड के किस प्रकार की बड़ी विभूतियों से भी आपका मिलना हुआ?
1: जी सर, हमें गवर्नर जी से भी मिलने का मौका मिला, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से झारखंड अलग है। हमें वहाँ पर पद्मश्री टूरू जी, उनका सरनेम याद है मुझे, नाम याद नहीं है, पूरी लाइफ फॉरेस्ट को बचाने में एंगेज, उनको पद्मश्री मिला, उनसे भी मिलने का मौका मिला। वहाँ के जितने भी डीन वगैरह थे उन सबसे मिलने का मौका मिला। पूरा IIT ISM धनबाद देखने को मिला, जो कि आजादी के पहले से बना हुआ है, 1926 से एस्टेब्लिश है। तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिली जो कि बहुत ही अच्छी चीज थी।
0: अनुपमा जी, कौन कौन से पहलू ऐसे रहे जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और आपको लगता है कि जो चीज मध्य प्रदेश में नहीं है वहाँ है?
1: सर वहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है जो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। हम लोगों को बेसिकली दिखाया गया किस तरीके से प्रॉपर कोल की माइनिंग वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती हैं, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हर एक चीज के लिए था। वो चीज बहुत पसंद आई जो कि हम किताबी दुनिया से नहीं जान सकते थे, वो हमें प्रैक्टिकली देखना ही जरूरी था।
0: हमारे साथ थी अनुपमा मिश्रा। युवा संगम कार्यक्रम में झारखंड में मध्य प्रदेश की संस्कृति की विशेषताओं से रूबरू कराकर पूरा दल प्रसन्नचित है और यही भाव झारखंड के युवा दल के हृदय में भी है। कदम कदम पर बोली, भाषा और पानी बदलने वाले भारत की बहुरंगी संस्कृति समृद्ध है और हर भारतवासी गर्व करता है कि वो इनका साक्षी बन रहा है। यकीनन युवा संगम कार्यक्रम नए आयाम स्थापित करेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में, जहां पर एक गीत की गुंजाइश है, तो सुनिए ये गीत लंबे फिल्म से। लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाजें हैं। हमें ये भी बताते जाइएगा कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। नमस्कार भोपाल द्वारा निदेशक आकाशवाणी श्याम लहिर्स भोपाल, पिन 4620002, इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजकर।

0: पेश करेंगी नेहा सोनी। तो आपका दिन शुभ हो, आपकी सारी कामनाएं पूरी हों, इसी उम्मीद के साथ अनुमति दीजिए अपने मित्र संजय श्रीवास्तव को अगली मुलाकात तक के लिए। नमस्कार।
1: अभी नमस्कार भोपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम

0: स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में

0: सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी

कहते हैं इंसान की सोच यदि तंग हो जाए तो खूबसूरत ज़िंदगी भी जंग हो जाती है। इसलिए हमें अपनी सोच को हमेशा सही रखना चाहिए। सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरमई सवेरा में। और आज के सफ़र में मैं हूँ आपके साथ नेहा सोनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, सबकी कहानियाँ अलग लिखी गई है, पर संघर्ष हर किसी के जीवन में है। हर किसी की कहानी अलग सही से लिखी गई है, पर संघर्ष वो एक ही शब्द है जो हर पन्ने पर चुपचाप दर्ज है। कोई इसे हालात कहकर टाल देता है, कोई किस्मत का नाम दे देता है, और कोई उसे अपने अस्तित्व की परीक्षा मानकर हर रोज भीतर ही भीतर लड़ता है। संघर्ष हमेशा शोर नहीं करता, अक्सर वो मुस्कुराते चेहरे के पीछे सबसे गहराई में छुपा रहता है। जहाँ शब्द थक जाते हैं, वहाँ सहनशीलता बोलती है। कहानियाँ भले ही भिन्न हों, पर पीड़ा का व्याकरण सबके लिए लगभग एक सा होता है। कई बार टूटना, संभलना और फिर खुद को पहले से थोड़ा मजबूत पाना, शायद इसलिए संघर्ष हमें कमज़ोर नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर छुपे असली मनुष्य को धीरे धीरे उजागर करता है। क्योंकि जो बिना संघर्ष के जिया हो, उसकी कहानी हो सकती है, पर गहराई नहीं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोताओं, हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, इसलिए भले ही कुछ भी हो, हर दिन का हमें आनंद लेना चाहिए। हम चीजों को केवल श्वेत शाम की तरह नहीं देखते, इसलिए जो कुछ घटित होता है उसमें हम स्वाभाविक रूप से मौजूद अच्छाई या बुराई का भेद नहीं कर सकते। ना तो अच्छा हमें सोचना चाहिए और ना ही बुरा। हमें ये सीख मिलती है कि चीज़ों को अच्छे या बुरे के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए और जीवन पर दोहरे दृष्टिकोण से बचना चाहिए, बल्कि हमें इस प्रकार सोचना चाहिए कि इस पल में मेरा अनुभव अनोखा है, इस बारे में कुछ भी स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है, कुछ भी सकारात्मक हो सकता है जो इस पर निर्भर करता है। इसलिए हर एक वक्त का, हर एक पल का, हर एक दिन का हमें आनंद लेना चाहिए, बजाय ये सोचना कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। देखिए, ये तो समय है और समय के साथ चीज़ें घटित होती रहती है, लेकिन हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, अनुभव दे जाता है।

श्रद्धा जीवन की यात्रा में सबसे कठिन जो कार्य है वो है खुद के मन को नियंत्रित करना। जीवन की राह पर जितनी चुनौतियां बाहर दिखाई देती है उससे कहीं गहरी लड़ाई भीतर चलती रहती है, और इस भीतर की लड़ाई का सबसे कठिन मोर्चा है अपने ही मन को नियंत्रित करना। मन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी, कभी यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है और कभी पल भर में नीचे गिरा देता है। दुनिया को हराना आसान हो सकता है, पर अपने मन की जिद, उसके भय, उसकी लालसाओं और उसकी अस्थिरता को जीतना, यही असली तप है। मन को काबू में रखना मतलब अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिकार पाना, अपने भावों की दिशा तय करना और परिस्थितियों को अपने भीतर की स्थिरता को हिलने ना देना। ये कार्य कठिन इसलिए है क्योंकि मन हमेशा तेज भागता है, अतीत की ओर, भविष्य की ओर, डर की ओर, इच्छाओं की ओर। उसे वर्तमान में टिकाना, उसे सजग रखना, उसे संभालना

एक निरंतर साधना है। लेकिन जब ये साधना सफल होती है तो व्यक्ति बाहरी दुनिया से नहीं अपने भीतर से विजय प्राप्त करता है और यही विजय उसे जीवन में शांति, स्पष्टता और शक्ति भी देती है।

श्रोताओं, मौन क्रोध की दवा और समझ का द्वार। क्रोध जब भीतर से उठता है तो उसकी आग सबसे पहले हमारी वाणी को जलाती है। हम कुछ ऐसा कह बैठते हैं जिसे शब्दों में नहीं वर्षों के मौन से भी ठीक नहीं किया जा सकता। क्षणिक आवेग हमें तात्कालिक तृप्ति देता है पर पश्चाताप जीवन भर सलता है। इसलिए मौन ही वह पहली औषधि है जो हमें संयम का स्वाद चखाती है। लेकिन मौन केवल प्रतिक्रिया रोकने का माध्यम नहीं है, मौन एक श्रोता बनाता है। जब हम चुप होते हैं तो केवल शांत नहीं होते, हम सुनना प्रारंभ करते हैं। दूसरे की पीड़ा, उसका पक्ष, उसकी चुप्पी, सब हमारे भीतर उतरने लगता है। बोलते समय हम केवल अपना सत्य कहते हैं, मौन में हम एक दूसरे का सत्य समझते हैं। इसलिए क्रोध के क्षणों में मौन धारण करना ये कायरता नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता होती है।

0: सुरमई सवेरा कार्यक्रम में यहाँ रुकते हैं छोटे से विराम के लिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण MOU हुआ है। जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर रवाना होंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध अब लागू नहीं रहेंगे। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने कल पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में अपनी जगह

0: प्रणाली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए पुनः रुक करते हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा की ओर। दोस्तों, प्रकृति हमें ये संदेश देती है कि गतिशील रहो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चीज़ ठहरी हुई रहती है वह सड़ गल जाती है, जैसा कि ठहरा हुआ पानी। प्रकृति की हर सुंदर और जीवंत चीज़ गतिशील रहती है, जैसे कि बहता हुआ पानी, हवा, चांद, सितारे इत्यादि। सच तो यह है कि गति के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे ही हमारा चलना फिरना बंद हो जाता है, हमारा भी अंत निकट आ जाता है। जीवन में गतिशील रहने का सरल शब्दों में अर्थ ये है कि परिवर्तन को स्वीकारना और परिवर्तन के लिए खुद को हमेशा तैयार करते रहना। परिवर्तन हमारी प्रगति के लिए ज़रूरी है और प्रगति के बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। जहां ठहराव की स्थिति में प्रगति संभव नहीं है, वहीं गतिशीलता की स्थिति में हमेशा प्रगति की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इस स्थिति में हमेशा अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा ठहराव के बजाय गति का चुनाव करना चाहिए।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्रोताओं, हमेशा अपने कदमों पर नजर रखना जरूरी है। सपने और लक्ष्य दोनों का होना महत्वपूर्ण है। सपना छोटा है या बड़ा, इसके मायने हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी के लिए सपने एक ही है। जब हम किसी बड़े सपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो इसे पास में पकड़कर रखने के बजाय इसे ऊंचा उठाना अधिक बेहतर है। यदि आपका सपना या लक्ष्य बहुत बड़ा है तो हमें इसको पूरा करने के लिए उस दिशा में चलने की भी ज़रूरत है, और जब हम उस दिशा में चलेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत बार हमें ठोकर लगेगी, लेकिन इस ठोकर से हमें घबराना नहीं है। जब हम इस ठोकर से नहीं घबराएंगे, जब हम पीछे नहीं हटेंगे, तो जाहिर सी बात है हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने कदमों की ओर ज़रूर बढ़ेंगे।

और श्रोताओं, चलते चलते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में एक दोस्त, एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिसे आप जब चाहे कॉल कर सके, मैसेज कर सके, सलाह ले सके, अपने सुख दुख बांट सके और ज़रूरत पड़ने पर कंधे पर सिर रख कर रो सके, खुलकर हंस सके, घूम सके, जब चाहे मिल सके, बेझिझक होकर निसंकोच सब कुछ उसे बता सके। इसलिए ऐसे दोस्त अपने ज़िंदगी में ज़रूर बनाएं जो आपके साथ हमेशा हो। और फिलहाल आज के सुरमे से वरा कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते आपको ले चलते हैं इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रश्मि ससुड़े के गाए गीत और भजन।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रश्मि ससुड़े के गाए गीत और भजन। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। शब्द सागर में सुनिए महेश अग्रवाल का काव्य पाठ।
1: नमस्कार, मैं महेश अग्रवाल गजलों के साथ उपस्थित हूँ। कि मेघ तुम्हारे घर ठहरे हैं, प्यास जरूरत है मेरी। मेघ तुम्हारे घर ठहरे हैं, प्यास जरूरत है मेरी। तुम हो साहूकार सुखों के, पीर विरासत है मेरी। मेघ तुम्हारे घर ठहरे हैं, प्यास जरूरत है मेरी। तुम हो साहूकार सुखों के, पीर विरासत है मेरी। खूब जिरह करता हूँ खुद से, खूब जिरह करता हूँ खुद से, तब निर्णय ले पाता हूँ। मेरे भीतर सोच समझ की एक अदालत है मेरी। खूब जिरह करता हूँ खुद से, तब निर्णय ले पाता हूँ। मेरे भीतर सोच समझ की एक अदालत है मेरी। लोग प्रशंसा के पुल बांधें या आलोचक बन जाएं, लेकिन सच को सच कहने की सच्ची हिम्मत है मेरी। लोग प्रशंसा के पुल बांधें या आलोचक बन जाएं, लेकिन सच को सच कहने की सच्ची हिम्मत है मेरी। प्रेम भरे दो शब्दों के सिक्कों में ही बिक जाता हूँ। प्रेम भरे दो शब्दों के सिक्कों में ही बिक जाता हूँ। मेरे सारे मित्र समझते कितनी कीमत है मेरी। प्रेम भरे दो शब्दों के सिक्कों में ही बिक जाता हूँ। मेरे सारे मित्र समझते कितनी कीमत है मेरी। और मेरा घर परिवार जहाँ का मैं राजा कहलाता हूँ। मेरा घर परिवार जहाँ का मैं राजा कहलाता हूँ। मेरे घर की चौहद्दी ही सिर्फ रियासत है मेरी। मेरा घर परिवार जहाँ का मैं राजा कहलाता हूँ। मेरे घर की चौहद्दी ही सिर्फ रियासत है मेरी। और एक कलम कागज शाही है मन की एक तिजोरी में। एक कलम कागज शाही है मन की एक तिजोरी में। गज़लों के कुछ सिक्के भी हैं, इतनी दौलत है मेरी। एक कलम कागज शाही है मन की एक तिजोरी में। गज़लों के कुछ सिक्के भी हैं, इतनी दौलत है मेरी। मेघ तुम्हारे घर ठहरे हैं, प्यास जरूरत है मेरी। तुम हो साहूकार सुखों के, पीर विरासत है मेरी। अगली गज़ल कि धूप आई छप्परों के छेद से घर में। धूप आई छप्परों के छेद से घर में। यूं लगा कुछ तो उजाले हैं मुकद्दर में। धूप आई छप्परों के छेद से घर में। यूं लगा कुछ तो उजाले हैं मुकद्दर में। शेर देखिए कि जिंदगी अपनी खंगालो तो ज़रा तुम भी। जिंदगी अपनी खंगालो तो ज़रा तुम भी। रत्न सब के सब नहीं मिलते समुंदर में। जिंदगी अपनी खंगालो तो ज़रा तुम भी। रत्न सब के सब नहीं मिलते समुंदर में। और ज़िद हवा की है तो मैं भी कम नहीं ज़िद्दी। ज़िद हवा की है तो मैं भी कम नहीं ज़िद्दी। मैं चिरागों को जलाऊंगा बवंडर में। ज़िद हवा की है तो मैं भी कम नहीं ज़िद्दी। मैं चिरागों को जलाऊंगा बवंडर में। और बोल उठते हैं बहुत बेजान पत्थर भी। बोल उठते हैं बहुत बेजान पत्थर भी। डालता है जान जब नक्काश पत्थर में। बोल उठते हैं बहुत बेजान पत्थर भी। डालता है जान जब नक्काश पत्थर में। नफ़रतों के चार अक्षर हार जाते हैं। नफ़रतों के चार अक्षर हार जाते हैं। आज भी ताकत बहुत है ढाई आखर में। नफ़रतों के चार अक्षर हार जाते हैं। आज भी ताकत बहुत है ढाई आखर में। और हार में भी जीत हो या जीत में भी हार, बस यही अंतर रहा पौरस सिकंदर में। हार में भी जीत हो या जीत में भी हार, बस यही अंतर रहा पौरस सिकंदर में। और देश अपना

0: सोच में कुछ और आगे है, देश अपना सोच में कुछ और आगे है, हम समुंदर भी भरा करते हैं गागर में। देश अपना सोच में कुछ और आगे है, हम समुंदर भी भरा करते हैं गागर में। एक और गज़ल, शब्द की गरिमा रह जाए ऐसा कुछ लिख दूँ, शब्दों की गरिमा रह जाए ऐसा कुछ लिख दूँ, दुनिया के प्यासे होठों पर मैं दरिया लिख दूँ। शब्दों की गरिमा रह जाए कुछ ऐसा लिख दूँ, दुनिया के प्यासे होठों पर मैं दरिया लिख दूँ। शेर देखिए कि दुख दर्दों के मुझ में जलते होते रहते हैं, दुख दर्दों के मुझ में जलते होते रहते हैं, इन जलसों में खुद को मैं कैसे तन्हा लिख दूँ। दुख दर्दों के मुझ में जलते होते रहते हैं, इन जलसों में खुद को मैं कैसे तन्हा लिख दूँ, और मेरी गलती पर वो उंगली रोज़ उठाता है, मेरी गलती पर वो उंगली रोज़ उठाता है, जी करता है उस दुश्मन को आईना लिख दूँ। मेरी गलती पर वो उंगली रोज़ उठाता है, जी करता है उस दुश्मन को आईना लिख दूँ। और आंसू की शक्लों में पानी रहता आँखों में, आंसू की शक्लों में पानी रहता आँखों में, कैसे आँखों की झीलों को मैं सहरा लिख दूँ। आंसू की शक्लों में पानी रहता आँखों में, कैसे आँखों की झीलों को मैं सहरा लिख दूँ, और बचपन को लिख दूँ पेड़ों की नन्ही कोपल था, बचपन को लिख दूँ पेड़ों की नन्ही कोपल था, और बुढ़ापे के सच को पीला पत्ता लिख दूँ। बचपन को लिख दूँ पेड़ों की नन्ही कोपल था, और बुढ़ापे के सच को पीला पत्ता लिख दूँ। खुद को लोग समुंदर कहते हैं तो कहने दो, खुद को लोग समुंदर कहते हैं तो कहने दो, लेकिन मैं खुद को कतरे का भी कतरा लिख दूँ। खुद को लोग समुंदर कहते हैं तो कहने दो, लेकिन मैं खुद को कतरे का भी कतरा लिख दूँ। शब्दों की गरिमा रह जाए कुछ ऐसा लिख दूँ, दुनिया के प्यासे होठों पर मैं दरिया लिख दूँ। एक और गज़ल, जिंदगी को और कुछ नज़दीक आकर देखना, तुम किसी के ज़ख्म पर मरहम लगा कर देखना। ज़िंदगी को और कुछ नज़दीक आकर देखना, तुम किसी के ज़ख्म पर मरहम लगा कर देखना, और कुछ स्वादिष्ट होगा रोटियों का स्वाद भी, और कुछ स्वादिष्ट होगा रोटियों का स्वाद भी, तुम कभी अपने पसीने को बहा कर रखना। और कुछ स्वादिष्ट होगा रोटियों का स्वाद भी, तुम कभी अपने पसीने को बहा कर देखना। यूँ तुम्हारी ज़िंदगी वातानुकूलित हो भले, यूँ तुम्हारी ज़िंदगी वातानुकूलित हो भले, धूप में तुम भी कभी तलवे जला कर देखना। यूँ तुम्हारी ज़िंदगी वातानुकूलित हो भले, धूप में तुम भी कभी तलवे जला कर देखना। जीत के कुछ और भी आयाम खुलते जाएंगे, जीत के कुछ और भी आयाम खुलते जाएंगे, ज़िंदगी में तुम कभी खुद को हरा कर देखना। जीत के कुछ और भी आयाम खुलते जाएंगे, ज़िंदगी में तुम कभी खुद को हरा कर देखना। और यूँ भले खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक दे न दें, यूँ भले खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक दे न दें, पर गमों की खिड़कियों से मुस्कुरा कर देखना। यूँ भले खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक दे न दें, पर गमों की खिड़कियों से मुस्कुरा कर देखना। और तुम बना लेते समुंदर एक चुल्लू झूठ को, तुम बना लेते समुंदर एक चुल्लू झूठ को, पर कभी गंगा जली सच की उठा कर देखना। तुम बना लेते समुंदर एक चुल्लू झूठ को, पर कभी गंगा जली सच की उठा कर देखना। और ज़िंदगी का हश्र ये मिट्टी तुम्हें समझाएगी, ज़िंदगी का हश्र ये मिट्टी तुम्हें समझाएगी, धूल थोड़ी सी हवा में तुम उड़ा कर देखना। ज़िंदगी का हश्र ये मिट्टी तुम्हें समझाएगी, धूल थोड़ी सी हवा में तुम उड़ा कर देखना। ज़िंदगी को और कुछ नज़दीक आकर देखना, तुम किसी के ज़ख्म पर मरहम लगा कर देखना। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे महेश अग्रवाल का काव्य पाठ। लीजिए।

0: सुनिए व्यंग्य वार्ता, विषय है नींद। वार्ताकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सक्सेना।
1: नींद का आना न आना, कम ज्यादा आना जाना, सब मुसीबत की जड़ है। डॉक्टरों के अनुसार यूं हर मनुष्य के लिए प्रतिदिन 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। लगातार कम नींद से विशेषकर महिलाओं में चेहरे की चमक कम और गुस्सा, पुरुषों में याददाश्त की कमी और चिड़चिड़ापन आदि आदि समस्याएं जन्म ले लेती हैं। गोरी महिलाएं गुस्से से काली पड़ जाती हैं और काले गोरे सभी तरह के आदमी चिड़चिड़ेपने के कारण अपनी खुद की बीवी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे नुमा आदमी और औरत दिन में भी सुनहरे सपने देखते रहते हैं। नींद को केवल रात की रानी कहना उसका अपमान करना होगा। कान में जूं डालकर आप सो सकते हैं, चाहे तो काकरोच भी दोनों कानों में डालकर मजे से सो सकते हैं। आप नींद में खर्राटे ले सकते हैं, करवट

नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे नुमा आदमी और औरत दिन में भी सुनहरे सपने देखते रहते हैं। नींद को केवल रात की रानी कहना उसका अपमान करना होगा। कान में जूं डालकर आप सो सकते हैं, चाहे तो काकरोच भी दोनों कानों में डालकर मजे से सो सकते हैं। आप नींद में खर्राटे ले सकते हैं, करवट बदल सकते हैं और क्या क्या बदल सकते हैं। आप नींद में कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। जो काम आप जागते हुए मुश्किल से कर पाते हैं, वही काम आप नींद में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नींद में सपने आने पर यूरोप, अमेरिका, टिम्बकटू कहीं भी घूमकर आ सकते हैं। और अगर आपका नरक और स्वर्ग से परिचय है तो यमराज और हूरों से आसानी से मिल सकते हैं। दिल करता है कि नींद तू मस्त मस्त फिल्मी स्टाइल में गाना लिख डालूँ। नींद गरीब को आती है और अमीर को भी। साधु, संत, योगी, दार्शनिक, कवि और बहुत सारे लोग नींद के संबंध में भ्रामक बातें करते रहते हैं। हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। साधु संतों को नींद आती है परंतु दूसरों को इससे बचने की हिदायत देते रहते हैं। सुबह जल्दी उठने का उपदेश देने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। कहेंगे, सुबह सुबह उठकर ध्यान लगाओ। अरे, ध्यान भी तो एक तरह की नींद ही है। हमारे और आपके हिसाब से यह जीवन भी तो एक नींद ही है। शायद इसे अंग्रेजी में कहते हैं, लाइफ इज़ बट ए ड्रीम। ज़्यादा जोर की नींद लगी और काम तमाम हो गया, राम नाम। इसलिए नींद लो, पर बीच बीच में आँख खोलकर देखते रहो कि दुनिया में क्या हो रहा है। दार्शनिक दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या से जीवन को परिभाषित करते रहते हैं। अब इनसे कोई पूछे, नींद क्यों आती है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। चिर निद्रा में जो लीन हो गया, उसे डॉक्टर, हकीम, वैद्य कोई भी उठा नहीं सकता। उसे केवल चार आदमी ही उठा सकते हैं। कवि अगर प्यार में असफल रहा है तो नींद पर इस तरह के गीत लिखता है कि सुनने वाला सुनकर सो जाता है। और अगर वह प्यार में सफल होता तो कवि के बजाय पति बनता। सभी कवियों से निवेदन है कि वे सोते जागते इस बारे में सोचें और लिखें। सिगमंड फ्रायड और यंग सपनों और नींद के बारे में बहुत कुछ लिख गए। केवल कुछ लोगों को ही रंगीन टेक्निकलर सपने क्यों आते हैं? मुंगेरी लाल को दिन में भी रंगीन कलरफुल सपने आते हैं। सपने सपने हैं। जेम्स जॉइस ने यूलिसिस उपन्यास में 10-20 पेज अपना सपना लिखने में ही रंग डाले। नींद आएगी तो सपने भी अवश्य बिन बुलाए आएंगे। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने नींद में कभी भी सपना ना देखा हो? नींद, बेहोशी और कोमा तीनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग? तीनों अवस्थाओं में आदमी को सही सही याद नहीं रहता, एक शादीशुदा के समान। नींद एक नियमित प्रक्रिया है, बेहोशी यदा कदा और कोमा केवल किस्मत वालों को ही होता है। कोमा में आदमी सालों साल बेखबर, पर लोग परेशान, यहाँ तक कि डॉक्टर भी परेशान। बेहोशी में आदमी थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर अपने आप में मस्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्रायः लेखकों और महान वैज्ञानिकों को देखा जा सकता है। इस तरह का वातावरण निर्माण हेतु कभी कभी तरह की औषधियों का सेवन करना परमावश्यक हो जाता है। कुछ बीमार काया वालों को नींद न आने पर गोली खाना होती है, कड़वी दवा पीना होती है। जिनको ज़्यादा नींद आती है उन पर दवा गोली जरूरी हुआ तो अपने ही खर्राटों से आपकी नींद को रोके रखते हैं। ध्यान रहे, नींद का छोटा बच्चा झपकी कहलाता है। कुछ लोग अनजाने में नींद में चलते हैं, वे नींद में ही अपना या आपका मर्डर भी कर सकते हैं। कुछ को नींद में ही भूत, प्रेत, चुड़ैल और न जाने क्या क्या दिखते हैं। ऐसा हमने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, उपन्यास, नाटक और कहानियों में पढ़ा है। आपने भी पढ़ा होगा। यूं बगासी, जुम्हाई, अंगड़ाई नींद आने के पूर्व लक्षण होते हैं। मैं यहाँ बगासी लूँ तो आपको वहाँ नींद आ जाएगी, और अगर आप वहाँ जमाई लें तो मुझे यहाँ नींद आ जाएगी। ड्राइवर चाहे कार का हो, ट्रेन का हो, जहाज का, हवाई जहाज का हो, यूँ समझ लीजिए हर तरह के ड्राइवर को अपना काम करते समय सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग नींद में खर्राटे लेते हैं तो कुछ खर्राटों के बीच भी बड़े मज़े और इत्मीनान से नींद लेते हैं। होशियार लोग भरी ट्रेन या भरी बस में भी खड़े खड़े ही नींद को लपक लेते हैं।

0: लोग कहते हैं कि कुछ पक्षी, जानवर और आदमी रात के अंधेरे में ही देख पाते हैं। वे रात में नींद ले पाते हैं या नहीं, विश्वासपूर्वक मैं नहीं कह सकता। आप चाहें तो किसी उल्लू या चमगादड़ का साक्षात्कार लेकर यह प्रश्न अपने समाधान एवं संतोष के लिए अवश्य कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में धूम्रपान निषेध के अलावा खर्राटे मना की सूचना पट्टी होना जरूरी है। मेरे मामा जी की बिटिया अपने पिताश्री यानी मेरे मामा जी के साथ फिल्म देखने जाने से कतराती थी। उसकी शिकायत होती थी, पिताजी के खर्राटों के कारण लोग फिल्म देखने के बजाय हमारी ओर देखने लगते हैं। माँ बाप धूरी संध्या यानी डस्क के समय बच्चों को सोने से मना करते हैं। मेरी माँ तो इस समय को शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक खींच कर ले जाती थी। नींद और पढ़ाई का गहरा संबंध है। पढ़ाई के नाम पर नींद आना स्वाभाविक है। इधर कुछ लोगों का यह हाल है कि घर में आग लग जाने पर भी वे नींद से नहीं उठेंगे। नींद अमूल्य जो है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय जो लोग घरों में सोते रहे वे बच गए, और जो नींद को दगा देकर खुले में भागे वे बेमौत मर गए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सपनावस्था और शांत निद्रा अवस्था। आज की भीड़भाड़ भरी जिंदगी में आदमी जागृत अवस्था में भी दिन रात अपने आप को सपने देखते हुए पाता है। पुराने विद्वानों के मतानुसार जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं, नींद में आया सपना मर जाता है। नींद के लिए गद्दा, तकिया, लिहाफ, कुर्सी, सोफा आदि उपकरण जरूरी नहीं हैं। लोग सड़क पर, जमीन पर, यहाँ तक कि जहाँ जगह या मौका मिले वहीं सो जाते हैं। नींद से शरीर को आराम, दिमाग को ताजगी मिलती है। नींद दवा है, नशा है, वरदान है। परंतु परीक्षा के दिनों में बेवजह नींद कुछ ज़्यादा ही आती है, और जब परीक्षा खत्म हो जाती है तो नींद नदारद हो जाती है। चोरों को रात में बिल्कुल नींद नहीं आती, इसी कारण बेचारे चोरी करते हैं। बूढ़े व्यक्तियों को नींद कम आती है, सासों को नींद कम, बहू और बच्चों को कुछ ज़्यादा ही नींद आती है। अब आपसे बात करते करते मुझे भी आ रही है नींद, इस कारण शुभ रात्रि, गुड नाइट आदि आदि।
1: शब्द सागर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे व्यंग्य वार्ता, विषय था नींद। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पद्मावत फिल्म का गाना है, आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल, स्वरूप खानो साथियों की, संजय लीला भंसाली का संगीत है और गाने को लिखा है AM तुराज ने।

सिंगिस किंग इस फिल्म का गाना सुनिए। लव जुनेजा, सर्जी क्यू और साथियों की आवाजें हैं। संगीत प्रीतम का और एक गाने को लिखा है मयूर पुरी ने।

0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म का गाना सुनिए फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल है और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।
1: जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम में हुए बदलाव का असर बालाघाट जिले में भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के कारण लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन तेज बारिश का अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बालाघाट जिले में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिले में बीते 1 जून से 24 जून तक कुल 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। अब बात करते हैं विश्व सिकल सेल दिवस की। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुस्कान ओपीडी के अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जाँच कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमे कुल 1899 लोगों की जाँच की गयी। इस वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस की थीम जीवन रक्षा के अंतर को समाप्त करना, सिकल सेल देखभाल में समानता सुनिश्चित करना रही। कार्यक्रम के दौरान 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की सिकल सेल की जांच की गई और गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों, बच्चों, सिकल सेल पॉजिटिव मरीजों तथा आमजनों को रोग के प्रति जागरूक किया गया। बीते 21 जून को बालाघाट के मुलना स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सांसद भारती पारधी की अध्यक्षता में सामूहिक योग में जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर मृणाल मीना, अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ज्ञान भारतम मिशन के तहत बालाघाट जिले में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। अब बात करते हैं किसानों के कल्याण से जुड़ी खबर की। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,36,130 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जिला स्तरीय रैंकिंग में बालाघाट जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2026 माह में बालाघाट जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगातार 2 माह तक प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों में स्थान बनाकर बालाघाट ने किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। अब बात करते हैं खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र की। विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने चित्रकला के माध्यम से योग, स्वास्थ्य और ओलंपिक मूल्यों का संदेश दिया। इस अवसर पर 35 खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सतीश शर्मा ने कहा कि कड़े परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही भविष्य के ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार होंगे। अब बात करते हैं जिले में प्रशासनिक गतिविधियों की। भोपाल से मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बीते दिनों प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान बनाया। इसी प्रकार टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी बालाघाट ने 100% उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहला स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पंजीयन में बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अब बात साइबर जागरूकता की। बालाघाट जिले में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज ललित शाकेवार, उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की उपस्थिति में बीते दिनों साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आयोजित सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ललित शाकेवार ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण को लेकर एक अच्छी खबर है। पुलिस सेवा में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस बैंड भर्ती की घोषणा की गई है। इस क्रम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा अमर शहीद आशीष शर्मा निशुल्क पुलिस बैंड प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 250 से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण केवल बालाघाट तक सीमित नहीं है, बल्कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के युवा भी यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस बैंड भर्ती एवं रोजगार की दिशा में अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर हैं। और अंत में बात दो बूंद जिंदगी की। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान चलाया जा रहा है, जहां 3,584 टीकाकरण कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी पूरी तत्परता के साथ सेवाएं दे रहे हैं। बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे बालाघाट जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सागर।

सादगी कोई तालीम नहीं जो किताबों से हासिल हो, ये वो संस्कार है जो किरदार में झलकता है। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत सागर में और मैं हूँ आपके साथ नेहा सोनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओ, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी के बारे में। आप जानते हैं वो कौन सी जोड़ी है? नहीं तो ज़रा ये गीत सुनिए, उसके बाद थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, जानने की कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए और इस गीत के बाद हम कार्यक्रम में उस मशहूर जोड़ी के बारे में बात करेंगे।

श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी में से कल्याण जी के बारे में। जी हाँ, नाम तो आपने सुना होगा, कल्याण जी आनंद जी, और उन्हीं में से एक है कल्याण जी, जिनका जन्म 30 जून 1928 को हुआ था। और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए हम उनके बारे में कार्यक्रम में बात कर रहे हैं और कुछ नगमे उन्हीं के फिल्म के आप तक पहुँचा रहे हैं। कल्याण जी और आनंद जी दोनों भाइयों की जोड़ी को संगीत के महारथियों में गिना जाता है। इस जोड़ी ने बॉलीवुड संगीत में 3 दशकों तक अहम योगदान दिया और खूब नाम भी कमाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, कई सारे दिग्गज संगीतकार थे, गायक थे, लेकिन इस जोड़ी ने जो संगीत दिया उसने सभी को कभी हंसाया तो कभी ऐसे नगमे वो हमारे सामने लेके आया, ऐसा संगीत हमारे सामने लेके आया जिसे आज भी हम पसंद कर रहे हैं। जब इस जोड़ी ने पेशेवर तौर पर संगीत की दुनिया में कदम रखा तब बॉलीवुड में कई दिग्गज संगीतकारों का बोलबाला भी था। इस वजह से शुरुआत में दोनों भाइयों को, जैसा कि कल्याण जी आनंद जी, हम सभी जानते हैं दो भाई हैं, और इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन बाद में इन्होंने एक अपनी जगह इस जगत में बॉलीवुड में बनाई और मशहूर संगीतकारों में उनका नाम शामिल हो गया।

श्रोताओं, जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने अपने इस करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में गाने दिए हैं, कई सदाबहार फिल्मों में गाने दिए हैं, संगीत दिया है, जिसमें से डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, जॉनी मेरा नाम, कुर्बानी, लावारिस, जंजीर, सफ़र, पूरब और पश्चिम, उपकार, जब जब फूल खिले, कोरा कागज़ प्रमुख है। इसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं जैसे हिमालय की गोद में, छलिया, रफू चक्कर, धर्मात्मा, जांबाज, सरस्वती चंद, ब्लैकमेले, ये वो फिल्में हैं जिसमें इस जोड़ी ने संगीत दिया। और इन फिल्मों के जो गीत है वो आज भी हम सभी सुनते हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि साल 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इसके अलावा कई पुरस्कार इस जोड़ी को मिले हैं।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गीत सागर, जिसमें हमने बात की मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के बारे में। और चलते चलते हम आपसे कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिशें हज़ार बार करता है। और इसी के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी गीत सागर कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें सुनिए साक्षी पंडोले का ख्याल गायन, राग है नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे साक्षी पंडोले का ख्याल गायन, राग था नट भैरव। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेशव्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंचायतों, शासकीय विभागों, निजी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों और समूहों सहित जागरूक नागरिकों की को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण और नगरीय वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। उज्जैन के महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका, आपकी रेडियो मित्र श्वेता के साथ। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक शहर में एक बढ़िया रेस्टोरेंट था, उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। एक गरीब आदमी

0: उसके दुकान के सामने सुबह के समय रोज आता। जैसे ही दुकान में आवाजाही बढ़ती, वो भी रेस्टोरेंट में बैठकर भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खाता और चुपचाप भीड़ से निकल जाता। दुकान के नौकर चौकर ने देखा और इसकी शिकायत अपने मालिक से की। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने मुस्कुराकर कहा, इस बात को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत शुक्रगुजार ऊपर वाले का कि उस गरीब व्यक्ति के भरपेट खाने से मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो ये थे एक अच्छे कर्म और साथ ही ईमानदारी भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जब हम अच्छे काम करते हैं और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा। इस बात पर हम जानेंगे आपके विचार। इसके लिए हमारे फोन नंबर हैं 2660902 और जो श्रोता साथी बाहर से हमसे बात करना चाह रहे हैं, भोपाल से बाहर से, वो उनको एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा 0755। तो इंतजार है हमें आपके विचारों का। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते, आकाशवाणी
0: जी, आकाशवाणी भोपाल से हम बोल रहे हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: आप कौन दीदी?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ। स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना
1: जी।
0: पहले आप अपना नाम बताएं।
1: रमेश पेंटर सतना से
0: जी। तो रमेश जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है जी।
0: जी हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे कि जैसे हमारे जीवन में जब हम कोई काम अच्छे से करते हैं, मन लगा कर करते हैं, ईमानदारी से उस काम को करते हैं, है ना, तो उसका क्या होता है, मतलब उसके फायदे क्या होते हैं?
1: देखिए ईमानदारी से तो देखिए हर सभी चीज का फायदा है उसमें
0: जी।
1: ईमानदारी में तो सभी चीज का फायदा है।
0: हाँ जी बताएं, इससे आपके काम कैसे होते हैं, समय पर होते हैं, सफल होते हैं, बताएं।
1: हम ही लोग लगे रहते हैं काम में दिन भर।
0: जी जी जी, इसके लिए आप सुबह से उठते होंगे, तैयारी करते होंगे, समय पर पहुँचते होंगे।
1: जी दीदी
0: बताएं किस तरह आप अपने काम को करते हैं?
1: अब हम लोग तो काम में लगे रहते तो लगे ही रहते हैं, हम लोग को तो काम दीवारों में लिखना लिखने जाना पड़ता है विज्ञापन।
0: अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो इसके लिए भी आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, सुबह उठते होंगे जल्दी, उठकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर जल्दी समय पर पहुंचते होंगे अपने काम पर।
1: घर तो भाई शाम को जब तक दिन निकला रहता है काम करना पड़ता है, दीवारों में लिखना पड़ता है वॉल पेंटिंग।
0: जी जी वॉल पेंटिंग। हाँ तो मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम पूरी ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है ना। पूरी ईमानदारी से अगर हम किसी काम को करें तो उसका फल हमें कैसा मिलेगा?
1: उसका फल अच्छा ही मिलता है
0: जी,
1: जब ईमानदारी से करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा
0: जी, यही मैं जानना चाह रही थी। तो देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ
0: जी आपका नाम बताएं।
1: जी। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बीरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी तो कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम, कहते हैं ना, वाणी से ही बीज झरे, वाणी से ही रसधार, और मीठा वाणी बोलिए जीवन का है सार।
0: बहुत अच्छी बात, हमेशा मीठे वाणी ही बोलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल मैम, और
0: हाँ
1: आकाशवाणी जो मध्य प्रदेश होता है बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन करता है, और इसमें जो निकलने वाले कार्यक्रम होते हैं जिसमें गीत सागर, नमस्कार भोपाल, और कार्यक्रम बात आपकी गीत, हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, युवाणी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ हमें जो रोजगार के अवसर मिलते हैं ये भी सब कुछ बतलाए जाते हैं मैडम जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें ये तो ये जानकर लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना?
1: जी
0: हमें
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगा। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, कि जैसे किसी काम को हम करते हैं जीवन में, तो
1: जी
0: आपकी पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है, आपका दुकान, आपके व्यवसाय, नौकरी, कुछ भी हो सकता, अगर उसको हम ईमानदारी के साथ करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में?
1: जी काम को यदि शांतिपूर्वक रूप से किया जाए तो काम बिल्कुल बेहतर बन जाता है। काम यदि अच्छे तरीके से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो काम बिल्कुल दुगने उत्साह के साथ पूरा हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, जब उसका मूल्य उसे प्राप्त होता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसी प्रकार से यदि हम अपने कामों को आनंद के रूप में यदि लें तो काम बोझिल नहीं नज़र आता है, बल्कि वह सम्मान भाव से अच्छा ही बनने का प्रयास होता है। तो काम को अच्छी ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए, और जीवन में अच्छा सोच रखेंगे तो सभी काम अच्छे से अच्छे हो पाएंगे।
0: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर, है ना? आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी नमस्ते
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी, योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी, तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: बताइए क्या हालचाल है वहाँ का, मतलब मौसम क्या हालचाल
1: बढ़िया
0: है?
1: है मौसम, बारिश का तो अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं।
0: अच्छा, मतलब पानी
1: जी
0: रुक रुक कर
1: नहीं,
0: गिर रहा है?
1: जी, नहीं बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
0: नहीं हुई है? अच्छा अच्छा
1: जी
0: अच्छा चलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपके यहाँ अच्छी से बारिश हो ताकि ठंडक पहुँचे, है ना? तो
1: जी
0: बताएं कि कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में हम आपके हम सब बात साझा करना चाह रहे थे कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं जीवन में, है ना,
1: जी
0: निश्चित रूप से अपने जीवन से जुड़े कुछ काम, तो
1: जी
0: वो अगर हम ईमानदारी से करें तो
1: जी
0: उसका क्या फल मिलता है?
1: फल यही मिलता है, सफलता जरूर मिलती है।

0: भले देर सबेर मिलती है, मतलब सही ढंग से प्रयास जब हम करते हैं, समय जरूर लगता है, लेकिन उस चीज की कीमत हमें बिल्कुल मिलती है।
1: वही मैं कह
0: हाँ
1: रही हूँ
0: जी,
1: कि कोई,
0: मतलब
1: हाँ
0: कोई
1: जी
0: दूसरा रास्ता नहीं है ईमानदारी और सच्चाई के अलावा जगह पहुंचने के लिए।
1: बिल्कुल, कुछ लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, झूठ बोलकर काम करते हैं, तो
0: जी
1: वो सारी चीजें कारगर सिद्ध नहीं होती।
0: जी और हो भी जाए तो वो एक समय तक रहता है,
1: बस छोटे से
0: लेकिन
1: समय
0: जो
1: के लिए।
0: चीज हम मेहनत
1: हाँ
0: से और लगातार प्रयास से करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है।
1: बिल्कुल, और वही मौलिक रूप में हमारे साथ होती
0: जी
1: है ना। आपने फोन किया, बहुत अच्छे विचार हम पे बांटे, इसके लिए आपका
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: जी नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, सादर नमस्कार।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं बहुत पुराना श्रोता, 70 के दशक का श्रोता हूँ,
0: जी
1: राजेश नेमा, सिंहपुर बड़ा से।
0: जी तो आपका,
1: और आप
0: जी हम
1: हमारे
0: जानते हैं
1: पत्र
0: बिल्कुल।
1: शामिल नहीं कर रहे आपकी फरमाइश में।
0: अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल जानती हूँ आपको। आप हमारे बहुत पुराने श्रोता
1: जी
0: साथी हैं, है ना? और
1: नियमित पत्र भेज रहे हैं, कृपया शामिल
0: बिल्कुल
1: कीजिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना?
1: जी जी
0: और हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे पुराने श्रोता साथियों से हमारी बात
1: जी
0: होती है ना?
1: मैं तो काफी पुराना श्रोता
0: जी
1: हूँ और उस समय का श्रोता हूँ जब। जी
0: बिल्कुल। तो अब हम आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे, बात
1: जी
0: आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में,
1: जी
0: कि अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप
1: जी
0: अपने जीवन से जो जुड़े रिश्ते हैं, है ना, बहुत
1: जी
0: सारे रिश्ते
1: जी
0: हैं, हम माता पिता हैं, भाई बहन हैं, है ना,
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: मित्र हैं, तो इसमें अगर हम ईमानदार हैं, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभा रहे हैं, अपने सारे काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उसका क्या फल मिलता है हमें,
1: जी
0: बताएं।
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। रिश्ते आज के समय में वैसे भी भाग दौड़ बहुत है, तो
0: जी
1: निश्चित रूप से रिश्ते तो निभाना ही चाहिए, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो रिश्ते ही काम आते हैं।
0: जी हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्हें हम सम्मान दें, प्यार दें और उनके
1: जी
0: अनुभव
1: जी
0: से सीखें, क्या लगता है
1: बिल्कुल,
0: आपको?
1: बहुत आवश्यक है। वो तो बुजुर्ग एक बहुत बड़ी पाठशाला होते हैं,
0: जी
1: उनका सानिध्य नितांत आवश्यक है।
0: और हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, नहीं
1: बिल्कुल, बहुत,
0: है
1: वो
0: ना?
1: तो
0: आजकल
1: जरूरी
0: ऐसा हो
1: चीज है।
0: गया
1: जी
0: है कि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है, मोबाइल के लिए
1: जी
0: इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें समय देते
1: जी
0: हैं, लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातों को सुने, उनके अनुभवों को सुने, तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, क्या लगता है आपको,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि जब इंसान मशीन हो गया है तो रिश्ते कोई भी हो संभाल के रखना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और सबसे जो बुजुर्ग हैं उनसे तो निश्चित रूप से सानिध्यता होनी ही चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि एक वो जीवन का पूरा निचोड़ होते हैं और सच्ची सीख भी देते हैं।
0: बिल्कुल। और परिवार के साथ अगर हम एक समय में मिल बैठकर खाना खाएं, है ना, तो वो भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: अच्छा है।
1: वो जी बिल्कुल, वो एक परिवार के साथ रहना और मिलकर बैठ के बातें करना और सानिध्य बनाए रखना, ये आज के समय की मांग है।
0: और इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सुलझ जाती हैं।
1: हाँ बिल्कुल जी
0: हाँ,
1: बिल्कुल,
0: और
1: जीवन का
0: हम
1: निचोड़ मिलता है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए
0: इसका भी समाधान
1: उसकी एक
0: मिलता है।
1: विस्तृत जानकारी भी मिलती है।
0: बिल्कुल। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके पत्र आप हमें भेजते रहिए, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, मैं तो
0: बिल्कुल
1: बहुत आकाशवाणी भोपाल का तो मैं 70 के दशक का श्रोता हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और
0: तो
1: उस समय भी सुनता था और आज भी सुन रहा हूँ,
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम लाजवाब है।
0: जी धन्यवाद। और आज

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत करते हैं आपका। नाम
1: जी
0: बताएं।
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते
0: हाँ,
1: मैम।
0: नाम
1: मैं
0: बता
1: रानी कलैया छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ मैं।
0: जी।
1: क्या विषय रखा सर मैम आपने आज?
0: अपनी जगह का नाम एक बार हमें फिर से बता
1: जी
0: दें।
1: रानी कलैया छतरपुर मध्य प्रदेश
0: जी
1: छतरपुर से।
0: हाँ, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू जी।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। आज हमने विषय रखा है कि आप कोई भी काम करते हो जीवन में, अगर आप उसे ईमानदारी से करते हैं, है ना, अपने जीवन से जुड़े सारे अच्छे काम, अगर हम पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय है, नौकरी है, हमारा परिवार, इन सभी चीज़ों में अगर हम ईमानदार हैं तो उससे हमें क्या लाभ है?
1: ईमानदारी से तो अच्छा कोई है नहीं मैम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी
0: जी
1: है ना, तो उसका तो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा रहेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों में, अपने व्यवस्थाओं में अगर ईमानदार हैं,
0: जी
1: संबंधों में ईमानदार हैं आप,
0: जी
1: तो हमेशा आप सक्सेस रहेंगे है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल। हाँ
1: थोड़ी देर के लिए टाइमिंग दिक्कतें आती हैं, ये आ
0: जी
1: सकती हैं आज के परिवेश के हिसाब से,
0: जी
1: लेकिन अंततः विजय आपके ईमान की ही होगी, आपकी ईमानदारी की ही होगी
0: जी जी जी
1: है ना, तो
0: बिल्कुल।
1: उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए ईमानदार होना तो एक बहुत मतलब अच्छी चीज
0: हाँ
1: है ना
0: जी
1: जी, है
0: बिल्कुल।
1: ना। और
0: आज
1: बाकी तो इधर तो मतलब आज के जैसे वातावरण बदल रहा है,
0: जी।
1: उसी हिसाब से लोग इधर उधर सब मतलब होते रहते हैं काम, अभी इससे कुछ कह दिएगा, अभी उससे कुछ कह दिया, लेकिन अंततः जो है वो ईमानदारी ही आपको सक्सेस
0: हाँ
1: की राह पे लेके जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आपके काम हो, है ना, कोई भी
1: जी
0: क्षेत्र हो, अगर आप उसमें लगन है, आप में ईमानदारी है
1: जी
0: आप में, तो
1: जी
0: आप जरूर सफल होंगे, है ना।
1: नहीं डेफिनेटली वो है ही है
0: जी
1: भाई, वो
0: बिल्कुल
1: सक्सेस का तो एक तो कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई मतलब उसका वो नहीं है कि उसमें कोई
0: जी।
1: मिलावट करके आप काम कर रहे हैं, वो नहीं
0: हाँ
1: है
0: हाँ जी
1: ना।
0: बिल्कुल
1: ईमानदारी के संबंध डायरेक्ट आत्मा से
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है ना,
0: देखिए
1: तो आत्मा
0: हाँ
1: में मिलावट नहीं चलती मैम,
0: बिल्कुल, है ना।
1: दुनियादारी मिलावट चल जाएगी लेकिन
0: हाँ
1: आत्मा और परमात्मा मिलावट नहीं चलेगी, आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा तभी आप
0: बिल्कुल
1: सक्सेस हो
0: बिल्कुल
1: पाएंगे
0: बिल्कुल। तभी आपका
1: सही मायनों
0: जीवन
1: में।
0: सहज सुंदर होगा, है ना।
1: जी
0: आपने
1: जी बिल्कुल
0: फोन
1: मैम,
0: किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: ओके, थैंक यू मैम।
2: सजन रे झूठ मत बोलो।

0: जी नमस्कार, कार्यक्रम
1: नमस्कार दीदी।
0: बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: जी तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में। और आज
1: धन्यवाद
0: हमने
1: दीदी आपको।
0: जी आज हमने विषय रखा है कि जीवन में आप अपने काम के प्रति अगर ईमानदार हैं तो उससे क्या फायदे हैं आपको।
1: दीदी जीवन में अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं
0: जी
1: तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है और असफलता का नाम नहीं रहता है।
0: बिल्कुल। और अगर आप लगन से करते हैं, है ना, साथ ही
1: और
0: साथ
1: उसमें उसमें आपको तरक्की होना ही होना है।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ ये ईमानदारी अगर आप जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ रखते हैं तो उससे फायदा होता है आपको,
1: बिल्कुल दीदी,
0: है ना। परिवार में
1: सबका विश्वास बना रहता है
0: बिल्कुल, जैसे
1: और
0: आपके
1: अच्छा
0: बड़े
1: लगता
0: बुजुर्ग
1: है।
0: हैं,
1: जी
0: घर पर बड़े बुजुर्ग
1: जी
0: हैं, है ना, उनका आप सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं तो इससे आपको फायदा मिलता
1: जी जी जी
0: है
1: जो
0: ना।
1: हमारे बड़े हैं तो वो अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा
0: बिल्कुल
1: और हम अपना ज्ञान बच्चों को शेयर करेंगे उनको भी ज्ञान हो जाएगा।
0: बिल्कुल। और काम, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर आपका व्यवसाय है, अगर आप इन कामों में झूठ बोलते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं तो इससे आपको सफलता अगर मिलती है वो सफलता बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती। क्या सोचते हैं
1: बिल्कुल
0: आप?
1: दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। देखिए
0: अगर हम मेहनत
1: मैं
0: हैं
1: दुकानदार हूँ
0: जी
1: तो मेरा बिजनेस है, तो
0: जी जी
1: अगर बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं रहूँगा, ग्राहकों के प्रति ईमानदार नहीं रहूँगा तो
0: बिल्कुल
1: कोई एक बार किसी को धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छी बात कही आप। ग्राहकों के प्रति अगर ईमानदार हैं, उन्हें अच्छा सामान दे रहे हैं तो वो आपकी दुकान में आएंगे ही।
1: जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल
0: हाँ, आपका कारोबार बढ़ेगा, है ना।
1: जी।
0: जी, आपने फ़ोन किया और बहुत ही अच्छे विचार हम तक बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, धन्यवाद आपको भी।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ कार्यक्रम बात आपकी गीत
1: वंदे
0: हमारे।
1: मातरम। कृष्ण
0: जी नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: घी वाला।
0: जी तो कहाँ से
1: हेलो,
0: बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताएं।
1: दमोह।
0: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये कार्यक्रम में आपका फ़ोन लगा है और हम बात कर रहे हैं आज ईमानदारी के गुण की, कि अगर आप ईमानदार हैं तो उससे आपके
1: जी
0: जीवन में आपको क्या फ़ायदा है।
1: बहुत अच्छा विषय है,
0: जी
1: मेरा ही विषय है ये।
0: जी जी जी
1: जी सुनिए,
0: हाँ
1: मेरा ऑटोमोबाइल का काम है। तो
0: जी जी जी
1: यदि हम दुकान चलाते हुए, अपना व्यापार करते हुए ईमानदारी से, मतलब जिस चीज का जो रेट है वही बताते चले जाते हैं सबको, तो वो फिर हमें याद नहीं करना पड़ता। एक दो बार बस देखा कि इसमें गेयर की कीमत 920 है, तो सबको 920।
0: बिल्कुल, बहुत
1: आप
0: अच्छी
1: सुन
0: बात।
1: रही
0: हाँ
1: हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही हूँ। अगर आप ईमानदार हैं तो निश्चित रूप
1: जी,
0: से आपका कारोबार बढ़ेगा, है
1: दूसरी चीज,
0: ना।
1: आप हमारे यहाँ वर्कशॉप है,
0: जी जी
1: सर्विस सेंटर है मारुति,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसमें जो भी पार्ट लगता है,
0: जी जी जी
1: जो भी, चाहे वो 2 रुपए का बोल्ट है या स्क्रू है, और चाहे वो 5,000 रुपए का कोई पार्ट है, तो ईमानदारी से उतना ही लिखा जाता है उसमें। हेरा फेरी या आज की भाषा में कट पट कुछ नहीं किया जाता।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और
1: वो फिर हमेशा के लिए, कोई भी हमारा बिल देखता है तो हमारे बिल ऑनलाइन जाते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: जरा भी उसमें संशय नहीं रहता है। कोई
0: बिल्कुल
1: अगर 6 महीने बाद भी बिल देखे कि आपकी मारुति, हमारी मारुति में ये काम हुआ था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: बराबर हुआ था, ये
0: बिल्कुल
1: पार्ट
0: बिल्कुल,
1: लगा।
0: ये बहुत विश्वास की बात है और आपका एक
1: जी
0: भरोसा रहेगा अपने ग्राहकों
1: जी
0: के लिए। तो
1: तो उससे बहुत फायदा होता है,
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: लाभ होता
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है
0: आपने देखिए
1: ईमानदारी से।
0: हाँ फोन किया
1: तो ये मेरा
0: और
1: व्यक्तिगत अनुभव है।
0: बिल्कुल
1: अब
0: बहुत
1: आप
0: अच्छा अनुभव,
1: बताइए, कुछ
0: बहुत
1: आप भी
0: अच्छा अनुभव।
1: बताइए।
0: हाँ तो बस हम इस कार्यक्रम में तो आपके विचार जानना चाह रहे हैं, आपके अनुभव।

0: मूल विचार जो हमारे लिए बहुत कीमती है। आपने फोन किया
1: भी आपसे सीखने को मिल जाता ना।
0: जी जी जी
1: आप भी बता दीजिए आप कौन
0: नहीं
1: बोल
0: नहीं
1: रही हैं।
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, और आपसे जो विचार हमने सुनने को मिले वो बहुत अच्छे लगे, है ना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम कह सकते हैं।
1: आपको भी
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: कभी तो हंसाए
1: कभी ये रुलाए। जी नमस्ते।
2: जी नमस्कार बहन जी,
1: आपका नाम बताएं।
2: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजना, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
1: जी तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना।
2: जी,
1: और
2: क्या है
1: आज हम बात कर रहे हैं ईमानदारी के गुण के, कि हम अपने जीवन में अगर किसी भी काम से जुड़े हुए हों, अपने जीवन से जुड़े अच्छे काम, आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, पढ़ाई, तो इन सब चीजों में ईमानदारी के क्या मायने हैं।
2: ईमानदारी के मायने है कि जैसे अगर अपन ईमानदारी से काम करते हैं तो अपन को मतलब पीछे नहीं हटना पड़ेगा, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी आगे के लिए।
1: जी बिल्कुल,
2: और ईमानदारी से भी काम करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और कोई काम है तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेफजूल का पैसा ही लेना चाहिए किसी का। जो काम करें वो ईमानदारी से करें।
1: बिल्कुल, अगर ईमानदार हैं

0: तो निश्चित रूप से मतलब एक भरोसा कायम होगा हमारा लोगों के प्रति, है ना, और लोग हम पे विश्वास करेंगे, है ना,
1: जी बिल्कुल
0: और हम
1: बिल्कुल
0: निश्चित रूप से सफल होंगे।
1: जी,
0: तो
1: आज आप शायद मुश्किल लगता है।
0: नहीं, मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ,
1: अच्छा,
0: है
1: शायद
0: ना।
1: आपसे पहली बार बात हो रही
0: जी, और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन
1: है।
0: किया,
1: जी
0: इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। इस कार्यक्रम में आज मैं थी आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर अमर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंचायतों, शासकीय विभागों, निजी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों और समूहों सहित जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भोपाल के गांधी भवन में आज शाम 6 बजे भारत में भाषाओं की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आ गले लग जा। इस फिल्म का गाना आवाज़ है किशोर कुमार, सुषमा श्रेष्ठा की, साहिर लुधियानवी के बोल है और संगीत है आर डी बर्मन का। और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, सरोज, आरती, ऋतिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ ने इस गाने को पसंद किया है। तो चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म आ गले लग जा का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये पत्र हम तक आया है राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन का, और साथ ही साथ उपाध्याय नगर से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, और साथ ही साथ नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत, आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म लोफर का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी की बोल है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब सुनिए फिल्म राम लखन का गाना, मनहर अनुराधा और साथियों की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है बड़वाहा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी शिमाली और ये फरमाइश है पटेल नगर पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू ने इस गीत को पसंद किया है।

स्वातंत्र्यम का गाना सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। गाने को लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है उषा खन्ना का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, साथ ही अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, राव और शाहिद ने इस गाने को पसंद किया है। और

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुम बिन। इस फिल्म का गाना आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साथियों की। फैज अनवर ने गाने को लिखा है और संगीत है निखिल विनय का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और सिंगारपुर से सालिक पुजारी। साथ ही साथ इंदौर से ये फरमाइश हम तक आई है लाल फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया की।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी में अब तक आपने सुना, हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को विजय हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजयश्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजयश्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर राजकुमार ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप करके स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा। सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट ने उसे एक अलग महल दे दिया जहां भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजयश्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी में।
1: नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
2: वो उधर छुप रही है स्वामी।
1: ठहर चांडालनी, निकाल वो विष के शीशे, कहाँ छुपा रखी है? निकाल कुलटा।
3: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
1: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो। चल
2: निकाल, दोनों हार कहाँ है?
3: ये है सम्राट।
1: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।
3: सम्राट,
1: इस प्रासाद में रहने वाले सभी दास दासियां देख लो, अपनी साम्राज्ञी की काली करतूतों। इसने अपनी बहन को बुलाया था भुवन मोहिनी की हत्या के लिए। ये कृतज्ञ स्त्री भुवन मोहिनी के त्याग और बलिदान के बदले उसे विष दिला रही थी। महाराज आदित्य सेन की पुत्री का वास्तविक स्वरूप देख लिया? देख लो अच्छी तरह से, देख लो सब और जान लो इसके चरित्र को अच्छी तरह से। भुवन मोहिनी ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया इसके लिए। प्रतिकार में ये क्या दे रही थी भुवन मोहिनी को? ये विष की शीशी, जिसके स्पर्श मात्र से किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। इन हत्यारियों के सुंदर चेहरों के धोखे में आकर तुम लोग भी इनके कहने पर आ गए। ये विमला नाम की स्त्री को चिकित्सिका नहीं, ये डायन है, डायन। सैनिक स्त्रियों, ले जाओ इन दोनों को, इसी महल में अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। और सुनो ध्यान से, किसी ने भी लालच में आकर इन दोनों में से किसी की भी कोई सहायता की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों को कोई वस्तु ना दी जाए। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों से किसी को बात ना करने दिया जाए, भले ही वो राज परिवार का ही क्यों ना हो। यदि मुझे इसकी जानकारी मिली कि किसी भी प्रकार की शिथिलता की गई तो उसे मैं राजद्रोह मानूंगा, राजद्रोह। ये आदेश राज परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी है।

0: राजमाता, राजमाता।
1: क्या हुआ संरक्षिका, क्या हुआ? तुम सब लोग इतनी डरी हुई क्यों हो?
0: राजमाता, आज हम सब ने सम्राट का वो रूप देखा जो भगवान न करे कभी किसी को दोबारा देखना पड़े।
1: क्या हुआ?
0: सम्राट, साम्राज्ञी और उनकी अतिथि बहन विमला को अंतर कक्ष से मारते पीटते बाहर ले आए और बंदी गृह में बंद करा दिया।
1: क्या कहा? किस अपराध में?
0: भुवन मोहिनी की हत्या के प्रयास के अपराध में।
1: क्या?
0: हाँ,
1: साम्राज्ञी ऐसा नहीं कर सकती। चलो मैं देखती हूँ।
0: परंतु?
1: क्या परंतु, मैं स्वयं देखती हूँ, तू घबरा मत। संरक्षिका, गांधारी स्त्रियों से कहो बंदी गृह का द्वार खोले।
0: क्षमा राजमाता, क्षमा। सम्राट का आदेश है, इन अपराधिनियों से कोई नहीं मिल सकता, चाहे वो राज परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो।
1: क्या?
0: हाँ।

0: अरण्यक, सबको कहो कि बंदी गृह के सामने मेरे आदेश को सुनने के लिए उपस्थित हूं।
1: जो आज्ञा। अंतापुर के सभी राज कर्मचारी सम्राट का आदेश सुनने के लिए बंदी गृह के समक्ष उपस्थित हो। शीघ्रता करो।
2: सम्राट, सम्राट हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट हमें, सम्राट क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट, सम्राट, सम्राट।
0: कितनी बार चंद्रहासिनी, कितनी बार क्षमा करो। यदि भुवन मोहिनी की हत्या तुम कर चुकी होती तब भी क्या तुम क्षमा मांगती?
3: प्रणाम सम्राट,
4: प्रणाम सम्राट,
3: प्रणाम सम्राट।
0: इनमें से महिला मजदूर कौन है?
3: हम लोग हैं सम्राट,
4: हम लोग हैं।
2: अंतिम बार, अंतिम बार सम्राट, आपको अपने बच्चे की सौगंध, हमें क्षमा कर दीजिए सम्राट, हमें क्षमा कर दीजिए।
0: मैं विवश हूं चंद्रहासिनी तुम्हारे छल कपट से, इसलिए अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। सुन लो सब लोग, एक बार पुनः मैं इन दोनों के अपराधों को दोहराता हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ममेरी बहन विमला को बुलाकर भुवन मोहिनी के प्राण लेने की चेष्टा की थी, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी अस्वस्थता के समय स्वयं उसके जीवन की रक्षा कर रहा था। कई बार क्षमादान दे चुकने के बाद भी साम्राज्ञी ने मेरे और मेरे आदेशों की हर संभव उपेक्षा की। महिला श्रमिकों को मेरा आदेश है कि प्राण हत्या के प्रयास के आरोप में चंद्रहासिनी और उसकी बहन विमला की कोठरियों को बंद कर दिया जाए। वो दोनों बहनें दीवारों के भीतर चुनवा दी जाएं आज ही।
2: नहीं।

पुत्र, ये क्या किया तुमने? चंद्रहासुनी को मृत्यु दंड का परिणाम अनिष्टकारी होगा पुत्र, अनिष्टकारी। संभवतः महाराज, आदित्य सेन अपनी एकमात्र संतान के जीवन विनाश की कहानी धैर्य पूर्वक न सुन सके और चंद्रहासिनी और विमला का निधन किसी सर्वनाश को न आमंत्रित कर बैठे पुत्र।

0: अनिष्टकारी। संभवतः महाराज आदित्य सेन अपनी एकमात्र संतान के जीवन विनाश की कहानी धैर्य पूर्वक न सुन सके और चंद्रहासिनी और विमला का निधन किसी सर्वनाश को न आमंत्रित कर बैठे। पुत्र,
1: राजकीय आदेशों के प्रति किसी को कोई असहमति नहीं होनी चाहिए माँ। गंभीरतम अपराधों का दंड भी गंभीर और भयानक होता है। चंद्रहासिनी राजकुमारी बनकर भी अपने जीवन में महानता को स्थान न दे सकी। भारत राष्ट्र की साम्राज्ञी ऐसे नीच षड्यंत्रों का आश्रय ले, इसका प्रभाव सारी जनता पर कितना भयानक पड़ता, कभी सोचा है आपने? मुझे दुनिया क्या कहती यदि मैंने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया होता, तो संभवतः कल वो मुझसे ही प्रतिकार लेने को तत्पर हो जाती। निरंतर मेरी उपेक्षा करके बारंबार क्षमा और अभयदान का अनुचित लाभ उठाया है उसने। ऐसी अनैतिक घटनाओं का जनजीवन पर सर्वदा भयानक प्रभाव पड़ता, इसलिए जैसा अपराध साम्राज्ञी ने किया वैसा ही दंड उसे भोगना भी पड़ेगा।
0: मैं क्या करूं जिससे मेरी पुत्र वधु का जीवन बच जाए? चाहती तो ये हूं कि बंदी गृह का द्वार तोड़वा दूं, परंतु सम्राट ने वहां सैनिक पहरा बिठा दिया है। क्या होगा मेरे 5 वर्ष के पौत्र का, जो मात्र विहीन होकर अति दीन मलिन सा दीख पड़ने लगा है। अब मुझे ही उसे अपने संरक्षण में रखना होगा। अब मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि अपने वृद्ध पति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं।

0: अब मैं जीना नहीं चाहती। ये सारा कलंक मुझ पर ही आरोपित किया जाएगा ना। दुनिया तो यही कहेगी कि सम्राट ने एक नर्तकी का पक्ष लेकर स्वयं अपनी साम्राज्ञी को मृत्यु दंड प्रदान किया है। अब मैं जीकर क्या करूंगी। ये कलंक ढोने से उचित तो ये है कि अब मैं रुग्ण शैया से उठूं ही ना।
1: नहीं देवी भुवन मोहिनी, ऐसा मत सोचिए, अन्यथा सम्राट तो और भी दुखी हो जाएंगे। वो अपने निर्णय से अभी ही बहुत दुखी हैं। एक मास हो गए वो संपूर्ण कार्यों से जैसे संन्यास ले चुके हों, एकांत वास में ही हैं।
0: जिस राजकुमारी के सुख के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अंत में उसी का अस्तित्व ना पाऊं तो मेरा समर्पण तो व्यर्थ ही हो गया।

0: सम्राट का क्या होगा? अरण्यक, जी चाहता है कि एक बार सम्राट को जाकर मैं स्वयं समझाने का प्रयत्न करूं।
1: कोई लाभ नहीं होगा देवी, सम्राट किसी से भी नहीं मिलना चाहते। इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैं आपकी मनोभावनाओं को उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा।
2: असक्त रणभिषंगः पुत्र दार गृह दिशु, मैं स्त्री पुत्र और गृहादिक के निर्मम सामीप्य से अपनी अंतरात्मा को मुक्त कर चुका हूं। बस अरण्यक, भुवन मोहिनी की धुंधली स्मृति मात्र से मुक्त नहीं हो पाया। कैसी है वो?

0: पूरे प्रकरण से वो बहुत ही आहत है मित्र। वो आपसे मिलना चाहती है।
1: नहीं आरण्यक, जब मैंने निर्मम न्याय के चरणों में साम्राज्ञी का बलिदान कर दिया, तब भुवन मोहिनी के प्रति आसक्ति को भी छोड़ना होगा, क्योंकि भुवन मोहिनी के स्त्री सौंदर्य के उपभोग करने की लिप्सा ने ही तो इस बलिदान की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जिस पर चढ़कर चंद्रहासिनी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यदि विवाहिता पत्नी को पति के संपूर्ण प्रेम की आकांक्षा थी तो वो पाप नहीं था, मैं जानता हूं, किंतु संपूर्ण स्नेह दान न मिलने पर उसके हृदय में द्वेष और प्रतिहिंसा की भावना जागृत हुई और निरपराध भुवन मोहिनी का सर्वनाश करने के कुचक्र ने उसे मृत्युदंड दिलाया। इसमें मेरा क्या दोष? चंद्रहासिनी ने तो स्वयं ही मेरी पत्नी बनने का आग्रह किया था, ये जानते हुए कि मैं भुवन मोहिनी के प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर चुका था। भुवन मोहिनी उदारता पूर्वक उसका स्वागत करती रही और उसके मांगने पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद भी चंद्रहासिनी को कृतघ्न बनकर भुवन मोहिनी को विषपान कराने के षड्यंत्र में नहीं तल्लीन होना चाहिए था। इस निर्णय का मुझे कोई पश्चाताप नहीं। चंद्रहासिनी ने जैसा किया वैसा ही परिणाम पाया। अरण्यक, मैं भुवन मोहिनी से मिलना चाहता हूं, उसे बुला लाओ आज ही।
0: जो आज्ञा मित्र।

0: ये मैं क्या देख रही हूँ? प्रस्तर हृदय वाला भारत का सम्राट अपनी करुणा से स्वयं विगलित है। आपके नेत्रों में करुणा की ये अश्रुधारा क्यों?
1: मैं सम्राट होकर भी आज दीनहीन बन गया हूं भुवन। अब इस अभिशापित जीवन का अंत हो, बस यही कामना है। मैंने अपना सर्वनाश कर डाला। मैं यदि सम्राट न होता

तो शायद इतनी क्रूरता मेरे जीवन में ना आती। आज मैंने अपने इकलौते पुत्र को मातृत्व के सुख से वंचित कर दिया, माता पिता को अपनी सेवकनी पुत्र वधु से वंचित कर दिया। मुझे क्या मिला? हत्या का पाप? आज चंद्रहासिनी मेरी अंतर्दृष्टि के अत से इति तक समाई हुई है। मानो नेत्रों में आंसू भरे दया की भीख मांग रही हो।

0: और मेरे सामने भीषण रक्त सागर उद्वेलित होता दिखाई पड़ता है।
1: रक्त सागर,
0: महाराज आदित्य सेन की प्रतिच्छाया मानो भीषण प्रतिकार के लिए उद्विग्न है। वो अपने प्राणों से प्रिय एकमात्र संतान के सर्वनाश का प्रतिकार लेना चाहते। बड़े बड़े सामंतों की नंगी तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं और वो चंद्रहासनी के मृत्यु का पाप प्रक्षालन करने के लिए चंडी की जिह्वा बनकर मेरी सेना और स्वयं मेरे शरीर का रक्त दान मांग रही है। मेरी न्याय प्रियता का भयानक परिणाम प्रतिशोध की रक्त वैतरणी है भुवन मोहिनी, जिसमें मेरे सहित साम्राज्य की सेना को भी निमग्न होना होगा।
1: देव, क्या महाराज आदित्य सेन भारत सम्राट से युद्ध चाहते हैं?
0: हां भुवन मोहिनी, मुझे सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वो बड़ी तत्परता के साथ भयानक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उनकी सेना की जितनी चिंता नहीं है, उससे अधिक भय है कि बारंबार पराजित होण जाती हमारे आपसी वैमनस्य का लाभ उठाकर भारत भूमि पर अधिकार करने का प्रयास करेगी, जिसका संभव परिणाम राष्ट्र की स्वतंत्रता का अपहरण होगा और भारतीय राष्ट्र शताब्दियों सहस्त्राब्दियों तक पराजय और दासत्व के कलंक का टीका लगाकर विदेशी आक्रामक शक्तियों के चंगुल में फंस जाएगा।
1: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
0: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
1: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
0: टाला जा सकता है।
1: कैसे?
0: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर अमर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा है कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्वभर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जहाँ विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैरवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, महफिल में आ जाती है जान आपके आ जाने से। स्वागत बंदन अभिनंदन प्यारी सखियों का कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं आपकी सखी शालिनी सोनी, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं प्यारी सखियों? माना कि व्यस्त होंगी, पर आइए बैठ जाइए कुछ सुकून के पलों के साथ और भूल जाइए सारी मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफें। आज की महिला सभा में हम खुलकर बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी के सफर को और हसीन बनाएंगे। चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र सेवा के शानदार 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्वर्णिम यात्रा में सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ देश ने अभूतपूर्व प्रगति, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और कई योजनाओं की ऐतिहासिक पहल ने करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल दिया है। सखियो, मोदी जी के मजबूत इरादों ने हर क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। आज का आत्मनिर्भर भारत उनके अद्वितीय समर्पण और निर्णायक नेतृत्व की जीती जागती मिसाल है। और सखियो, आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ये दिन लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकारों को जवाबदेह

बनाने में संसदों की भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2018 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत की गई थी। 30 जून की ये तारीख अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU की स्थापना का भी प्रतीक है। सखियों, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की संसदों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी और आधुनिक चुनौतियों जैसे प्रौद्योगिकी और लैंगिक समानता के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सखियों हमें भी लोकतंत्र को समझना होगा, लोकतंत्र की जानकारी रखनी होगी। संसद क्या है, विधानसभा क्या है, सांसद या विधायक का क्या काम होता है, कानून कैसे बनते हैं, ये जानना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। साथ ही साथ सवाल पूछें, जवाबदेही तय करें, कानून का पालन करें। संसद कानून बनाती है, पालन करना हमारा धर्म होता है। बहस में हिस्सा तो लें मगर मर्यादा बनाए रखें। राजनीति से दूर नहीं रहें बल्कि जिम्मेदारी से भागीदारी करें। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें सखियो। जानो, वोट करो, सवाल पूछो, कानून मानो, भागीदारी करो। यही 5 शब्द नागरिकता का धर्म भी है। संसद मंदिर है लोकतंत्र का सखियो, उसकी मर्यादा, उसकी ताकत बनाए रखना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इतनी सारी जानकारी के बाद सखियो, अब बारी है मनोरंजन की। लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है एक प्यारा सा गीत।

बनाने वाली योजना, आपके मन में क्या है सखियो? सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, या अचार पापड़ का बिजनेस करना चाहती हैं? टिफिन सर्विसेज, डेयरी, बकरी पालन या ऑनलाइन रिसेलिंग, जो भी सपना आपका हो सखियो, वो पूरा करेगी मुद्रा योजना। और सबसे बड़ी बात तो ये है बहनों, वो भी बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी के। सिर्फ आपका जज्बा और एक छोटा सा बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास। लोन भी आपकी जरूरत के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा गया है सखियों। शिशु लोन यानी कि आप 50,000 तक का लोन ले सकती हैं जब आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, जैसे सिलाई मशीन खरीदनी है। किशोर लोन जिसमें आप 50,000 से लेके 5,000 तक का लोन ले सकती हैं, जैसे आपको अपनी मशीनों को बढ़ाना है, 2 से 3 नई मशीनें लाना है। तरुण लोन में आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकती हैं, जब आप अपना कोई नया शोरूम खोलना चाहती हैं। ब्याज भी बहुत कम है सखियों और चुकाने के लिए 5 साल तक का समय मिल जाता है। घर बैठे पैसे तो नहीं आएंगे बहनों, सरकार आपका हाथ जरूर पकड़ेगी। चूल्हा चौका संभालने वाली नारी जब कलम पकड़ लेती है और हिसाब संभालने लगती है ना सखियों, तो घर भी चलता है और देश भी बनता है। तो सखियो देर किस बात की, अपने नजदीकी बैंक, जनधन केंद्र या CSC सेंटर जाइए, आधार कार्ड, फोटोकॉपी और बिजनेस का आइडिया लेकर जाइए, फॉर्म भरिए और करा लीजिए अपना लोन। याद रखिए सखियो, सपना आपका, हौसला आपका और साथ सरकार का, तो फिर देर किस बात की। उठो, बढ़ो और बन जाओ आत्मनिर्भर भारत की असली शिल्पकार। और सचमुच सखियो, जब सबका साथ मिलता है ना, निश्चित ही कुछ नया करने का जज्बा आ ही जाता है। आज के क्रम मेरी उड़ान में हमारे साथ हैं सखी तृप्ति कुमायू, जो कि हैं इंटीरियर डिजाइनर। तो आइए इनसे बात करते हैं क्रम मेरी उड़ान में।

एक बार पुनः स्वागत है प्यारी सखियों का कार्यक्रम में। सखियों, मोदी जी ने कहा है ना, नारी शक्ति ही देश की शक्ति है, और इसी सोच को बढ़ावा दे रही है पीएम मुद्रा योजना। जी हाँ, पीएम मुद्रा योजना। आज हम बात कर रहे हैं पीएम मुद्रा योजना की, और इस योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मतलब छोटे बिजनेस को बड़ा

0: तृप्ति जी, आपको हमारा नमस्कार, और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में।
1: जी नमस्कार मैम। बेसिकली मैं पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं इस इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोफेशन को पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के घरों का इंटीरियर किया है, डेकोरेशन में हेल्प की है, और उनके हमने जो घर के जो हमारे फर्नीचर होते हैं उनको बनाने में हमने हेल्प की है। तो ये काम मैं पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ, और हमारा एक है इंस्टीट्यूट, वो मैं रन कर रही हूँ जो कि डिजाइन सॉल्यूशन के नाम से है, जहाँ पर हम बच्चों को इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेस सिखाते हैं, ताकि बच्चे अपने हुनर को देखें और उसको लेके वो अपने करियर में आगे बढ़े। मैं अभी इस प्रोफेशन में काम कर रही हूँ।
0: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बच्चे इस और आगे बढ़ें। अभी हम
1: जी
0: देख ही रहे हैं कि त्योहार का समय चल रहा है और सभी अपने
1: जी
0: घर को रिन्यू कराने में, रिनोवेशन में
1: जी
0: लगे हुए हैं, तो
1: जी
0: जाहिर सी बात है कि आप बहुत व्यस्त होंगी। और
1: हाँ
0: मैं बस
1: जी
0: ये जानना चाहूँगी और इसके बाद, कि आपने अपने जो इस काम की शुरुआत है वो कैसे की, आपको कैसे रुझान आया इस दिशा की ओर?
1: देखिए मैम, पहले तो मेरा जो सब्जेक्ट था, स्कूल टाइम में मेरा था पीसीएम, साइंस बैकग्राउंड से थी मैं। मेरा इंटीरियर से कोई रिलेशन नहीं था। धीरे धीरे हमने मैंने स्टडी करना स्टार्ट करा तो मेरा इंटरेस्ट बहुत आया, कि मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं यार, इंटीरियर में भी ये चीजें होती हैं, इसको इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। मेरे घर में भी जैसे हम लोग फेस्टिव में जब घर रिनोवेट करते थे तो मैं मेरे फादर की और मदर की बहुत हेल्प करती थी। तो पूरा रिनोवेशन 50% घर का काम मैं करती थी वहां पर, इंटीरियर ही करना है। फिर मैंने सोचा कि हम इंटीरियर में कोर्स करें, मैं मार्केट गई, मुझे पता लगा कि इंटीरियर में कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत पड़ती है अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं आगे। तो
0: जी
1: मैंने फिर इसमें जो स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है डिप्लोमा, वो मैंने 3 साल का जो कोर्स होता है वो मैंने लिया, और मैंने उसमें बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं ये इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ। तो मैंने इसीलिए ये सब्जेक्ट चूज करा कि मुझे आगे इसमें काम भी करना था, और मैं चाह रही हूँ कि काफी सारे पूरे इंडिया में या हमारा जो एमपी इंदौर के जो बच्चे वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े और हम उनको अच्छे डिजाइनर बनाए, इंडस्ट्री में जाके अच्छे से क्लाइंट्स का काम करें, और वो अपने एक स्किल उनके पास रहेगी तो
0: जी
1: वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे इंडस्ट्री।

0: हमारा मेन मोटो यही है, और इसीलिए मैंने इंटीरियर किया कि मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था, तो
1: वाकई बहुत
0: इस तरह से।
1: मेहनत का काम
0: हाँ
1: है, और ये जानकर
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा कि
0: जी
1: आपने अपनी जो पढ़ाई है, जो आपकी लाइन है,
0: जी
1: उससे हटके
0: जी
1: आपने अपने रुचि के हिसाब से अपना करियर चुना। और वाकई जहाँ हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमारी रुचि होती है, वो काम
0: जी
1: बहुत ही बहुत ज़्यादा बेहतर होते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: जी, और एक बात और जानना चाहूँगी कि कितना लगभग समय दे पाती हैं आप घर और काम के बीच में, कैसे सामंजस्य कर पाते?
0: मतलब पहले मुझे शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था काम अपना इंटीरियर का, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कि जैसे घर भी मैनेज करना होता है, देन मेरी साथ में पढ़ाई भी चल रही थी, मेरा पीएचडी चल रहा था और मैंने साथ में इंटीरियर करा, कॉलेज भी जाती थी, फिर मैं इंटीरियर की क्लासेस भी लेती थी, फिर मेरा प्रैक्टिस सेशन होता था, मतलब हमारी 5 घंटे की क्लास होती थी इंटीरियर की, वो भी हम करते थे, फिर उसके बाद 3 घंटे घर पे प्रैक्टिस करते थे, फिर घर में और भी काम रहते हैं वो हम करते थे, तो मतलब कि बहुत हेक्टिक हो जाता था, रात को 3 बजे 4 बजे हम सोते थे, लाइक कभी कभी तो पूरी पूरी रात हम नहीं सो पाते थे, लाइक पूरी
1: हाँ,
0: पूरी रात
1: मतलब
0: जाग के काम करा है हमने,
1: जी
0: तो
1: कुल
0: बहुत मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे चीजें जब ऐसा स्टेबल हुई तो अब मैनेज हो जाता है।
1: तो हम अपनी सखियों से ये कह सकते हैं कि इसके लिए आपको बहुत अलग से कोई समय ऐसा नहीं है कि आपको ये देना
0: नहीं
1: पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर गृहस्थी के साथ भी इस करियर ऑप्शन को
0: कर
1: चुन सकती
0: सकते
1: हैं।
0: हैं। हाँ, और मैंने बताया ना जैसे आजकल काफी सारी महिलाएं ऐसी रहती हैं कि जो ज्यादा एजुकेट नहीं हो पाती किसी रीजन से, नई नई स्टडी नहीं कर पा रहे, तो जैसे आपका अगर 10वीं पास है तो भी ये प्रोफेशन में आप एंटर हो सकते हैं, और 2 से 3 साल का जो कोर्स होता है वो आप करके आप मतलब अपने आप को एज अ डिजाइनर आप रिप्रेजेंट मार्क इंडस्ट्री में कर सकते हैं,
1: बहुत अच्छी
0: और
1: बात है।
0: आगे मैम इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है।
1: आप हमें, हमारी सखियों को कुछ ऐसे कोर्स बताएं जो वो कर सकती हूँ।
0: मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे के इस माध्यम से जुड़ने को मिला, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य मैम यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे प्रेरित करें कि वो कुछ आगे अपना स्किल इम्प्रूव करके आगे काम करे, वो अपने पैरों पे खड़े होके,
1: जी
0: राइट, तो हमारा उद्देश्य यही है। और मैं सखियों से यही कहना चाहूंगी कि देखिए इसके लिए आपको कोई ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, आपने अगर 10वीं किया है तो भी आप इंटीरियर में या फैशन में आ सकते हैं, इसके कोर्सेज वैसे तो 1 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, 3 साल के भी होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अब जैसे कोई महिला है जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं और जो टाइम नहीं दे पाती ज्यादा, तो वो 1 साल का भी कोर्स कर सकती है,
1: जी
0: और सबसे अच्छी बात मैम ये मतलब इसमें आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे की क्लासेस देना है,
1: जी
0: मतलब जैसे आप अपना घर भी मैनेज कर सकते हैं और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने भी जॉब के साथ में ही किया है तो अच्छे से मैनेज हो जाता है,
1: वाह,
0: उनको
1: बहुत अच्छी
0: कहीं
1: बात
0: जाने
1: कही
0: की जरूरत
1: आपने
0: नहीं।
1: कि हमारी
0: जी
1: सखियां घर बैठे ही इस करियर विकल्प को चुन सकती हैं
0: जी
1: और एक छोटी सी शुरुआत घर से ही कर सकती हैं।
0: जी
1: तृप्ति जी,
0: जी जी
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें इतनी
0: जी
1: सारी जानकारियां दी, वाकई प्रेरणा मिली होगी इन बातचीत सुन के। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें
0: जी धन्यवाद
1: अपना
0: मैम।
1: समय दिया।

सखियो, अभी हम सुन रहे थे क्रम मेरी उड़ान तृप्ति कुमायू के साथ, और अब बात कुछ सजने सवरने की हो जाए। सखियो देखिए ना सखियो, बारिश में अक्सर हमारा मेकअप जल्दी ही चिपचिपा और बेकार दिखने लगता है, तो इससे कैसे बचा जाए आइए जानते हैं आज के क्रम रूपलावण्य में। आज हम बात करेंगे कि बारिश में या मानसून में भी हम अपने मेकअप को कैसे एकदम फ्रेश रख सकते हैं। सखियो, मेकअप से पहले चेहरे पर बर्फ लगाएं, जिससे फेस पर मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहेगा। अब बारी है प्राइमर की, तो आप मॉइस्चराइज प्राइमर चुने और इससे मेकअप उमस में भी फ्रेश लगेगा। लाइट वेट फाउंडेशन चुने, चिपचिपे और हैवी फाउंडेशन पूरी तरह से अवॉइड करें। अब बेस सेट करने के लिए आप उसके ऊपर पाउडर चुन सकते हैं, लेकिन याद रखें सखियो कि ये भी ह्यूमिडिटी प्रूफ होना चाहिए। अब बारी आती है आई मेकअप की, तो आई मेकअप में इस मौसम में बार बार पसीना भी आता है, इसलिए वाटर प्रूफ आई मेकअप चुने। ब्राइट कलर्स के लिपस्टिक प्रयोग करें जो लॉन्ग लास्टिंग और स्मच प्रूफ हो। साथ ही साथ मानसून में चिक टिंट का उपयोग करें, ये लाइट वेट ब्राइट होने चाहिए।

ये जो लंबे समय तक टिके रहें। आखिर में मेकअप के ऊपर फिक्सर ज़रूर स्प्रे करें, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बस इतने छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे सखियों, तो आपका मेकअप लंबे समय तक फ्रेश लगेगा और आप दिखेंगे खूबसूरत।

बारिश का दौर चालू है सखियों, और हम सभी तरह तरह के मौसमी जायकों का मजा ले रहे हैं। और हाँ, एक काम हम महिलाएं इस मौसम में जरूर करने लगती हैं, वो होता है अचार बनाने का। जी हाँ, अचार बनाने का। इसलिए आज के फूड जोन में हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट अचार मसाले की रेसिपी की, जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकती हैं। आज हम आपको लगभग 200 ग्राम मसाला बनाने की विधि बताने वाले हैं। तो नोट करिए, सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए सरसों 4 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, सौंफ 3 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 4 से 5 बड़े चम्मच, स्वादानुसार काला नमक और 1 बड़ा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच आप इसमें हींग ले सकते हैं। सबसे पहले सखियों, सरसों, मेथी, जीरा, सौंफ और अजवाइन को हल्का सा भून लें। मसाले जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। इसके बाद मसालों को दरदरा पीस लें, बहुत बारीक पाउडर भी ना बनाएं। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक और हींग डालकर अच्छी तरह से मिला लें। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाला। अब इस मसाले को एयरटाइट जार में भरकर आप 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं सखियो। आप जब भी चाहें आम, नींबू, गाजर, मिर्च, किसी का भी झटपट से अचार बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस इन्हें बारीक काट लीजिए और मिला दीजिए इस मसाले में, और ऊपर से डाल दीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म सरसों का तेल। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाले के साथ झटपट अचार भी। चटपटे अचार के बाद अब बारी है बहनों एक प्यारे से गीत की।

और से क्यों, अब बात हो जाए कुछ काम की। जी हाँ, काम की बातों में आज बात करेंगे हम बचत की। सखियों, बचत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ पैसे की तस्वीर आ जाती है, पर सच बात ये नहीं है बचत सिर्फ पैसे की ही हो। बचत एक ऐसी सोच है, एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। सखियों, बचत कई तरह की हो सकती है और हर तरह की बचत हमें किसी न किसी रूप में अमीर बनाती ही है। जैसे पैसों की बात करें तो कहते हैं ना सखियों कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम रोज 20 से 50 रुपए जैसी छोटी छोटी बचत भी करते हैं ना सखियों, तो ये हमारी इमरजेंसी में काम आती है। पहले बचत फिर खर्च, ये मंत्र अगर हम अपना लेते हैं ना सखियों, तो बचत तो होना तय है। इसके लिए सखियों, आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या SIP में पैसे रख सकती हैं। अब बात जरूरी बचत यानी समय की बचत की। समय की बचत कहते हैं ना जीवन की बचत। दुनिया का सबसे कीमती धन पैसा नहीं बल्कि समय है। जो गया वो वापस नहीं आता। घंटों फोन स्क्रॉल करना, बेकार की गपशप, बिना प्लान के काम करना, ये सारा समय की बर्बादी है। इसके लिए एक डायरी बनाएं, फिक्स टाइम टेबल बनाएं, पहले काम फिर आराम, इस मंत्र को अपनाएं, फिर देखिए सारे काम आपके खुद ब खुद समय पर हो जाएंगे। इसी तरह संसाधन की बचत। जी हाँ, धरती पर पानी, बिजली, पेड़, ये सब मुफ्त में नहीं है। नल खुला छोड़ देना, लाइट जली छोड़ देना, कागज बर्बाद करना, ये आदतें हमें नहीं बल्कि पूरे देश को गरीब बनाती हैं। इसलिए कोशिश करें और छोटी छोटी बचत करें जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसी तरह अगर गुस्से में हम कभी कभी किसी को दो शब्द ज्यादा बोल देते हैं ना, तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें, इससे क्या होगा, हमारे रिश्तों की बचत। जी हाँ, किसी से अगर हम माफी मांग लेते हैं या किसी को हम माफ कर देते हैं, तो इससे हमारे रिश्ते बच जाते हैं। एक और बचत है जो है असली दौलत, वो है सेहत की बचत। आज अगर हम 30 मिनट वॉक कर लेते हैं, तो कल डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा तला भुना कम खा लेते हैं ना सखियों, तो कल दवाइयों के खर्च से बच जाएंगे। इसलिए सेहत बची तो सब बचा। याद रखिए सखियों, पैसा बचे तो सुख बचे, समय बचे तो तरक्की बचे, रिश्ते बचे तो चैन बचे, सेहत बचे तो सब बचे। तो शुरुआत आज से ही होगी ना सखियों, लेकिन समय तो नहीं बच रहा है अब आपसे बात करने के लिए। तो सखियों, अब चलने का समय हो रहा है। आपको बता दें, आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दें अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी।

0: आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं पूर्णिमा नतानी द्वारा गाए गीत और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा नातानी द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। चलिए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दम लगा के हईशा से।

अनु मलिक का संगीत वरुण ग्रोवर के लिखे बोल, कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दम लगा के हैशा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मनमर्जियां से, आवाज़ है हर्षदीप कौर और जाजम शर्मा की।

अमित त्रिवेदी का संगीत शैली के लिखे बोल, हर्षदीप कौर और जाज़िम शर्मा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मरमर्जिया से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद कल वे अनंतपुरम जाएंगी, जहां आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री गौतम टिटवाल और सांसद रोड बलनागर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का आज समापन हो रहा है, जिसमें अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जिला स्तरीय समारोहों में सांसद गण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डेलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीडी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षा के अनुसार 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शिष्य

वृद्धि की दरें हर साल मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी और जुलाई में छात्रावास आश्रम शुरू होने से पहले लागू होंगी। नई दरों के अनुसार छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले बालक विद्यार्थियों को 1720 रुपये प्रतिमाह और बालिका विद्यार्थियों को 1710 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाएगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर के निर्देशन में रोजगार मेले का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में होगा। कटनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल ईवीएम वेयरहाउस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सेफ क्लिक अभियान के तहत आगरमालवा जिले के कल 6वें दिन जिला पुलिस द्वारा बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में सहकारिता और जागरूकता तथा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कल जिला सहकारी संघ कार्यालय में आयोजित हुआ और खंडवा वन मंडल की गुंडी रेंज के ग्राम आमा खुचरी में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 105 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं और कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता डब्ल्यू

0: www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।

0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ERNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति

0: है जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का, जिसमें आपके भेजे हुए पत्रों को हम शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के मीठे मीठे गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में और यह है फिल्म नागिन से। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

हेमंत कुमार का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नागिन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है विजय पथ और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। इसके अलावा सपना संगीता रोड इंदौर से हमें लिखा है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

विजयपथ से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुन रहे थे आप, जिसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और जिसके बोल लिखे थे जमीर कासमी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रजनीगंधा से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। लिखने वाले हमारे

किसानों और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुन रहे थे आप, जिसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और जिसके बोल लिखे थे जमीर कासमी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रजनीगंधा से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं MM राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रतिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनका पूरा परिवार। और इसके अलावा एक और पत्र हमारे पास आया है जिला नांदेड़ से, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंतले और आरती जोंतले का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

सलिल चौधरी का संगीत, योगेश के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रजनीगंधा से। और ये है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। अगला गीत आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनाएंगे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म परिचय से, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसके अलावा पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री ने भी हमें फरमाइशी पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप श्रोताओं के लिए यह अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म परिचय से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में फिल्म निगाहें से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है बजरंगी रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास जिला सागर से। लक्ष्मण रखवार, विनीता रखवार, वैशाली, वैष्णवी, अनुरत रखवार, हल्ले लल्लू और साथी ऋषि रखवार और बंडा की ओर से। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है, वो है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की ओर से। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की ओर से। तो लीजिए अगला गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म निगाहें से। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी तरह अपने पत्रों का सिलसिला जारी रखिए और हमें भेजते रहें अपने पत्र अपनी फरमाइशों के साथ। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल बंगू भाई पटेल ने की। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीड़ी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है और प्रदेश में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के 6वें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी आज शाम 5:33 पर। शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। और ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है और लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जहां हम आपको सुनवाएंगे पूर्णिमा नातानी द्वारा गाए भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पूर्णिमा नातानी द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं गीत आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाज़ में फिल्म वेलकम से।

0: अनजान सागरी के का संगीत आनंद राज आनंद के लिखे बोल, उन्हीं की आवाज़ और श्वेता पंडित साथ थी। और इस गीत को आपने सुना फिल्म वेलकम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए सुनवा रहे हैं फिल्म रेस से, जिसे आवाज़ दी है मोनाली ने।
1: All right, see, it hurts.

प्रीतम का संगीत, समीर के लिखे बोल, मोनाली की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रेस से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मिथुन की आवाज़ में, साथ है शिल्पा राव, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

0: मिथुन का संगीत सैयद कादरी के लिखे बोल मिथुन और शिल्पा राव की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म द ट्रेन से। कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम है चॉकलेट।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Beat the beat. Yeah, I'll have this. Check this out.

प्रीतम के संगीत, मयूर पुरी के लिखे बोल, सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चॉकलेट से, और अब आपको सुनवाते हैं गीत अक्षय वर्मा और दिलबहार की आवाज़ में फिल्म ओए लकी लकी ओए से।

स्नेहा खनवलकर का संगीत, दिबाकर बनर्जी और अमितोष नागपाल के लिखे बोल, दिलबहार और अक्षय वर्मा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ओए लक्की लकी ओए से। और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुणाल गांजावाला, साथ ही राघव संचर की आवाज़ में फिल्म 1 2 3 से।

0: राघव शंचर का संगीत आदित्य धर के लिखे बोल, कुणाल गांजावाला और राघव शंचर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म 1 2 3 से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भैंसवा माता जिला राजगढ़ में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह और विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज

दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज आईएलबीएस के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितम्बर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस साल 30 जून तक निर्धारित की गई थी और मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन का गायन 1 जुलाई को प्रातः 10:15 पर किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे महेश अग्रवाल का काव्य पाठ, साथ ही डॉक्टर वर्षा चौबे से भी काव्य पाठ।
1: नमस्कार, मैं महेश अग्रवाल गजलों के साथ उपस्थित हूँ। कि मेघ तुम्हारे घर ठहरे हैं, प्यास जरूरत है मेरी। मेघ तुम्हारे घर ठहरे हैं, प्यास जरूरत है मेरी। तुम हो साहूकार सुखों के, पीर विरासत है मेरी। मेघ तुम्हारे घर ठहरे हैं, प्यास जरूरत है मेरी। तुम हो साहूकार सुखों के, पीर विरासत है मेरी। खूब जिरह करता हूँ खुद से, खूब जिरह करता हूँ खुद से, तब निर्णय ले पाता हूँ। मेरे भीतर सोच समझ की एक अदालत है मेरी। खूब जिरह करता हूँ खुद से, तब निर्णय ले पाता हूँ। मेरे भीतर सोच समझ की एक अदालत है मेरी। लोग प्रशंसा के पुल बांधें या आलोचक बन जाएं, लेकिन सच को सच कहने की सच्ची हिम्मत है मेरी। लोग प्रशंसा के पुल बांधें या आलोचक बन जाएं, लेकिन सच को सच कहने की सच्ची हिम्मत है मेरी। प्रेम भरे दो शब्दों के सिक्कों में ही बिक जाता हूँ, प्रेम भरे दो शब्दों के सिक्कों में ही बिक जाता हूँ। मेरे सारे मित्र समझते कितनी कीमत है मेरी। प्रेम भरे दो शब्दों के सिक्कों में ही बिक जाता हूँ, मेरे सारे मित्र समझते कितनी कीमत है मेरी। और मेरा घर परिवार जहाँ का मैं राजा कहलाता हूँ, मेरा घर परिवार जहाँ का मैं राजा कहलाता हूँ। मेरे घर की चौहद्दी ही सिर्फ रियासत है मेरी। मेरा घर परिवार जहाँ का मैं राजा कहलाता हूँ, मेरे घर की चौहद्दी ही सिर्फ रियासत है मेरी। और एक कलम कागज शाही है मन की एक तिजोरी में, एक कलम कागज शाही है मन की एक तिजोरी में। गज़लों के कुछ सिक्के भी हैं, इतनी दौलत है मेरी। एक कलम कागज शाही है मन की एक तिजोरी में, गज़लों के कुछ सिक्के भी हैं, इतनी दौलत है मेरी। मेघ तुम्हारे घर ठहरे हैं, प्यास जरूरत है मेरी। तुम हो साहूकार सुखों के, पीर विरासत है मेरी। अगली गज़ल कि धूप आई छप्परों के छेद से घर में, धूप आई छप्परों के छेद से घर में, यूं लगा कुछ तो उजाले हैं मुकद्दर में। धूप आई छप्परों के छेद से घर में, यूं लगा कुछ तो उजाले हैं मुकद्दर में। शेर देखिए कि जिंदगी अपनी खंगालो तो ज़रा तुम भी, जिंदगी अपनी खंगालो तो ज़रा तुम भी, रत्न सब के सब नहीं मिलते समुंदर में। जिंदगी अपनी खंगालो तो ज़रा तुम भी, रत्न सब के सब नहीं मिलते समुंदर में। और जिद हवा की है तो मैं भी कम नहीं जिद्दी, जिद हवा की है तो मैं भी कम नहीं जिद्दी, मैं चिरागों को जलाऊंगा बवंडर में। जिद हवा की है तो मैं भी कम नहीं जिद्दी, मैं चिरागों को जलाऊंगा बवंडर में। और बोल उठते हैं बहुत बेजान पत्थर भी, बोल उठते हैं बहुत बेजान पत्थर भी, डालता है जान जब नक्काश पत्थर में। बोल उठते हैं बहुत बेजान पत्थर भी, डालता है जान जब नक्काश पत्थर में। नफ़रतों के चार अक्षर हार जाते हैं, नफ़रतों के चार अक्षर

अक्षर हार जाते हैं, आज भी ताकत बहुत है ढाई आखर में। नफ़रतों के चार अक्षर हार जाते हैं, आज भी ताकत बहुत है ढाई आखर में। और हार में भी जीत हो या जीत में भी हार, बस यही अंतर रहा पौरस सिकंदर में। हार में भी जीत हो या जीत में भी हार, बस यही अंतर रहा पौरस सिकंदर में। और देश अपना सोच में कुछ और आगे है, देश अपना सोच में कुछ और आगे है, हम समुंदर भी भरा करते हैं गागर में। देश अपना सोच में कुछ और आगे है, हम समुंदर भी भरा करते हैं गागर में। एक और गज़ल, शब्द की गरिमा रह जाए ऐसा कुछ लिख दूँ, शब्दों की गरिमा रह जाए ऐसा कुछ लिख दूँ, दुनिया के प्यासे होठों पर मैं दरिया लिख दूँ। शब्दों की गरिमा रह जाए कुछ ऐसा लिख दूँ, दुनिया के प्यासे होठों पर मैं दरिया लिख दूँ। शेर देखिए कि दुख दर्दों के मुझ में जलते होते रहते हैं, दुख दर्दों के मुझ में जलते होते रहते हैं, इन जलसों में खुद को मैं कैसे तन्हा लिख दूँ। दुख दर्दों के मुझ में जलते होते रहते हैं, इन जलसों में खुद को मैं कैसे तन्हा लिख दूँ। और मेरी गलती पर वो उंगली रोज़ उठाता है, मेरी गलती पर वो उंगली रोज़ उठाता है, जी करता है उस दुश्मन को आई ना लिख दूँ। मेरी गलती पर वो उंगली रोज़ उठाता है, जी करता है उस दुश्मन को आई ना लिख दूँ। और आंसू की शक्लों में पानी रहता आँखों में, आंसू की शक्लों में पानी रहता आँखों में, कैसे आँखों की झीलों को मैं सहरा लिख दूँ। आंसू की शक्लों में पानी रहता आँखों में, कैसे आँखों की झीलों को मैं सहरा लिख दूँ। और बचपन को लिख दूँ पेड़ों की नन्ही कोपल था, बचपन को लिख दूँ पेड़ों की नन्ही कोपल था, और बुढ़ापे के सच को पीला पत्ता लिख दूँ। बचपन को लिख दूँ पेड़ों की नन्ही कोपल था, और बुढ़ापे के सच को पीला पत्ता लिख दूँ। खुद को लोग समुंदर कहते हैं तो कहने दो, खुद को लोग समुंदर कहते हैं तो कहने दो, लेकिन मैं खुद को कतरे का भी कतरा लिख दूँ। खुद को लोग समुंदर कहते हैं तो कहने दो, लेकिन मैं खुद को कतरे का भी कतरा लिख दूँ। शब्दों की गरिमा रह जाए कुछ ऐसा लिख दूँ, दुनिया के प्यासे होठों पर मैं दरिया लिख दूँ। एक और गज़ल, जिंदगी को और कुछ नज़दीक आकर देखना, तुम किसी के ज़ख्म पर मरहम लगा कर देखना। ज़िंदगी को और कुछ नज़दीक आकर देखना, तुम किसी के ज़ख्म पर मरहम लगा कर देखना। और कुछ स्वादिष्ट होगा रोटियों का स्वाद भी, और कुछ स्वादिष्ट होगा रोटियों का स्वाद भी, तुम कभी अपने पसीने को बहा कर रखना। और कुछ स्वादिष्ट होगा रोटियों का स्वाद भी, तुम कभी अपने पसीने को बहा कर देखना। यूँ तुम्हारी ज़िंदगी वातानुकूलित हो भले, यूँ तुम्हारी ज़िंदगी वातानुकूलित हो भले, धूप में तुम भी कभी तलवे जला कर देखना। यूँ तुम्हारी ज़िंदगी वातानुकूलित हो भले, धूप में तुम भी कभी तलवे जला कर देखना। जीत के कुछ और भी आयाम खुलते जाएंगे, जीत के कुछ और भी आयाम खुलते जाएंगे, ज़िंदगी में तुम कभी खुद को हरा कर देखना। जीत के कुछ और भी आयाम खुलते जाएंगे, ज़िंदगी में तुम कभी खुद को हरा कर देखना। और यूँ भले खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक दें न दें, यूँ भले खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक दें न दें, पर गमों की खिड़कियों से मुस्कुरा कर देखना। यूँ भले खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक दें न दें, पर गमों की खिड़कियों से मुस्कुरा कर देखना। और तुम बना लेते समुंदर एक चुल्लू झूठ को, तुम बना लेते समुंदर एक चुल्लू झूठ को, पर कभी गंगा जली सच की उठा कर देखना। तुम बना लेते समुंदर एक चुल्लू झूठ को, पर कभी गंगा जली सच की उठा कर देखना। ज़िंदगी का हश्र ये मिट्टी तुम्हें समझाएगी, ज़िंदगी का हश्र ये मिट्टी तुम्हें समझाएगी,
धूल।

0: थोड़ी सी हवा में तुम उड़ा कर देखना। जिंदगी का हश्र ये मिट्टी तुम्हें समझाएगी, धूल थोड़ी सी हवा में तुम उड़ा कर देखना, जिंदगी को और कुछ नज़दीक आकर देखना, तुम किसी के जख्म पर मरहम लगा कर देखना। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम शब्द सागर में अभी आपने सुना महेश अग्रवाल का काव्य पाठ। लीजिए अब सुनिए व्यंग्य वार्ता। विषय है नींद और वार्ताकार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सक्सेना।
2: नींद का आना न आना, कम ज्यादा आना जाना, सब मुसीबत की जड़ है। डॉक्टरों के अनुसार यूं हर मनुष्य के लिए प्रतिदिन 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। लगातार कम नींद से विशेषकर महिलाओं में चेहरे की चमक कम और गुस्सा, पुरुषों में याददाश्त की कमी और चिड़चिड़ापन आदि आदि समस्याएं जन्म ले लेती हैं। गोरी महिलाएं गुस्से से काली पड़ जाती हैं और काले गोरे सभी तरह के आदमी चिड़चिड़ेपने के कारण अपनी खुद की बीवी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे नुमा आदमी और औरत दिन में भी सुनहरे सपने देखते रहते हैं। नींद को केवल रात की रानी कहना उसका अपमान करना होगा। कान में जूं डालकर आप सो सकते हैं, चाहे तो काकरोच भी दोनों कानों में डालकर मजे से सो सकते हैं। आप नींद में खर्राटे ले सकते हैं, करवट बदल सकते हैं और क्या क्या बदल सकते हैं। आप नींद में कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। जो काम आप जागते हुए मुश्किल से कर पाते हैं, वही काम आप नींद में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नींद में सपने आने पर यूरोप, अमेरिका, टिम्बकटू कहीं भी घूमकर आ सकते हैं। और अगर आपका नरक और स्वर्ग से परिचय है तो यमराज और हूरों से आसानी से मिल सकते हैं। दिल करता है कि नींद तू मस्त मस्त फिल्मी स्टाइल में गाना लिख डालूँ। नींद गरीब को आती है और अमीर को भी। साधु संत योगी दार्शनिक कवि और बहुत सारे लोग नींद के संबंध में भ्रामक बातें करते रहते हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। साधु संतों को नींद आती है परंतु दूसरों को इससे बचने की हिदायत देते रहते हैं। सुबह जल्दी उठने का उपदेश देने में इन्हें बड़ा मजा आता है। कहेंगे सुबह सुबह उठकर ध्यान लगाओ। अरे ध्यान भी तो एक तरह की नींद ही है। हमारे और आपके हिसाब से यह जीवन भी तो एक नींद ही है। शायद इसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज बट ए ड्रीम। ज़्यादा जोर की नींद लगी और काम तमाम हो गया, राम नाम। इसलिए नींद लो पर बीच बीच में आँख खोलकर देखते रहो कि दुनिया में क्या हो रहा है। दार्शनिक दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या से जीवन को परिभाषित करते रहते हैं। अब इनसे कोई पूछे नींद क्यों आती है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। चिर निद्रा में जो लीन हो गया उसे डॉक्टर, हकीम, वैद्य कोई भी उठा नहीं सकता। उसे केवल 4 आदमी ही उठा सकते हैं। कवि अगर प्यार में असफल रहा है तो नींद पर इस तरह के गीत लिखता है कि सुनने वाला सुनकर सो जाता है। और अगर वह प्यार में सफल होता तो कवि के बजाय पति बनता। सभी कवियों से निवेदन है कि वे सोते जागते इस बारे में सोचें और लिखें। सिगमंड फ्रायड और यंग सपनों और नींद के बारे में बहुत कुछ लिख गए। केवल कुछ लोगों को ही रंगीन टेक्निकलर सपने क्यों आते हैं? मुंगेरी लाल को दिन में भी रंगीन कलरफुल सपने आते हैं। सपने सपने हैं। जेम्स जॉइस ने यूलिसिस उपन्यास में 10-20 पेज अपना सपना लिखने में ही रंग डाले। नींद आएगी तो सपने भी अवश्य बिन बुलाए आएंगे। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने नींद में कभी भी सपना ना देखा हो? नींद, बेहोशी और कोमा तीनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग? तीनों अवस्थाओं में आदमी को सही सही याद नहीं रहता, एक शादीशुदा के समान। नींद एक नियमित प्रक्रिया है, बेहोशी यदा कदा और कोमा केवल किस्मत वालों को ही होता है। कोमा में आदमी सालों साल बेखबर पर लोग परेशान, यहाँ तक कि डॉक्टर भी परेशान। बेहोशी में आदमी थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर अपने आप में मस्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्रायः लेखकों और महान वैज्ञानिकों को देखा जा सकता है। इस तरह का वातावरण निर्माण हेतु कभी कभी तरह की औषधियों का सेवन करना परमावश्यक हो जाता है। कुछ बीमार काया वालों को नींद न आने पर गोली खाना होती है, कड़वी

0: दवा पीना होती है। जिनको ज़्यादा नींद आती है उन पर दवा गोली जरूरी हुआ तो अपने ही खर्राटों से आपकी नींद को रोके रखते हैं। ध्यान रहे, नींद का छोटा बच्चा झपकी कहलाता है। कुछ लोग अनजाने में नींद में चलते हैं, वे नींद में ही अपना या आपका मर्डर भी कर सकते हैं। कुछ को नींद में ही भूत प्रेत चुड़ैल और न जाने क्या क्या दिखते हैं। ऐसा हमने अंग्रेजी हिंदी उर्दू उपन्यास नाटक और कहानियों में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। यूं बगासी जुम्हाई अंगड़ाई नींद आने के पूर्व लक्षण होते हैं। मैं यहाँ बगासी लूँ तो आपको वहाँ नींद आ जाएगी, और अगर आप वहाँ जम्हाई लें तो मुझे यहाँ नींद आ जाएगी। ड्राइवर चाहे कार का हो, ट्रेन का हो, जहाज का, हवाई जहाज का हो, यूँ समझ लीजिए हर तरह के ड्राइवर को अपना काम करते समय सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग नींद में खर्राटे लेते हैं तो कुछ खर्राटों के बीच भी बड़े मज़े और इत्मीनान से नींद लेते हैं। होशियार लोग भरी ट्रेन या भरी बस में भी खड़े खड़े ही नींद को लपक लेते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ पक्षी जानवर और आदमी रात के अंधेरे में ही देख पाते हैं। वे रात में नींद ले पाते हैं या नहीं, विश्वासपूर्वक मैं नहीं कह सकता। आप चाहें तो किसी उल्लू या चमगादड़ का साक्षात्कार लेकर यह प्रश्न अपने समाधान एवं संतोष के लिए अवश्य कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में धूम्रपान निषेध के अलावा खर्राटे मना की सूचना पट्टी होना जरूरी है। मेरे मामा जी की बिटिया अपने पिताश्री यानी मेरे मामा जी के साथ फिल्म देखने जाने से कतराती थी। उसकी शिकायत होती थी, पिताजी के खर्राटों के कारण लोग फिल्म देखने के बजाय हमारी ओर देखने लगते हैं। माँ बाप धूरी संजा यानी डस्क के समय बच्चों को सोने से मना करते हैं। मेरी माँ तो इस समय को शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक खींच कर ले जाती थी। नींद और पढ़ाई का गहरा संबंध है। पढ़ाई के नाम पर नींद आना स्वाभाविक है। इधर कुछ लोगों का यह हाल है कि घर में आग लग जाने पर भी वे नींद से नहीं उठेंगे। नींद अमूल्य जो है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय जो लोग घरों में सोते रहे वे बच गए, और जो नींद को दगा देकर खुले में भागे वे बेमौत मर गए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सपनावस्था और शांत निद्रा अवस्था। आज की भीड़भाड़ भरी जिंदगी में आदमी जागृत अवस्था में भी दिन रात अपने आप को सपने देखते हुए पाता है। पुराने विद्वानों के मतानुसार जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं, नींद में आया सपना मर जाता है। नींद के लिए गद्दा, तकिया, लिहाफ, कुर्सी, सोफा आदि उपकरण जरूरी नहीं हैं। लोग सड़क पर, जमीन पर, यहाँ तक कि जहाँ जगह या मौका मिले वहीं सो जाते हैं। नींद से शरीर को आराम, दिमाग को ताजगी मिलती है। नींद दवा है, नशा है, वरदान है। परंतु परीक्षा के दिनों में बेवजह नींद कुछ ज़्यादा ही आती है, और जब परीक्षा ख़त्म हो जाती है तो नींद नदारत हो जाती है। चोरों को रात में बिल्कुल नींद नहीं आती, इसी कारण बेचारे चोरी करते हैं। बूढ़े व्यक्तियों को नींद कम आती है, सासों को नींद कम, बहू और बच्चों को कुछ ज़्यादा ही नींद आती है। अब आपसे बात करते करते मुझे भी आ रही है नींद, इस कारण शुभ रात्रि, गुड नाइट आदि आदि।
1: कार्यक्रम शब्द सागर में अभी आप सुन रहे थे व्यंग्य वार्ता, विषय था नींद और वार्ताकार थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सक्सेना। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा की आवाज़ में फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से।

संदेश सांडिल्य का संगीत खिलेश शर्मा के लिखे बोल उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है जब वी मेट से उस्ताद राशिद खां की आवाज़ में।

0: प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल, उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जब वी मेट से। और इसी गीत के साथ अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी भोपाल है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी में अब तक आपने सुना, हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को विजय हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजयश्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजयश्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर राजकुमार ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप करके स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा। सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट ने उसे एक अलग महल दे दिया जहां भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजयश्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी में।
1: नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
2: वो उधर छुप रही है स्वामी।
1: ठहर चांडालनी, निकाल वो विष की शीशी, कहाँ छुपा रखी है? निकाल कुलटा।
3: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
1: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो। चल
2: निकाल, दोनों हार कहाँ है?
3: ये है सम्राट।

0: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूं। चलो दोनों।
1: सम्राट,
0: इस प्रासाद में रहने वाले सभी दास दासियां देख लो, अपनी साम्राज्ञी की काली करतूतों। इसने अपनी बहन को बुलाया था भुवन मोहिनी की हत्या के लिए। ये कृतज्ञ स्त्री भुवन मोहिनी के त्याग और बलिदान के बदले उसे विष दिला रही थी। महाराज आदित्य सेन की पुत्री का वास्तविक स्वरूप देख लिया? देख लो अच्छी तरह से, देख लो सब और जान लो इसके चरित्र को अच्छी तरह से। भुवन मोहिनी ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया इसके लिए। प्रतिकार में ये क्या दे रही थी भुवन मोहिनी को? ये विष की शीशी, जिसके स्पर्श मात्र से किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। इन हत्यारियों के सुंदर चेहरों के धोखे में आकर तुम लोग भी इनके कहने पर आ गए। ये विमला नाम की स्त्री कोई चिकित्सिका नहीं, ये डायन है, डायन। सैनिक स्त्रियों, ले जाओ इन दोनों को, इसी महल में अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। और सुनो ध्यान से, किसी ने भी लालच में आकर इन दोनों में से किसी की भी कोई सहायता की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों को कोई वस्तु ना दी जाए। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों से किसी को बात ना करने दिया जाए, भले ही वो राज परिवार का ही क्यों ना हो। यदि मुझे इसकी जानकारी मिली कि किसी भी प्रकार की शिथिलता की गई तो उसे मैं राजद्रोह मानूंगा। राजद्रोह! यह आदेश राज परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी है।
1: सम्राट,

0: राजमाता, राजमाता।
1: क्या हुआ संरक्षिका, क्या हुआ? तुम सब लोग इतनी डरी हुई क्यों हो?
0: राजमाता, आज हम सब ने सम्राट का वो रूप देखा जो भगवान न करे कभी किसी को दोबारा देखना पड़े।
1: क्या हुआ?
0: सम्राट साम्राज्ञी और उनकी अतिथि बहन विमला को अंतर कक्ष से मारते पीटते बाहर ले आए और बंदी गृह में बंद करा दिया।
1: क्या कहा? किस अपराध में?
0: भुवन मोहिनी की हत्या के प्रयास के अपराध में।
1: क्या?
0: हाँ,
1: साम्राज्ञी ऐसा नहीं कर सकती। चलो मैं देखती हूँ।
0: परंतु?
1: क्या परंतु, मैं स्वयं देखती हूँ, तू घबरा मत। संरक्षिका, गांधारी स्त्रियों से कहो बंदी गृह का द्वार खोले।
0: क्षमा राजमाता, क्षमा। सम्राट का आदेश है इन अपराधिनियों से कोई नहीं मिल सकता, चाहे वो राज परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो।
1: क्या?
0: हाँ।

0: अरण्यक, सबको कहो कि बंदी गृह के सामने मेरे आदेश को सुनने के लिए उपस्थित हूं।
1: जो आज्ञा। अंतापुर के सभी राज कर्मचारी सम्राट का आदेश सुनने के लिए बंदी गृह के समक्ष उपस्थित हों। शीघ्रता करो।

0: सम्राट, सम्राट हमें क्षमा कर दीजिए सम्राट, हमें सम्राट क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए सम्राट, सम्राट, सम्राट।
1: कितनी बार चंद्रहास ने, कितनी बार क्षमा करो। यदि भुवन मोहिनी की हत्या तुम कर चुकी होती तब भी क्या तुम क्षमा मांगती?
2: प्रणाम सम्राट,
3: प्रणाम सम्राट,
2: प्रणाम सम्राट।
1: इनमें से महिला मजदूर कौन है?
2: हम लोग हैं सम्राट,
3: हम लोग हैं।
0: अंतिम बार सम्राट, आपको अपने बच्चे की सौगंध, हमें क्षमा कर दीजिए सम्राट, हमें क्षमा कर दीजिए।
1: मैं विवश हूं चंद्रहास तुम्हारे छल कपट से, इसलिए अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। सुन लो सब लोग, एक बार पुनः मैं इन दोनों के अपराधों को दोहराता हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ममेरी बहन विमला को बुलाकर भुवन मोहिनी के प्राण लेने की चेष्टा की थी, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी अस्वस्थता के समय स्वयं उसके जीवन की रक्षा कर रहा था। कई बार क्षमादान दे चुकने के बाद भी साम्राज्ञी ने मेरे और मेरे आदेशों की हर संभव उपेक्षा की। महिला श्रमिकों को मेरा आदेश है कि प्राण हत्या के प्रयास के आरोप में चंद्रहासिनी और उसकी बहन विमला की कोठरियों को बंद कर दिया जाए। वो दोनों बहनें दीवारों के भीतर चुनवा दी जाएं आज ही।

0: पुत्र, ये क्या किया तुमने? चंद्रहासुनी को मृत्यु दंड का परिणाम अनिष्टकारी होगा पुत्र, अनिष्टकारी। संभवतः महाराज, आदित्य सेन अपनी एकमात्र संतान के जीवन विनाश की कहानी धैर्य पूर्वक न सुन सके और चंद्रहासिनी और विमला का निधन किसी सर्वनाश को न आमंत्रित कर बैठे पुत्र।
1: राजकीय आदेशों के प्रति किसी को कोई असहमति नहीं होनी चाहिए मां। गंभीरतम अपराधों का दंड भी गंभीर और भयानक होता है। चंद्रहासिनी राजकुमारी बनकर भी अपने जीवन में महानता को स्थान न दे सकी। भारत राष्ट्र की साम्राज्ञी ऐसे नीच षड्यंत्रों का आश्रय ले, इसका प्रभाव सारी जनता पर कितना भयानक पड़ता, कभी सोचा है आपने? मुझे दुनिया क्या कहती यदि मैंने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया होता, तो संभवतः कल वो मुझसे ही प्रतिकार लेने को तत्पर हो जाती। निरंतर मेरी उपेक्षा करके बारंबार क्षमा और अभयदान का अनुचित लाभ उठाया है उसने। ऐसी अनैतिक घटनाओं का जनजीवन पर सर्वदा भयानक प्रभाव पड़ता, इसलिए जैसा अपराध साम्राज्ञी ने किया वैसा ही दंड उसे भोगना भी पड़ेगा।
0: मैं क्या करूं जिससे मेरी पुत्र वधु का जीवन बच जाए? चाहती तो ये हूं कि बंदी गृह का द्वार तोड़वा दूं, परंतु सम्राट ने वहां सैनिक पहरा बिठा दिया है। क्या होगा मेरे 5 वर्ष के पौत्र का, जो मातृविहीन होकर अति दीन मलिन सा दीख पड़ने लगा है। अब मुझे ही उसे अपने संरक्षण में रखना हो। मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि अपने

अब मैं जीना नहीं चाहती। ये सारा कलंक मुझ पर ही आरोपित किया जाएगा ना। दुनिया तो यही कर

0: अब मैं जीना नहीं चाहती। ये सारा कलंक मुझ पर ही आरोपित किया जाएगा ना। दुनिया तो यही कहेगी कि सम्राट ने एक नर्तकी का पक्ष लेकर स्वयं अपनी साम्राज्ञी को मृत्यु दंड प्रदान किया है। अब मैं जीकर क्या करूंगी। ये कलंक ढोने से उचित तो ये है कि अब मैं रुग्ण शैया से उठूं ही ना।
1: नहीं देवी भुवन मोहिनी, ऐसा मत सोचिए, अन्यथा सम्राट तो और भी दुखी हो जाएंगे। वो अपने निर्णय से अभी ही बहुत दुखी हैं। एक मास हो गए वो संपूर्ण कार्यों से जैसे संन्यास ले चुके हों, एकांत वास में ही हैं।
0: जिस राजकुमारी के सुख के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अंत में उसी का अस्तित्व ना पाऊं तो मेरा समर्पण तो व्यर्थ ही हो गया।

0: सम्राट का क्या होगा? अरण्यक, जी चाहता है कि एक बार सम्राट को जाकर मैं स्वयं समझाने का प्रयत्न करूं।
1: कोई लाभ नहीं होगा देवी, सम्राट किसी से भी नहीं मिलना चाहते। इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैं आपकी मनोभावनाओं को उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा।
2: असक्त रणभिषंगः पुत्र दार गृह दिशु, मैं स्त्री पुत्र और गृहादिक के निर्मम सामीप्य से अपनी अंतरात्मा को मुक्त कर चुका हूं। बस अरण्यक, भुवन मोहिनी की धुंधली स्मृति मात्र से मुक्त नहीं हो पाया। कैसी है वो?
1: पूरे प्रकरण से वो बहुत ही आहत है मित्र, वो आपसे मिलना चाहती है।
2: नहीं अरण्यक, जब मैंने निर्मम न्याय के चरणों में साम्राज्ञी का बलिदान कर दिया, तब भुवन मोहिनी के प्रति आसक्ति को भी छोड़ना होगा, क्योंकि भुवन मोहिनी के स्त्री सौंदर्य के उपभोग करने की लिप्सा ने ही तो इस बलिदान की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जिस पर चढ़कर चंद्रहासिनी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यदि विवाहिता पत्नी को पति के संपूर्ण प्रेम की आकांक्षा थी तो वो पाप नहीं था, मैं जानता हूं, किंतु संपूर्ण स्नेह दान न मिलने पर उसके हृदय में द्वेष और प्रतिहिंसा की भावना जागृत हुई और निरपराध भुवन मोहिनी का सर्वनाश करने के कुचक्र ने उसे मृत्युदंड दिलाया। इसमें मेरा क्या दोष? चंद्रहासिनी ने तो स्वयं ही मेरी पत्नी बनने का आग्रह किया था, ये जानते हुए कि मैं भुवन मोहिनी के प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर चुका था। भुवन मोहिनी उदारता पूर्वक उसका स्वागत करती रही और उसके मांगने पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद भी चंद्रहासिनी को कृतज्ञ बनकर भुवन मोहिनी को विषपान कराने के षड्यंत्र में नहीं तल्लीन होना चाहिए था। इस निर्णय का मुझे कोई पश्चाताप नहीं, चंद्रहासिनी ने जैसा किया वैसा ही परिणाम पाया। अरण्यक, मैं भुवन मोहिनी से मिलना चाहता हूं, उसे बुला लाओ आज ही।
1: जो आज्ञा मित्र।

0: ये मैं क्या देख रही हूँ? प्रस्तर हृदय वाला भारत का सम्राट अपनी करुणा से स्वयं विगलित है। आपके नेत्रों में करुणा की ये अश्रुधारा क्यों?
1: मैं सम्राट होकर भी आज दीनहीन बन गया हूं भुवन। अब इस अभिशापित जीवन का अंत हो, बस यही कामना है। मैंने अपना सर्वनाश कर डाला। मैं यदि सम्राट न होता तो शायद इतनी क्रूरता मेरे जीवन में ना आती। आज मैंने अपने इकलौते पुत्र को मातृत्व के सुख से वंचित कर दिया, माता पिता को अपनी सेवकनी पुत्र वधु से वंचित कर दिया। मुझे क्या मिला? हत्या का पाप? आज चंद्रहासिनी मेरी अंतर्दृष्टि के अत से इति तक समाई हुई है। मानो नेत्रों में आंसू भरे दया की भीख मांग रही हो।

0: और मेरे सामने भीषण रक्त सागर उद्वेलित होता दिखाई पड़ता है।
1: रक्त सागर
0: महाराज आदित्य सेन की प्रतिच्छाया मानो भीषण प्रतिकार के लिए उद्विग्न है। वो अपने प्राणों से प्रिय एकमात्र संतान के सर्वनाश का प्रतिकार लेना चाहते हैं। बड़े बड़े सामंतों की नंगी तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं और वो चंद्रहासनी के मृत्यु का पाप प्रक्षालन करने के लिए चंडी की जिह्वा बनकर मेरी सेना और स्वयं मेरे शरीर का रक्त दान मांग रही है। मेरी न्याय प्रियता का भयानक परिणाम प्रतिशोध की रक्त वैतरणी है भुवन मोहिनी, जिसमें मेरे सहित साम्राज्य की सेना को भी निमग्न होना होगा।
1: देव, क्या महाराज आदित्य सेन भारत सम्राट से युद्ध चाहते हैं?
0: हां भुवन मोहिनी, मुझे सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वो बड़ी

0: तत्परता के साथ भयानक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उनकी सेना की जितनी चिंता नहीं है, उससे अधिक भय है कि बारंबार पराजित होण जाति हमारे आपसी वैमनस्य का लाभ उठाकर भारत भूमि पर अधिकार करने का प्रयास करेगी, जिसका संभव परिणाम राष्ट्र की स्वतंत्रता का अपहरण होगा और भारतीय राष्ट्र शताब्दियों सहस्त्राब्दियों तक पराजय और दासत्व के कलंक का टीका लगाकर विदेशी आक्रामक शक्तियों के चंगुल में फंस जाएगा।
1: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
0: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
1: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
0: टाला जा सकता है।
1: कैसे?
0: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है।

नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर और डीटीएच के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में मीडियम वेव पर प्रसारण आरंभ होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजगढ़ में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज IELBS के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है और सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस साल 30 जून निर्धारित की गई थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी द्वारा प्रसारित युवाओं के दिलों की धड़कन और आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शाश्वत विष्णु रावत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और भोपाल की इन बदलती फिजाओं का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। लगता है गर्मियों ने अब खामोशी से विदा लेने की ठान ही ली है और सावन ने भी अपनी आहट ठंडी हवाओं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के साथ भेजनी शुरू कर दी है। तो कार्यक्रम में और आगे बढ़ने से पहले आइए इस बदलते मौसम के नाम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

साथियों, क्या कभी आपने रात के शांत आकाश को निहारते हुए यह सोचा है कि जिन अनगिनत तारों को हम टिमटिमाता हुआ देखते हैं, उनके बीच ऐसे भी पिंड मौजूद हैं जो करोड़ों वर्षों से अंतरिक्ष में अपनी अनवरत यात्रा पर हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। हर वर्ष 30 जून यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और इस दिन को चुनने का कारण है 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुई तुंगुस्का घटना, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह या उसके अवशेष के वायुमंडल में विस्फोट से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र नष्ट हो गया। यह पृथ्वी पर दर्ज सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह घटनाओं में से एक मानी जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न भी आ सकता है कि आखिर क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? सरल शब्दों में कहें तो ये चट्टानों और धातुओं से बने ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा बदलकर पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट भी आ जाते हैं। अधिकांश बिल्कुल सुरक्षित दूरी से गुजरते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इन पर नजर रखते हैं ताकि भविष्य में किसी भी संभावित खतरे का समय रहते आकलन किया जा सके। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने का उद्देश्य डर पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाना है। आज विश्व भर के अंतरिक्ष एजेंसियां आधुनिक दूरबीनों और उन्नत तकनीकों की सहायता से लाखों क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन कर रही हैं। उनका आकार, उनकी गति, उनकी कक्षा और पृथ्वी से उनकी दूरी, हर पहलू पर लगातार शोध किया जा रहा है। यही शोध भविष्य में हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो अगली बार जब आप रात को खुले आसमान की ओर देखें तो सिर्फ तारों को ही मत देखिए, उस अनंत ब्रह्मांड की कल्पना भी कीजिए जहां हर क्षण कुछ नया घटित हो रहा है और जहां मानव की जिज्ञासा ही उसे निरंतर नई खोजों की ओर अग्रसर करती है।

0: अभी आपने मोहित चौहान की मधुर आवाज में जब वी मेट फिल्म का लोकप्रिय गीत तुम से ही सुना। इस गीत के बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम जल संरक्षण जैसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आज केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी बन चुका है। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं वाणी शर्मा द्वारा प्रस्तुत भारतीय शास्त्रीय नृत्य और वैश्विक मंच विषय पर एक रोचक और विचार उत्तेजक वार्ता।
1: नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। जब शब्द नहीं थे, जब भाषा नहीं थी, जब सभ्यताओं के नाम तक नहीं थे, तब भी एक लय थी, एक स्पंदन, एक कंपन, एक दिव्य गति। और उसी गति से जन्मा था सृष्टि का नृत्य। भारतीय चिंतन कहता है कि यह ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह निरंतर गतिमान है। नक्षत्र घूम रहे हैं, ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, श्वास चल रही है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि स्वयं एक नृत्य है। और इस विराट नृत्य के अधिष्ठाता हैं श्री महादेव नटराज जी। कहा जाता है कि जब नटराज जी ने अपने आनंद तांडव की पूर्णता पर डमरू का निनाद किया, तब वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह सृष्टि की प्रथम अभिव्यक्ति थी, जिससे 14 माहेश्वर सूत अ ई ऊन रिलिक एऊं एऊच हय वरट लण यम गण नम झभय घड़ धश जब गड़ दश खफ छट थ चट तव कपय शश सर हल प्रकट हुए। विचार कीजिए, जिस संस्कृति ने नृत्य को केवल गति का माध्यम नहीं माना बल्कि उसे ध्वनि, भाषा, व्याकरण और अभिव्यक्ति की उत्पत्ति से जोड़ दिया हो, उस संस्कृति का शास्त्रीय नृत्य स्वाभाविक रूप से सीमाओं में कैसे बंध सकता है। शायद इसी कारण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जन्म किसी रंगमंच पर नहीं हुआ, उसका जन्म चेतना में हुआ। और जो कला चेतना में जन्म लेती है वह भूगोल की सीमाओं में नहीं रहती। इसीलिए आज जब भारत का शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर पहुँचता है तो वह केवल घुंघरुओं की ध्वनि नहीं ले जाता,

वह अपने साथ सहस्राब्दियों की सांस्कृतिक स्मृति, दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक दृष्टि भी लेकर जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल शरीर की गति नहीं है, यह नृत्य है जहाँ लय और ताल का शुद्ध सौंदर्य प्रकट होता है। यह नृत्य है जहाँ गति भावनाओं से संवाद करती है, और यह नाट्य है जहाँ संपूर्ण जीवन मंच पर जीवंत हो उठता है। इसीलिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी विदेशी दर्शक को संस्कृत का एक भी शब्द न आता हो, यदि उसने कभी रामायण न पढ़ी हो, यदि वह श्री राधा, कृष्ण, शिव या पार्वती के नामों से भी अपरिचित हो, फिर भी यदि किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति के अंत में उसकी आंखें नम हो जाएं, तो यह केवल कला की सफलता नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की वैश्विक विजय है। गीतेन प्रियते देवो, नृत्येन प्रियते जनः, उभाभ्याम प्रियते लोको, धर्म कामार्थ सिद्धये। गीत से देवता प्रसन्न होते हैं, नृत्य से जनमानस प्रसन्न होते हैं, और दोनों मिलकर संपूर्ण लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं बल्कि लोक मंगल है, और जब कोई कला लोक मंगल से जुड़ जाती है तब वह समय और भूगोल की सीमाओं से परे चली जाती है। यही भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक सफलता का रहस्य है। उसने कभी अपनी जड़ों को त्याग कर विश्व को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया, उसने स्वयं को बदल कर नहीं, स्वयं को समझकर विश्व का सम्मान प्राप्त किया, और यही किसी भी संस्कृति की वास्तविक शक्ति होती है। वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान को इतना प्रखर बना देना है कि संपूर्ण विश्व उसे समझना चाहे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने विश्व को केवल अपनी कला नहीं दिखाई, उसने विश्व को भारतीय दर्शन का परिचय कराया। उसने बताया कि शरीर भी प्रार्थना कर सकता है, मौन भी बोल सकता है, गति भी ध्यान बन सकती है, और नृत्य भी मोक्ष का मार्ग हो सकता है। अंततः भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर मात्र नहीं है, यह मानवता की साझा चेतना की धरोहर है। यह उस सत्य का साक्ष्य है कि मनुष्य केवल तर्क से नहीं जीता, वह सौंदर्य, संवेदना और आध्यात्मिकता से भी जीता है। गंगा के तटों पर विकसित कथक से लेकर तमिल भूमि के भरतनाट्यम तक, उड़ीसा की त्रिभंगीमयी ओडिसी से लेकर आंध्र की कुचिपुड़ी तक, केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम से लेकर मणिपुर के कोमल मणिपुरी तथा असम के आध्यात्मिक सत्रिया तक, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रत्येक धारा अपनी क्षेत्रीय विशिष्टता के साथ एक ही सांस्कृतिक महासागर में प्रवाहित होती है, और वह महासागर है भारतीयता। जब 20वीं शताब्दी में विश्व तेजी से बदल रहा था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण भारत को रहस्य और रोमांच की भूमि के रूप में देखता था, परंतु कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने विश्व को बताया कि भारत केवल रहस्य नहीं, एक परिष्कृत सांस्कृतिक सभ्यता है। इन अग्रदूतों में प्रमुख नाम था श्री उदय शंकर जी का, जिन्होंने पश्चिमी मंचों पर भारतीय नृत्य की आत्मा को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय नृत्य संग्रहालय की वस्तु नहीं है, वह जीवित है और वह विश्व से संवाद भी कर सकता है। फिर आई श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी, जिन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयासों से भारतीय नृत्य विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सांस्कृतिक विमर्श का विषय बना। इसके बाद श्रीमती यामिनी कृष्णमूर्ति जी, श्रीमती मृणालिनी साराबाई जी, श्री बिरजू महाराज जी, श्रीमती सोनल मानसिंह जी, श्री केलुचरण महापात्र जी जैसे महान कलाकारों ने

0: दुनिया को दिखाया कि भारतीय नृत्य केवल परंपरा नहीं बल्कि उच्च कोटि की कलात्मक बौद्धिकता है। आज विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारतीय नृत्य पर शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिक ताल और गणित के संबंध का अध्ययन कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रस सिद्धांत को मानव भावनाओं की गहनतम व्याख्या मान रहे हैं तथा आध्यात्मिक खोजी नृत्य को ध्यान की एक विधि के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि भारतीय नृत्य में गणित भी है, दर्शन भी है, मनोविज्ञान भी है और आध्यात्मिकता भी है। जब कथक का कलाकार 16 मात्रा के चक्र में घूमता है, जब भरतनाट्यम की रेखाएं ज्यामिति का जीवंत रूप बनती हैं, जब उड़ीसी की त्रिभंगी मानव शरीर को मूर्ति कला में बदल देती है, तब दर्शक केवल नृत्य नहीं देख रहे होते, वह समय, स्थान, शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को देख रहे होते हैं। आनंदादेव खलविमानी भूतानी जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति भी संविशन्ति। आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीते हैं और अंततः आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य उसी आनंद की यात्रा है, उसी अनंत लय का स्पर्श है, उसी दिव्य संवाद का माध्यम है जो मानव को मानव से और मानव को परमात्मा से जोड़ता है। आज जब भारतीय शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर अपने चरण रख रहा है, तब वह केवल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, वह संपूर्ण मानवता को यह स्मरण करा रहा है कि प्रगति और परंपरा विरोधी नहीं है, आधुनिकता और आध्यात्मिकता शत्रु नहीं है, और कला वह पुल है जिस पर चलकर संसार एक दूसरे को समझ सकता है। तो आइए इस अनंत परंपरा को प्रणाम करें, उन गुरुओं को प्रणाम करें जिन्होंने इसे जीवित रखा, उन कलाकारों को प्रणाम करें जो इसे विश्व तक ले गए और उस दिव्य लय को प्रणाम करें जो युगों से सभी प्राणियों को नचा रही है। यतो हस्तस ततो दृष्टिर, यतो दृष्टिस ततो मनः, यतो मनस ततो भावो, यतो भावस ततो रसः। अर्थात जहाँ हाथ जाते हैं वहीं दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन एकाग्र होता है, जहाँ मन होता है वहीं पवित्र भाव का जन्म होता है, और जहाँ भाव होता है वहीं रस यानी उस परमानंद की निष्पत्ति होती है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध देती है। रसो वै सह, परम सत्य स्वयं रस है।
1: वाणी शर्मा द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य और वैश्विक मंच विषय पर आपने सुनी ये वार्ता। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी। दोस्तों, कभी आपने ठहर कर बहुत शांति से जल की एक बूंद को आसमान से गिरते हुए देखा है? वह बूंद जो धीरे धीरे धरती को छूती है और उसी क्षण जीवन की अनगिनत कथाएं अपने भीतर समेट लेती है। आज की इस प्रस्तुति में हम उसी जल की बात करेंगे जो केवल हमारी प्यास का निवारण नहीं बल्कि हमारी समस्त सृष्टि का आधार है। वह जल जो आज के इस तीव्रगामी युग में एक साधारण आवश्यकता से बढ़कर एक अनिवार्य चेतावनी बन चुका है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विकास की दौड़ ने हमें ऊंचाइयां तो दी हैं पर कहीं ना कहीं हमारी जड़ों से हमारा संबंध शिथिल कर दिया है। हमने आकाश को छूने की इस आकांक्षा में धरती की नमी को शायद अनदेखा कर दिया और शायद यही वह विसंगति है जो आज जल संकट के रूप में हमारे सामने खड़ी है। पृथ्वी पर जल का विस्तार वैसे तो असीम प्रतीत होता है, किंतु जब बात आती है उस जल की जिसे हम पी सकें, जिसे हम अपने जीवन में उतार सकें, तो वह अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। नदियां जो कभी कल कल करती हुई जीवन का गीत गाती थीं, आज अनेक स्थानों पर केवल स्मृतियों में सिमटती जा रही हैं। तालाब जो गांवों की आत्मा हुआ करते थे, अब केवल मानचित्रों में खोजे जाते हैं, और धरती वह धरती जो अपने भीतर अनंत जल संजोए हुए थी, आज स्वयं प्यास की पीड़ा सहने लगी है।

यह केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं है, यह हमारे व्यवहार का प्रतिबिंब है। परंतु अभी भी समय की धारा पूर्णतः विलीन नहीं हुई है। अब भी हमारे हाथों में वह सामर्थ्य है जिससे हम इस प्रवाह को मोड़ सकते हैं। यदि हम चाहें तो हर गिरती हुई बूंद को एक संचित धरोहर बना सकते हैं। यदि हम सचेत हों तो अपने दैनिक जीवन में जल के संयमित उपयोग को एक संस्कार बना सकते हैं। यदि हम संवेदनशील हों तो प्रकृति के साथ एक संतुलित संबंध पुनः स्थापित कर सकते हैं। यह परिवर्तन किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, यह एक सामूहिक संकल्प है, एक मौन प्रतिज्ञा है जो प्रत्येक युवा के हृदय में, विचारों में और क्रिया में परिलक्षित होना अति आवश्यक है। यदि आज हमने इस सत्य को आत्मसात कर लिया तो आने वाला कल केवल सुरक्षित ही नहीं, संवेदनशील और समृद्ध भी होगा। और यदि हम चूक गए तो शायद वह समय भी दूर नहीं जब जल की एक बूंद केवल आवश्यकता नहीं, एक विलासिता बन जाएगी। इसीलिए आइए हम इस क्षण को केवल विचार का नहीं, संकल्प का क्षण बनाएं। अपने भीतर ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करें कि जल को बचाना दरअसल जीवन को बचाना है, क्योंकि अंततः जल ही जीवन है और जीवन हमारे हाथों में है।

प्रिय श्रोताओं, अगर आप या आपके परिवार में कोई युवा नौकरी की तलाश में है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद कारगर है। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, लीगल ऑफिसर सहित अनेक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित पद के अनुसार इंजीनियरिंग, विधि, फार्मेसी, विज्ञान अथवा स्नातक एवं स्नातोत्तर निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 जुलाई 2026 तक UPSC के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल ORA के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी क्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विभिन्न संस्थानों में जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट तथा पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संबंधित पदों के लिए BE, BTech, ME, MTech अथवा विज्ञान में स्नातोत्तर योग्यता निर्धारित की गई है। विभिन्न विज्ञापनों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथियां 12 जुलाई, 15 जुलाई एवं 21 जुलाई 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बातों ही बातों में पता नहीं लगा लेकिन आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। आशा करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में आपने कुछ नया

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो, कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
4: आकाशवाणी

0: अर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोताओं अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फ़ोन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के 6वें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट।
1: संस्कृत ज्ञान भारतीय परंपरा और वैदिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आज उज्जैन की पावन धरती एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण की साक्षी बनी। कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल सभागृह में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने की, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार सहित देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद संत और विद्वान

0: अवसर के सहभागी बने। दीक्षांत समारोह में जहां विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया, वहीं पीएचडी, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की गई। प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण एवं रजत पदकों से सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा और वैदिक मूल्यों के संरक्षण तथा संवर्धन का संदेश इस समारोह ने पूरे शिक्षा जगत को दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा,
1: व्याकरण शास्त्र के प्रणेता, शब्द ब्रह्म के उपासक महर्षि पाणिनि के पावन नाम प्रस्थापित विश्वविद्यालय का दीक्षांत केवल उपाधि वितरण का प्रयास प्रसंग नहीं है, अपितु संस्कृत की सनातन ज्ञान परंपरा के नई पीढ़ी के सौंपने का पवित्र अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के साक्षी पालकों एवं आचार्य और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान विद्यार्थियों को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 3,959 सूत्रों में पूरी भाषा को नियमबद्ध किया, उसी प्रकार आप सभी स्नातकों भावी जीवन में अपने ज्ञान, अनुशासन और चरित्र के राष्ट्र और समाज के संस्कारित आपको करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और गर्व करने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संस्कृत को केवल पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा नहीं माना, बल्कि इसे विज्ञान, दर्शन, गणित, कला और आधुनिक तकनीक के वाहक के रूप में मान्यता दी है। यह नीति त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से संस्कृति को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक मुख्य धारा में लाने का एक सशक्त रोड मैप प्रस्तुत करती है। अब समय आ गया है कि संस्कृत को संग्रहालयों की प्राचीन लिपियों से बाहर निकलकर आधुनिक अनुसंधान के जीवंत भाषा बनाए। विश्वविद्यालय से अपेक्षा है कि भारतीय ज्ञान की प्रणाली का दुनिया में प्रचार के लिए संस्कृत की ज्ञान विरासत को आधुनिक भाषा में प्रचार करे। मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी सारे हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर ऐलान किया है हमारे को 2047 में विकसित भारत जो बनाना है, तो ऐसे पुराने जो हमारे संस्कार है, पुराने जो प्रकृति की जो हम पूजा करने वाले हैं, ऐसा समाज हम तैयार करेंगे तो सही दिशा में हम विश्व गुरु बनेंगे। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, ऐसे अपेक्षा के साथ भारत माता की जय।
0: कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने सभी दीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देने के साथ कहा,
2: आज जिस विश्वविद्यालय की स्थापना जिस उद्देश्य से, जिस भाव के साथ मैं समझता हूँ की गई थी, इस दीक्षांत समारोह से उसके उद्देश्यों को पूर्ति हुई हम सबको दिखती है। आज जिन भी बंधु भगनी को उपाधि मिली है, मेडल मिले हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन जैसा कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं है, शिक्षा का एक पड़ाव है, लेकिन आगे जो चुनौतियां हैं उनको सबको स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। हमको अपने देश की परम्परा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के उस ज्ञान को, जिस ज्ञान के आधार पर हम दुनिया में कभी विश्वगुरु कहलाते थे, फिर से विश्वगुरु बनने का संकल्प यदि हम सब में है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। और विश्वगुरु बनने के वाहक के रूप में आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब बनने वाले हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने विशेष रूप से सभी विषयों के साथ जोड़ करके पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में लागू कर दिया है। उस अनुसार पुस्तकें बन चुकी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी भारत के शास्त्रों के बारे में ही केवल पढ़ाने का विषय होगा, ऐसा नहीं है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, ये सारे हैं जिनमें कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, और इसलिए उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज के सामने रखना। लेकिन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में भी क्या भारतीय वैज्ञानिकों का भारतीय समाज में जो परंपरा है,

0: वो वैज्ञानिक सम्मत है या नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण समाज के सामने आज आने लगा है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जब गर्व करने का विषय कभी हमारे सामने आता है तो मैं कई जगह उदाहरण देता हूँ। मैथमेटिक्स में तो दुनिया में सबसे अग्रणी हम ही रहे, और भारत के दर्शन में सभ्यता में जो भूगोल शब्द का वर्णन होता है, भू यानी पृथ्वी और गोल यानी पृथ्वी गोल है, ये हमारे देश के शब्द है। और इसलिए भारत के विद्यार्थियों के मन में गणित के प्रति जो अथाह विश्वास और का भाव होना चाहिए, वो निश्चित रूप से हमको विश्व विजेता की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराएगा। ऐसे कई सारे विषय भारतीय समाज में विज्ञान की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, परंपरा है, पर क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में एक भाव पैदा कर दिया कि आपके पूर्वज तो अंधविश्वासी थे, आपके पूर्वज तो रूढ़िवादी थे, और उस कारण से हमने हमारे अच्छे चीज़ों को भी, वैज्ञानिक चीज़ों को भी, विज्ञान के आधार पर समाज में स्थापित चीज़ों को भी छोड़ने का क्रम बना लिया, या छोड़ा नहीं तो चुपचाप करने का क्रम बना लिया। मैं एक उदाहरण के साथ आप मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत के समाज में हमारी सभ्यता में प्रकृति के साथ जो विशेष प्रेम है, स्नेह है, और उसके प्रति हम जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और दुनिया में जो आज झगड़ा चल रहा है, लोग ईरान अमेरिका जैसे झगड़ा चल रहा है, काय के लिए झगड़ रहे, ऊर्जा के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए, ये भी तेल भी जमीन से जो निकलता है ये भी कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से ही कन्वर्ट हुआ है, और जो कोयला है वो भी जमीन में है, कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ है। और इसलिए हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, उन्होंने उस वैज्ञानिक पक्ष को हमारे समाज में मान्यता में निरंतर परंपरा में उसको आगे बढ़ाया है। और इसलिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे सामने, देश के सामने भी है, मैं इस विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब 2047 यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, समाज में कई सारे लोग जिसको विश्वगुरु के रूप में देखना चाहते हैं, वो विकसित गुरु भारत, विश्वगुरु भारत जब बनेगा तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सूर्य की ताकत पर, हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान के ताकत पर भारत दुनिया में ऊर्जा का केंद्र बनेगा, और केवल हमारे देश की ऊर्जा की पूर्ति करने वाला देश नहीं होगा, हम दुनिया के भी कई देशों की ऊर्जा की पूर्ति कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा बड़ा पक्ष होने वाला है कि 2047 का भारत दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत बनेगा, क्योंकि इस देश के किसान अपनी भारत माता से, अपनी वसुंधरा से जो अनाज उत्पादित करेंगे वो केवल भारत के लिए नहीं होगा, वो दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत होगा, क्योंकि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को स्वीकार किया है। जयतु भारतम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
1: कार्यक्रम में माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर व्यास ने अतिथियों के स्वागत में कहा,
2: मित्रों, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय की एक इस यात्रा में इस विश्वविद्यालय को विगत पर्याय में नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसी सत्र में अभी 8 जून को अभी इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 12B का परीक्षण इस विश्वविद्यालय का संपन्न हो गया है। हमारे इस विश्वविद्यालय के 12B होने के बाद जो हमारी संभावनाएं बढ़ी हैं वो ये है कि हमें ODL संचालित करना है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा हो सके। और जो बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 14 विद्याएं और चतुष्षष्ठी कलाएं, इनका स्वरूप आना चाहिए समाज के सामने, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय इन दिशाओं में बहुत सार्थक प्रयास करेगा और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार माननीय कुलाधिपति जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, दोनों सांसद सदस्यों का, माननीय सारस्वत अतिथि वरखेड़ी जी का और मानद उपाधि पाने वाले पांडे जी का, तथा मंच पर विराजमान समस्त कार्य परिषद सदस्यों का, संकाय अध्यक्षों का, विद्या परिषद सदस्यों का, साधारण परिषद सदस्यों का, समागत समस्त अतिथियों का भूयो भूया स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम इति उक्त्वा विरमामि, धन्यवादः।
1: कार्यक्रम के माननीय सारस्वत अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने कहा,
3: माननीय कुलपति महोदय तथा सभी साधारण सभा और विशिष्ट सभा और प्रशासन मंडल के सभी सदस्यों को मैं अभिनंदन करता हूँ। इसलिए मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ, आज दीक्षांत हो गया, हमारा पूर्ण उपाधि प्राप्त होगी, लेकिन पूर्ण उपाधि का वास्तविक अर्थ समाज देगा, क्योंकि आज केवल हमने प्रमाण पत्र

दिया है। यहाँ के माननीय कुलाधिपति ने अपने अधिकार से विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको एक उपाधि प्रमाण पत्र दिया है। हम सबको जानकारी है उपाधि पत्र के प्रथम पृष्ठ में उपाधि का नाम होता है, हमारा ग्रेडिंग होता है, लेकिन उपाधि के पृष्ठ में खाली पत्र होता है। रिक्त पत्रे समाज लिखति, प्रमाणपत्रे कुलपति हस्तांकनं करोति, परंतु रिक्ते प्रमाणपत्रे रिक्तस्थाने समाजः रिक्तस्थानं पूरयिष्यति। उस रिक्त स्थान में ये इस उपाधि के लिए अर्ह है, ये उपाधि के लिए प्राप्त है, उपाधि के लिए पात्र है, और उपाधि प्राप्त होने के बाद यह वास्तविक रूप से समाज के लिए उपकारी है। ऐसे समाज जब निर्णय करेगा तभी प्रमाण पत्र का पूर्णता प्राप्त होगी। आप सबसे उपाधिधारक स्नातक धारकों को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, इस दीक्षांत समारोह के बाद पश्चात निरंतर शिक्षा का आरंभ हो जाए और वास्तविक रूप से समाज से आप प्रमाण पत्र स्वीकार करिए। हमारा धर्म होगा केवल हम शिक्षा से विभूषित नहीं हैं। यदि हमारे मन में केवल सनातन धर्म के लिए निष्ठा नहीं है,

0: निर्णय करेगा तभी सब प्रमाण पत्र का पूर्णता प्राप्त होगी। आप सबसे उपाधि धारक स्नातक धारकों को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, इस दीक्षांत समारोह के बाद पश्चात निरंतर शिक्षा का आरंभ हो जाए और वास्तविक रूप से समाज से आप प्रमाण पत्र स्वीकार करिए। हमारा धर्म होगा केवल हम शिक्षा से विभूषित नहीं है, यदि हमारे मन में केवल सनातन धर्म के लिए निष्ठा नहीं है, अध्यात्म भक्ति नहीं है, संस्कृति का हमारे गंध नहीं है और शास्त्र और कवित्व प्रतिभा के साथ यदि समस्त विद्याओं के प्रति हमारे धारणा नहीं है तो हम वास्तविक रूप से उपाधिधारी नहीं हैं। इसलिए आज इस उपाधि के साथ अध्यात्मनिष्ठा, सनातन धर्मनिष्ठा, कवित्व शास्त्र प्रतिभा, संस्कृति और समस्त विद्या का प्रतीक के रूप में हमारी पूजा होती है, इसलिए इन सारे विद्याओं का धारक के रूप में हमारा दायित्व भी है। मेरा दायित्व है, मेरे भारत का धारक हूँ मैं, तो भारत का धारणा शक्ति मेरे मुझ में है, इसलिए इस भावना के साथ हम सबको कार्य करना है। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा केवल शास्त्र स्मृति से काम नहीं चलेगी, शास्त्र रक्षा भी होनी चाहिए और शास्त्र कृषि भी होनी चाहिए, शास्त्र का अनुभूति भी होनी चाहिए और शास्त्र दृष्टि के साथ अभिनव शास्त्र सृष्टि भी होनी चाहिए। सभी को, छात्रों को यही आदर्श के साथ आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों से मैं वचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणामः।
1: दीक्षांत समारोह में स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज को महामहोपाध्याय डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी शोधार्थियों से कहा,
2: भगवान महाकाल की कृपा है, भगवान विश्वनाथ की कृपा है कि हम लोगों ने एक युग देखा जब 370 धारा हट गई। हम लोगों ने यह देखा भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। हमने ये देखा कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनः उद्घोष हमारी शिक्षा पद्धति में आरंभ हुआ। यह मंच आपको कह रहा है, निमित्त मात्र बन जाओ, उठ करके खड़े हो जाओ, भविष्य काल हमारा है, हम उसको करके दिखाएंगे। कितना भी चुनौती भरा समय होगा तो भी क्या, यह उथल पुथल उत्ताल लहर, यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी, भारत माता की।
1: ज्ञान, संस्कार और परंपरा के संगम बने इस दीक्षांत समारोह ने विद्यार्थियों को नई उड़ान और नई जिम्मेदारियों का संदेश दिया है। उपाधियों और सम्मान के साथ आज इन विद्यार्थियों ने समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प भी लिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विशेष प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठवें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति थी और इसका प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर की बोल हैं और संगीत जतिन ललित का।

लीजिए अब सुनिए अगला गीत फिल्म दिल धड़कने दो से। यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों की आवाज़ है, बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

हम अपने श्रोताओं को बता दें कि गठिया रोग और अर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को एक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस के अवसर पर विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष करने वाले सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानू सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थलसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। और 2026 फीफा विश्व कप के पहले दौर के 32 मैचों के बाद 3 और टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे ने क्रमशः नीदरलैंड, जापान, जर्मनी पर जीत हासिल करके राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 6 बजने वाले हैं। आप सुनिए कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
3: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गाँव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
3: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
3: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
3: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है,
2: जी,
3: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
3: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
3: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
3: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
3: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
3: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
2: जी,
3: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
2: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
3: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में

0: हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते
1: जी
0: हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
1: जी
0: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खो देंगे तालाब बड़ा सा।
3: खो देंगे, खो देंगे, हम सब मिलकर।

0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: खो देंगे भाई, खो देंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
3: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
2: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
0: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
4: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
5: क्या
6: क्या
5: क्या?
4: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
5: कू कू।
4: नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
2: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
4: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं, ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम। ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
4: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
6: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
4: का का का।
0: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम पर

0: やばい。パピーハナピエットジャパン。
1: カンカンカン。あれ？イスネとバスラッヒパカルリ？
2: ボウボウボウ。あれ？ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: काँ काँ काँ कुत्ते देख नहीं रहे शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ काँ शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब। आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का। सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो।
4: इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे। भयंकर लू चलने लगी। जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: काँ काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ
6: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
7: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
7: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
6: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: खाओ, खाओ, खाओ।
6: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
6: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
7: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी

0: भी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँव काँव। हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: चलो
3: पिए दूजा पानी।

0: गया?
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।
2: अरे

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच लंदन में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल, मैच की समाप्ति तक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

30 मिनट पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता, और शाम 7 कार्यक्रम होगा जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 हवा महल में आज सुनिए नाटिका उनके महबूब। लेखिका है विमला रैना, निर्देशन किया है लोचन बख्शी ने। रात 9 कार्यक्रम होगा आपके लिए, और 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है संगीतकार कल्याण जी पर। रात 10 छाया गीत में आज सुनिए ममता सिंह को। कल सुबह 6:05 पर वंदन वार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का भाग सुनिए 236। संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका श्रृंखला का पहला भाग। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार, संपादन सहायक झरना सोलंकी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार की। तिरवणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। कल सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार सी अर्जुन पर। आलेख और स्वर है अशोक सोनावने का, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कल दिन में 10 पिटारा के अंतर्गत सुनिए सेलोलाइट के सितारे में गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से की गई ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहायक काजल भदरंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11 मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सुनिए रंग तरंग, और 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1 हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर, कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। 3 सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के विषय हैं पारिवारिक चिकित्सक, साड़ियों का संसार, शब्द हमारे विचार आपके, और व्यंजन प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 4 पिटारा के अंतर्गत सुनिए आज के मेहमान में वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राठी से की गई मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 5 छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा, और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल शाम 7 कार्यक्रम जयमाला, और शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे राग अनुराग। कल रात्रि 8 हवा महल में सुनिए झलकी दिव्य स्वप्न। लेखक हैं मनसुख देसाई, निर्देशक हैं सत्येंद्र शरत। रात 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 छाया गीत में सुनिए मंदाकिनी जोशी को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात, और 11 कार्यक्रम होगा रंग तरंग।
देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह

8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। कल सुबह और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम संध्या रंजन में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में। गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन का लिखा गीत, फिल्म का नाम है गीत गाता चल।

मुकेश और साथियों की आवाज़ों में अगला गीत है, रचना है भरत व्यास की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है संत ज्ञानेश्वर।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
2: डॉक्टर गंगूबाई हनगल जी नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: सुना है कि आपकी माता जी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
3: उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरे माए कर्नाटक

0: डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
1: डॉक्टर गंगूबाई हांगल जी, नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: सुना है कि आपकी माता जी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
2: उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरी माई कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त।
1: अच्छा।
2: इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे, वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा गाने लगे
1: हिंदुस्तानी संगीत।
2: अच्छा। उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
1: हिंदुस्तानी संगीत
2: संगीत सिखाएंगे। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गई, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके
1: संगीत विद्वान
2: हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे।
1: अच्छा।
2: उसके पास एक साल तक हमने
1: शिक्षा
2: पी। तो एक साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीजें बंदिश हमको बताए।
1: अच्छा।
2: मेरे आवाज पतला बहुत था।
1: अच्छा।
2: वो तो 3-3 मिनट में एक एक बंदिश में दो दो ताने ऐसे कुछ वो बताए थे।
1: अच्छा।
2: हम ऐसे छोटा मोटा, कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम, हम बीच में हुए, मैं भी गाते थे,
1: स्वर लगाते थे।
2: नहीं अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे ही हो गया मेरे माँ से।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो सुबह सुबह, उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात।
2: इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1-1.5 घंटा सूर्यास्त करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवाई गंधर्व के पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने
1: उच्च शिक्षा
2: प्राप्त हो पाए।
1: डॉक्टर गंगूबाई जी, आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं, क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे?
2: किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं।
1: बिल्कुल,
2: ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं, इसलिए वो तो ऐसे बोलते हैं तंत्रवाद्यकार थे इनके पूर्वज, ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते हैं, स्वर के ज्यादा महत्व देके स्वर एकदम आ करके नहीं लगाएंगे, उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना बोलते हैं, क्या बोलते मुझे याद नहीं,
1: मग्न हो जाना।
2: ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है।
1: क्या आप गुरुकुल पद्धति में विश्वास रखती हैं?
2: हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत है, फिर वो अच्छे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको।
1: अच्छा।
2: गायक बनने के लिए गुरु पद्धति, मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास इसी में है।
1: अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या कहने के, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसी करनी चाहिए?
2: वो तो किसी का आवाज पतला रहते हैं, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहते, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो
1: रियाज
2: करना। हमको तो हमारे गुरु जी ने एक एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी शाम में मुल्तानी ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे। ऐसे एक एक स्वर षड्ज नीचे जितने जाता है खर्च पे उतने एक एक स्वर सांस जब तक है उस तक एक एक स्वर
1: कहना चाहिए।
2: और बाद में उसका ताने के तरफ एक एक श्वास में कितनी दफे ताने आते हैं, सा नी दा बा पा दा नी सा, ये जो है
1: इस
2: श्वास बढ़ाते ऐसी इतनी 6 दफे 7 दफे कितने आते हैं इतने ऐसे हमको बताए थे। और विस्तार करने में 3 स्वर सारेगा गारेगा।

0: इतनी उनके अलग अलग
1: ढंग हो
0: ढंग होता है। बाद में गांधार के बाद मध्यम, मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा करना गाना ये हमको सिखाए उस वक्त। रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है।
1: तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो वहाँ संगीत की शिक्षा यानी कि वहाँ से कोई संगीतकार नहीं
0: बहुत पाता। कम हमने तो देखे ही नहीं ऐसे, क्योंकि क्या होता है स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो तो हो जाता है और एकदम कॉलेज में आना, कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरू होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से, आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे कोई उनको पता नहीं
1: जी।
0: साल में एक गायक उसमें से निकलते बहुत कुछ होगा।
1: हाँ तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले या
0: वो? हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता, हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: आजकल उनको पता है गंगू भाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी, वो जो सुनने वाले वही आते हैं, मुझे कोई फरमाशी नहीं करते।
1: अच्छा,
0: शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम मराठी गजल ठुमरी हमने, मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते।
1: अच्छा,
0: ये मुझे मेरा ये है वो।
1: अच्छा,
0: इसलिए यही गाते चले आए हमने।
1: छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है?
0: श्रद्धा भक्ति से जो गुरु बताते हैं एक करना, फिर विश्वास से।
1: अच्छा, आप इतने राग गाती हैं उनमें से आपको अत्यंत प्रिय कौन सा राग है?
0: कभी कभी एक एक राग जम जाता है
1: जी।
0: ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस सुबह का राग मुझे ज्यादा मुझे गाने के अच्छा लगता है
1: जी।
0: वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतनी नहीं, फिर वो ही जम जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे मुझे पसंद है।
1: क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में?
0: अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं कोमल रेखा वसावरी।
1: हाँ।

0: धन्यवाद डॉक्टर गांगुबाई जी।
1: आज आपने सुनी बातचीत किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हनगल जीवन भर संगीत की साधना करती रहीं। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें गिने चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर स्वरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2009 में वे असीम में विलीन हो गईं, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। तीन ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ पिया।

आप सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। आज की कलाकार थीं विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज़, कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाज़ों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 352 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और उज्जैन में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 63 विद्यार्थियों को मिले पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर सिधो, कान्हू, चंद, भैरव और फुलो झानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और बलिदान का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई को भारत आ रही है। ताकाइची 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को समावेशी समाज निर्माण का साधन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षित युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर भी बल दिया।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भैंसवा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। डॉ. यादव ने कहा कि 19 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान में प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया है।
2: जलगंगा अभियान 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा, सभी तहसील, सभी पंचायत में एक साथ हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कार्यक्रम आज समापन पे या इस अभियान का एक चरण हो रहा है। अगला चरण भी हम चालू करेंगे।
0: इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं।
2: सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, ये देश का और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।
0: जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना के कमान जनरल सेठ को सौंपी। जनरल सेठ इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और 28 साल बाद आर्म्ड कोर से सेना प्रमुख बने हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस शोध संकलन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक दक्षता और समाजोत्थान से जुड़े 19 अध्याय शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डीलित उपाधि से सम्मानित किया गया।

राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बावड़िया कला से आशिमा मॉल तक प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मंत्री ने पिपलानी खजूरी रोड में देरी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। प्रदेश ने एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों के लिए जीआई टैग हासिल किया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जीआई टैग मिले हैं, जिसमें गुना का धनिया, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर का मटर और सिंघाड़ा, बुरहानपुर का केला और छतरपुर का पान शामिल है। इसके अलावा 7 और फसलों के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल में नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यशाला में डीपीआर तैयार करते समय प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जमा कराई गई है। श्री तोमर ने बताया कि 1 किलोवाट संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास गिरबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने अदालत से जब्त लैपटॉप का पासवर्ड दिलाने और दोनों आरोपियों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं गिरबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशा विरोधी अभियान के तहत गोविंदपुरा क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलनी को टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रीमा राउत को बाहर रखा गया है। आपको समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर के मूसाखेड़े स्थित कबीर मंदिर में श्री सतगुरु कबीर साहब का 629वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में चौका आरती और भजन संध्या हुई, जिसमें विधायक महेंद्र हडिया सहित बड़ी संख्या में कोलीकोरी समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन लालचंद सोमेश ने किया। खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह आज किशोर कुमार सभागार में आयोजित किया गया। वहीं शिवपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज ग्राम पंचायत मठेपुरा स्थित बावड़ी पर आयोजित हुआ। झाबुआ में ग्राम पंचायत जुलवानिया बड़ा जनपद थांदला में 14वें वित्त आयोग के 2 निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। देवास में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला स्तरीय मास्टर वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 आवेदकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में बीते 4 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए हम आपको एक बार पुनः दिल्ली लिए चलते हैं।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देवबर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

अभी आपने सुना पॉप गीत गुल सक्सेना की आवाज़ में। गीतकार संगीतकार थे किरण प्रगति और सौरभ ठाकुर।

0: पर तो हेवन की चाबी है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौन रही है?
1: अरे बिजली बिजली कहाँ कौन थी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
2: तू इतना ही जान कर रुक जा, नहीं तो
1: नहीं तो
2: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
1: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी। बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, फिर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता।

0: राजा जरूर मानता है।
1: राजा? कौन राजा?
0: है एक राजा।
2: हाय, काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
1: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
2: लड़का? कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
1: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
2: अपने राजा के। ओ मंजू, हाउ ही लव्स मी।
1: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है? कहाँ से आया? क्यों आया? क्या करता है? किसका बोटा है? किसका पोता है?
2: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है। मेरे दिमाग में फ्लड आ गया तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
1: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
2: अरे मंजू जी जी, उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम। वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
1: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
2: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
1: दीपक? कौन दीपक?
2: हाँ, वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू। वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
1: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
2: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
1: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हंसोड़ सा था।
2: अब मैंने गोरा बोरा लंबा उम्बा हंसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
1: ओहो, तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
2: थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
1: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है? आता है तीज त्योहार पर।
2: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
1: कर दिया।
3: भाभी, भाभी, भाभी, वो मतलब भाभी,
1: हाँ।
3: वो आपकी बहन है ना?
1: हाँ।
3: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
3: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
3: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
3: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
3: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुँह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल, कुछ कहेगा भी?
3: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
3: कहूं? कह दूं भाभी? भाभी, असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लो, कह दिया, कह दिया भाभी।
1: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
3: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहेंगे, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील राजा ने कहाँ से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं की, छोड़ उसका ख्याल।
3: भाभी, ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी, वो तो देवी है देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतनी कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने।
1: अब मैं क्या करूँ, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
3: पर भाभी, ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
3: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो। प्लीज भाभी, एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी, आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ।

0: उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, सुन मुझे ख्याल आया।
0: क्या? हा?
1: मैं शील को बुलाती हूँ और सुन, उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने देना।
0: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
0: अच्छा
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
0: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। मैं तो छुपे जाती
0: हूँ। तुम छुप जाओ भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
0: जी जानता हूँ। जी, जी, जी, मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया।
1: मैं भी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी। न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाब

0: क्या होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: आहा, क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते
0: हैं। शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी, क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
0: क्यों क्यों, क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं।
0: पता नहीं तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।

0: बहादुर है।
1: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
0: पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है।
1: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
0: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
1: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
0: देखो।
1: देखिए।
0: अच्छा देखूंगी।
1: शील जी, आपके महबूब आपके कमरे में है क्या? मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
0: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
1: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी, अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
0: तो जाइए, कमरा खुला है।
1: कमरा खुला है, लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
0: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
0: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
1: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत तो बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
0: जाइए।
1: ओह माय गॉड, ये राजा, इनका महबूब। सच में शील जी, ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी, आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे भाई।
0: राजा, राजा, बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
1: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
0: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करते?
1: कभी नहीं, कभी नहीं, तुम मेरे महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
2: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाज़ों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाज़ों में। गीत को लिखा है समीर अनजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में

लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा

0: ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 40

0: 6000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सिमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
4: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक

0: आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos, highlighting the

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तावन करें। रेलवे मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने के खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों के खुसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मंसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। 2 अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजमू

0: के दफ्तर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पहले दिन वोटरों को 1,68,200 से ज्यादा फॉर्म्स तकसीम किए गए। 7,600 से ज्यादा इंदराज के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। दिल्ली में 13,033 पोलिंग बूथ्स हैं जो 1,45,10,298 वोटरों का अहाता करते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज इंदराज का अपना फॉर्म दाखिल किया और कौमी राजधानी के सभी अहल वोटरों से नजरसानी के जारी अमल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर अपने फॉर्म दुरुस्त तरीके से भरें और उन्हें अपने मुतल्लिका बीएलओस के हवाले कर दें। उन्होंने इस मुहिम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सही और दुरुस्त वोटर फहरिस्त एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद होती है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज नई दिल्ली में इंसानी वसाइल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन, इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीक़ाकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज़्म की अक्कासी ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियाँ दी जा चुकी हैं। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तना को आज तक के लिए मंजूरी दी थी। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आर्जी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह इकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फहरिस्त वही रहेगी जो पहले जारी की गई थी। तवक्को है कि इस रियायत से उन सनतों को फायदा होगा जो पेट्रोकेमिकल, खाम माल और दरमियानी मसनूआत पर इन्हिसार करती हैं। इनमें प्लास्टिक पैकेजिंग, टेक्सटाइल, दवासाजी, केमिकल्स, ऑटोमेटिव पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग के दीगर शोबे शामिल हैं। आज हुल बगावत के शुजातमंदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हुल दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरी रियासत में खसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इस मौके पर साहिबगंज के पंचकतिया और भोगनादी में यादगारी मकाम पर हुल इनकलाब के शहीदों को हजारों लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुल दिवस कबायली बरादरियों के गैर मामूली हौसले और गैर मुतजलजल जज्बे की एक मजबूत अलामत है जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। सियाहत की वजारत ने मुल्क के सियाहती मकामात के डिजिटल वसीले से फरोख को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में गूगल इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज के जरिए भारत के सकाफती मकामात की शान शौकत को पूरी दुनिया के सामने मुतासर कुन अंदाज में पेश किया जा सकता है। शराकतदारी के तहत गूगल इंडिया आलमी सफरी रुझानात, मुसाफिरों के रवैये और शवाहिद पर मबनी सियाहती तरक्की में फरोख के लिए डिजिटल तरीक़ेकार के जरिए मालूमात फराहम करेगा। जनरल धीरज सेठ ने आज फौजी अमले के 31वें सरबरा की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह इस ओहदे पर फाइज हुए हैं जो 4 दहाई से ज्यादा मुल्क की गरां कदर खिदमात के बाद अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हुए हैं। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के साबिक तालिब इल्म हैं और उन्हें दिसंबर 1986 में फौजी कोर में शामिल किया गया था। जनाब रवि अग्रवाल को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक मरकजी बोर्ड का एक मरतबा फिर चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उनकी मुद्दत कार कल से 31 दिसंबर 2026 या आइंदा अहकामात जो भी पहले हों तक होगी। तकरूरियों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने उनकी दोबारा तकरूरी को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मदरसा तालीमी निज़ाम में कल से एक बड़ी तब्दीली का निफाज होगा। नए इंतजाम के तहत उत्तराखंड मदरसा तालीमी बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत रियासत के सभी अकलियती तालीमी इदारों का इंतजाम रियासत के तहत होगा। रियासती सरकार ने उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारों के एक्ट के तहत नया निज़ाम मुतारिफ किया है जिसके तहत उत्तराखंड रियासती तालीमी अथॉरिटी अकलियती तालीमी इदारों को तस्लीम करने, उनके कामकाज की निगरानी करने और तालीमी मेयार को यकीनी बनाने की जिम्मेदार होगी। यह नया निजाम मुस्लिम, सिख जैन ईसाई बौद्ध और

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना।

सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

0: हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

0: प्यार वफा
1: सब कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊँगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्य होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा।

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कांग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती हैं।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कई बार एक नज़र, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपने

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा।

ढलती हुई रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो सा

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जबरदस्त फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में मजरूफ सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म तीन देवियों से। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, मजरूह के बोल हैं और धुन बनाई है SD बर्मन और नालंदा ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं जुर्म फिल्म का गीत, कुमार सानू और साधा सरगम की आवाज़ है, इंदिवर के बोल हैं और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म जुर्म का ये खूबसूरत गीत, जिसे लिखा था इंदिवर ने और संगीत दिया था राजेश राशन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को

0: संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, BG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of BG Ramji Act 2025, Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University